0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार। रविवार शनिवार 11 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ फ्लैश न्यूज़ की शुरुआत करती हैं। मॉरिशस सरकार ने एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 547 मवेशियों को आज उतारने की अनुमति दी। उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। और शागुस समझौते पर मॉरिशस ने ब्रिटेन से स्पष्ट समय सीमा मांगी है, जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा ने घरेलू हिंसा विधेयक को भी बिना संशोधन के पारित कर दिया है, जिससे पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन को समाप्त नहीं किया जाएगा और मींस टेस्ट का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने पर केंद्रित है। सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन यानी कि यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग को लेकर आज पोर्ट लुइस में ट्रेड यूनियनों का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतू का कहना है कि मॉरिशस में बुजुर्गों की भूमिका बदल रही है, लेकिन पेंशन व्यवस्था का बोझ भविष्य में युवाओं पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप में भीषण गर्मी के कारण सूखे इलाकों में जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है। कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा है। दक्षिणी स्पेन में भड़की आग के कारण कई बीघा जंगल नष्ट हो गई हैं और 12 लोग मारे गए, जबकि 23 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास अभी जारी है। और बात करें हम स्पोर्ट्स के बारे में तो फीफा विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई हाल के मैच में लॉस एंजलिस के सूफी स्टेडियम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम का स्कोर रहा स्पेन 2-1 और मेरिनो का 88 मिनट पर दूसरा गोल रहा स्पेन के लिए। गौरतलब है कि कल रविवार सुबह 1 बजे नॉर्वे खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ और सुबह 5 बजे अर्जेंटीना खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है, स्पेशली यदि इंग्लैंड के फैंस इस विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में देखना चाहते हैं। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.

0: मौसम का हाल, आम हालत। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेंट्रल प्लेटो पर, शहरी इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारे ड्रॉप की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30, जहां हम इन सुर्खियों को विस्तार देंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: सुबह के 6:04 और 50 सेकेंड्स हो रहे। आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। मीडिया मोहबाद से 19 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा प्रसारण चल रहा है एमबीसी मोका से। जी हाँ, ये है AM2 एमबीसी रेडियो मॉरिशस और आज है शनिवार का दिन, शनिवार 11 जुलाई साल 2026। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आज की सुबह पूरा दिन आप सभी लोगों के लिए अच्छी तरह से बीते। आज आप जहाँ भी रहें खुश रहे, सलामत रहे और इस दिन को अच्छी तरह से बिताएं। आज जो भी हो आप सभी के लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो। जो भी कार्य करें आज आप उसको, उस कार्य में आपको सफलता मिले और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे कि आप पूरा दिन ऐसे ही खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए इन्हीं विचारों के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले कार्यक्रम की ओर और वो है गहलोत राजपूत महासभा की ओर से। कार्यक्रम है वैदिक नाद।

0: वैदिक नाथ
1: ओम मधुमन्ने निष्क्रमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः ओम शांति शांति शांति।
0: आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती द्वारा रामभोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति वैदिक नाथ कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, वेदों का प्रत्येक मंत्र मनुष्य को देवतत्व की ओर ले जाने वाला है। वेद मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके वस्त्रों, पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, व्यवहार और संस्कार से होती है। इसीलिए अथर्ववेद का यह दिव्य मंत्र हमें जीवन का अत्यंत सुंदर आदर्श देता है। जीवन का प्रत्येक कदम मधुर हो। श्रोताओं, आज संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो गई। संचार के साधन अद्भुत हो गए। किंतु यदि मनुष्य की वाणी कटु है और व्यवहार कठोर है, तो यह सारी प्रगति भी समाज को सुख नहीं दे सकती।

ही। वेद कहते हैं, यदि जीवन में शांति चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, समाज में एकता चाहिए और राष्ट्र में सद्भाव चाहिए, तो सबसे पहले अपनी वाणी को संस्कारित करना चाहिए। श्रोताओं, ध्यान दीजिए, इस मंत्र में ऋषि केवल इतना नहीं कहते कि मैं मधुर बोलूं, बल्कि वे कहते हैं मधुमन्ने निष्क्रमणम, अर्थात जब मैं घर से बाहर निकलूं तब भी मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, मैं जहां जाऊं वहां प्रेम, सेवा और सहयोग लेकर जाऊं। फिर कहते हैं मधुमन्ने परायणम, जब मैं लौट कर घर आऊं तब भी मेरे साथ मधुरता ही आए। बाहर का तनाव, क्रोध और कटुता घर के भीतर न आए। कितना अद्भुत संदेश है। आज अनेक परिवार इसीलिए टूट रहे हैं कि लोग बाहर की परेशानियां घर लेकर आते हैं। वेद कहता है अपने घर को शांति का स्थान बनाओ, तनाव का नहीं। इसके बाद ऋषि कहते हैं वाचा वदामि मधुमत, अर्थात मेरी वाणी ऐसी हो जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और कल्याणकारी भी हो। केवल मीठा बोलना पर्याप्त नहीं, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर प्रसन्न करें तो वह वैदिक मधुरता नहीं है। वेद सत्य और मधुरता दोनों का समन्वय चाहते हैं। यही भाव हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्य म प्रियम, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु ऐसा सत्य मत बोलो जो केवल किसी को चोट पहुंचाने के लिए कहा जाए। इसीलिए वेद कहते हैं मनुष्य अपनी वाणी का प्रहरी बने। वाणी वही पवित्र होती है जिसके पीछे पवित्र मन हो। वैदिक संस्कृति में ऐसी वाणी को महत्व दिया गया है जो सत्य होने के साथ साथ मधुर, प्रिय और हितकारी हो। अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारी जीभ सदा मीठे और उत्तम शब्दों का उच्चारण करें। वास्तविक मधुरता मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। जब व्यक्ति का अंतःकरण लोभ, द्वेष और अहंकार से मुक्त होकर परोपकार और प्रेम से भर जाता है तो उसे आध्यात्मिक मधुरता या माधुर्य कहा जाता है। वेद जीवन को क्लेश, संघर्ष और कटुता से निकालकर आनंद, उल्लास और मिठास से परिपूर्ण करने का संदेश देते हैं। मधुरता का अर्थ है अहंकार को त्यागना। जब व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर दूसरों के प्रति सहजता और विनम्रता दिखाता है तो उसकी मधुरता स्वतः प्रकट होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मधुरता का अर्थ है सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। यह प्रेम संकीर्ण नहीं होता, सभी जीवों के लिए एक समान होता है। ऐसे व्यक्ति की मधुरता स्वार्थ रहित होती है। मधुरता का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति दूसरों की गलतियों को समझकर क्षमा कर सके और उनकी कठिनाइयों में सहनशीलता का परिचय दे सके। यह आंतरिक संतुलन और धैर्य का परिणाम होता है जो आत्मिक विकास का प्रतीक है। मधुरता केवल शब्दों में नहीं होती बल्कि विचारों और भावनाओं में भी झलकती है। एक सच्चे मधुर व्यक्ति के मन में

के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या कटुता का भाव नहीं होता। वह सभी के प्रति सकारात्मकता और शुभकामना रखता है। प्रश्न यह उठता है कि यह मधुरता आएगी कैसे? वेद स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि यह मधुरता तभी संभव है जब मनुष्य के भीतर मन, वचन और कर्म की एक रूपता हो। मन, वचन और कर्म की एक रूपता का अर्थ है विचारों, कथनी और कार्यों में समानता होना। जब आप जो सोचते हैं वही करते हैं और वही करते हैं जो आपका जीवन तनाव मुक्त, प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप से अनंत बनता है। जीवन में कैसे लाएं एक रूपता? सत्य का अभ्यास से, आत्मा मूल्यांकन और शुद्ध विचार से। मनसा वाचा कर्मणा का अर्थ है कि यदि आपके मन में किसी के लिए भलाई है तो आपकी बोली और आपके कार्य में भी वही झलकनी चाहिए। वैदिक जीवन दर्शन के अनुसार समाज में शांति और परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए मधुर वचनों और शुभकामनाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वेदों में निरंतर ऐसी प्रार्थनाएं की गई हैं जहां संपूर्ण पर्यावरण से लेकर मानव संबंधों तक सब कुछ मधुमय हो जाए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ता है तो मधुरता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह आत्मा साक्षात्कार और आत्मा स्वीकृति का परिणाम होती है जिसे व्यक्ति दूसरों में भी वही शुद्धता और अच्छाइयाँ दिखता है। मानव संबंधों में मधुरता का अर्थ आपसी रिश्तों में प्रेम, सम्मान, विश्वास और सहयोग का होना है। वेदों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक सभी में संबंधों को प्रगाढ़ और सुखी बनाने के लिए वैचारिक और व्यवहारिक मिठास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में विशेषकर अथर्ववेद के सामंजस्य सूक्त में पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है। श्रोताओं, वेद जीने की दिशा है। जब वाणी में मधुरता, हृदय में करुणा और जीवन में यशभाव आ जाता है तभी मनुष्य वास्तव में वैदिक बनता है। आइए हम केवल मधुर बोलने का संकल्प न लें बल्कि मधुर बनने का संकल्प लें। हमारी वाणी में सत्य हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारे कर्मों में यज्ञ भाव हो और हमारे जीवन में वेदों का प्रकाश हो। जब प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर मधुरता का दीप जलाएगा तभी परिवार में शांति, समाज में सद्भाव और विश्व में सच्चा कल्याण स्थापित होगा। यही वेदों का अमृत संदेश है, यही ऋषियों की वाणी है और यही हमारे जीवन की दिशा होनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:18 हो रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस पर। सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अब प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

0: कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। क्लेफो वाक्वा, क्लेफो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इंडिपेंडेंस एवेन्यू, ईव ब्रेलू, ब्रेलू एवेन्यू, ब्राउन सिको एवेन्यू, सिमिट्री रोड, आंद्रे मार्टिन एवेन्यू, महंत कबीर टेम्पल रोड, सोबी लेन और आर्य मंदिर लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 12 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर मोसेलमो व्योस बेल्टे के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 12 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। क्लेफों वाक्वा नंबर एक, क्लेफों नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इंडिपेंडेंस एवेन्यू, ईव ब्रेलू, ब्रेलू एवेन्यू, ब्राउन सिको एवेन्यू, सिमिट्री रोड, आंद्रे मार्टिन एवेन्यू, महंत कबीर टेम्पल रोड, सभी लेन और आर्य मंदिर लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 12 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ग्लेन पार्क, ग्लेन पार्क एवेन्यू दिवेक के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और ऑगिटा, ऑगिटा ब्रांच रोड, डेल्फिस लेन, कोनर कालवेल, राजाबाली लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को दिन के 11 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मोसेलमो इरेमिया को दो के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 12 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दिन के 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और बेल्टे विलाज के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 12 जुलाई को दिन के 11 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और सीतेलवाजो, जी हाँ, सीतेलवाजो, फ्रोबेविल लेन, एवेन्यू शॉल डिकेंस, विलियम्स वर्ड्सवर्थ के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी मंगलवार, जी हाँ, आगामी मंगलवार 14 जुलाई को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कैटरबोन एवेन्यू कोसिंग, कैटरबोन एवेन्यू कोसिंग, हिलारी ब्लड, लुई नेरों लेन, कॉन्डोस लेन, लालुइस एवेन्यू, ए रिवे एवेन्यू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सब मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशियंस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।

0: उनमें से।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: क्या सुबह के 6:24 हो रहे और प्रस्तुत है भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम जीवन दर्शन। निर्बल से लड़ाई बलवान की, जी हाँ, और जीत बस सच की हमेशा होती है। और निर्बल चाहे कितना भी कोशिश करे और बलवान तो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर कभी कभी निर्बल जो है उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो बलवान से जीत ही जाता है। प्रिय श्रोताओं, देवी और सज्जनों, इसी भावगीत के साथ ही भावगीतों का प्रोग्राम जीवन दर्शन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक 6:30 का पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का, उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी 7:05 पर इसी चैनल पर, रेडियो मॉरिशस पर, विन योर मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजराना। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाती, चलिए सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। शनिवार 11 जुलाई 2026 के प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे आज की सुर्खियां। मॉरिशस सरकार ने एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 547 मवेशियों को आज उतारने की अनुमति दी, जिन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। शागर समझौते पर मॉरिशस ने ब्रिटेन से स्पष्ट समय सीमा मांगी है, जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा ने घरेलू हिंसा विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दिया है, जिससे पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन को समाप्त नहीं किया जाएगा और मींस टेस्ट का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने पर केंद्रित है। सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग को लेकर आज पोर्टलिस में ट्रेड यूनियनों का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ सोशियोलॉजिस्ट राजन संतू का कहना है कि मॉरिशस में बुजुर्गों की भूमिका बदल रही है, लेकिन पेंशन व्यवस्था का बोझ भविष्य में युवाओं पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दशकों के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के कारण फिलीपींस में भूस्खलन से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूरोप में दक्षिणी स्पेन में भड़की आग के कारण 12 लोग मारे गए और 23 अभी भी लापता हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मंत्री परिषद की कल हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है। इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा

करना चाहेगा। कृषि एवं उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने बताया कि मवेशियों को सबसे पहले लाशुमिया स्थित एक क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे। साथ ही जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। मंत्री ने कहा

0: कंपनी उबोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी जाएगी। कृषि मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: Et ben, le test pour faire est suivi par le service vétérinaire du ministère et qui fait importe ça à un niveau-là. Right? Il est vrai qu'on compte très bien dans quelles circonstances une vigne dans le pont, parce que ça va à un niveau-là, d'après Ubora Ventures, je suis supposé à Guinée-Conakry. Mais il y a une affaire qui nous dit à Ubora Ventures. Right? Ça sent très bien que Mozambique, il y a un pays quand même dans certains risques. Mais nous disons que c'est one-off, c'est-à-dire que ça ne ferait pas jamais. Et jamais arrivé. Et n'importe qui bateau qui saute Mozambique ou bien n'importe qui destination, ça peut avoir un risque de ce qu'on appelle foot and mouth disease, il n'y a pas un droit à venir voir. Donc, on appelle ça un one-off sous bonne condition sanitaire très stricte.
0: आपको हम याद दिला देते हैं कि एम वी अपेक्स तंजानिया के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज मोजाम्बिक के मापुतो बंदरगाह से 537 मवेशियों को लेकर गिनी के लिए रवाना हुआ था। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए जहाज के कप्तान ने पोर्ट लुइस बंदरगाह पर रुकने की अनुमति मांगी। इसके बाद 4 जुलाई को मॉरिशस के अधिकारियों ने जहाज को मॉरिशस के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में ही रुकने का निर्देश दिया था। और मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की। 2 जुलाई 2026 को अटोर्नी जनरल गाविन ग्रोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वे सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। ब्रिटेन ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि 5 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में एक प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस का दौरा करेगा। इस दौरान देश की समुद्री क्षमताओं और आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इस पर ज्यादा विस्तार से पेश है ये विवरण गीता सुनारायण के साथ।
2: मंत्रिमंडल ने नोट किया कि 2 जुलाई 2026 को अटोर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ओवरसीज टेरिटोरीज एंड पोलो डायरेक्टोरेट के निदेशक के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई। बैठक का उद्देश्य शागुस द्वीप समूह मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा करना था। यूके पक्ष ने जानकारी दी कि 20 जुलाई 2026 तक नए यूके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की संभावना है, लेकिन शागुस द्वीप समूह के संबंध में यूके की नीति में बदलाव होने की संभावना नहीं है। यूके ने इस मुद्दे पर मॉरिशस द्वारा अपनाए गए संतुलित रुख की सराहना की, लेकिन उसे ये भी बताया गया कि मॉरिशस अपने रुख की समीक्षा सितंबर 2026 तक कर सकता है। मॉरिशस की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि नए यूके प्रधानमंत्री को शागुस द्वीप समूह समझौते के यूके द्वारा अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम ने यह भी कहा कि पिछले महीने ओलिविए बोंकुर्ट के नेतृत्व में शागुस वासियों के यूनाइटेड किंगडम दौरे का परिणाम कुल मिलाकर सकारात्मक रहा। यूनाइटेड किंगडम के अनुसार इस मिशन के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रमुख सदस्यों को मॉरिशस और यूके के बीच शागुस द्वीप समूह समझौते पर ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण सुनने का अवसर मिला। यूनाइटेड किंगडम ने ये प्रस्ताव भी रखे। यूके का एक प्रतिनिधिमंडल 5 अक्टूबर 2026 वाले सप्ताह में मॉरिशस का दौरा करे ताकि समुद्री क्षमताओं की आवश्यकता का आकलन किया जा सके और शागुस वासियों के लिए शागुस द्वीप समूह की यात्रा साल 2027 की पहली या दूसरी तिमाही में आयोजित की जाए। मंत्रिमंडल ने सिविल स्टेटस एक्ट तथा संबंधित कानूनों में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि बिना पंजीकरण वाले बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सके। इन संशोधनों के तहत मॉरिशस में बिना पंजीकरण वाले नाबालिगों के मामलों की निगरानी करने और उनके मामलों से निपटने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की जाए। कैबिनेट ने वर्कर्स राइट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर रेगुलेशंस 2026 को कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति दी ताकि छोटे खेतीहर विदेशी कामगारों को काम पर रख सके। मंत्रिमंडल ने

0: ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट की स्थिति और आने वाले कुछ महीनों में मोगास तथा गैस ऑयल की संभावित कीमतों के रुख पर ध्यान दिया। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण एसटीसी के प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में मोगास और गैस ऑयल को मिलाकर घाटा बढ़कर 3.28 बिलियन रुपए तक पहुँच गया है। इसमें केवल गैस ऑयल की बिक्री पर एसटीसी को हुए नुकसान का हिस्सा ही 3 बिलियन रुपए है।
1: राज्यसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसा विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना वमारी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी मिलने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का भी विस्तार किया गया है। मंत्री ने बताया कि इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय की ओर से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों में सेफ लाइफ यूके के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। अरियाना वमारी ने यह भी कहा कि इस नए विधायी ढांचे में 2 महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए गए हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की सुरक्षा और सहायता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना वमारी को सुनते हैं याचना मिश्रा के विवरण के साथ।
2: Le tribunal devra désormais procéder.
3: धारा 8(4) के तहत एक ओर ट्रिब्यूनल को अब से हिंसा करने वाले व्यक्ति के बर्ताव का समय समय पर मूल्यांकन करना होगा हर 3 महीने में। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अब निगरानी रखी जाएगी। धारा 13 के तहत एक्सक्लूजन ऑर्डर्स जोड़े गए हैं। अब से हिंसा करने वाले को घर छोड़ना पड़ेगा और न कि हिंसा सहने वाले को। दर्द सहने वाले को अपने बच्चों को या वातावरण को या घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी।
2: Non, la victime qui devra déraciner ses enfants et abandonner son foyer.
1: सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल दोपहर पोर्ट लुइस में आयोजित एक वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी। अब सुनते हैं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो को।
4: Aucune pension pas pour couper. Tout jimoun qui peut gagner pension, tout nous grand jimoun qui gagne pension, aucune pension pas pour couper.
3: कोई पेंशन नहीं काटा जाएगा, सभी बुजुर्गों को अपना पेंशन मिलता रहेगा। मींस टेस्ट हमेशा के लिए हटाया गया है। ये मासिक वेतन पर आधारित नहीं होगा, ये एक अधिकार है, सभी बुजुर्गों का अधिकार।
4: Tout grand jimoun dans nos pays. Ça, c'est le premier message qu'ils ont envie de faire bien clair, parce qu'il y en a certains du monde qui peuvent induire la population en erreur alors ça s'y est là. Deuxième décision importante, nous ne faisons que tout du monde de Maurice qui gagne 60 ans, ok? Tout du monde qui gagne 60 ans pour gagner une pension.
3: कुछ लोग इस विषय पर आम जनता को बहका रहे हैं। दूसरा जरूरी फैसला यह है कि मॉरिशस में 60 साल के होने पर हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, चाहे वो काम करता हो या नहीं, चाहे उसका वेतन कितना भी हो। लेकिन पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही पेंशन प्राप्त करने की उम्र को 65 साल तक बढ़ाया गया। हम इस धन को विभाजित कर रहे हैं। 60 साल का होने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से पेंशन लेने के लिए बाध्य नहीं, वो चुन सकता है कि उसे कब पेंशन लेना है, 61, 62, 63, 64 या 65 साल पर होने पर। लेकिन यदि व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद अपना पेंशन लेने की सोचे तो उसका पेंशन बढ़ाया जाएगा।

0: li kapab swazir. Li pa pe oblize li pren pension a 60 ans. Li pa oblize pren pension a 60 ans. Li ka deside, ben, mo kondisyon, permet moi, fè nòt zafè, ekle la, mo pa bizè pension la si. Li ka deside pou pren li 61 ans, li ka deside pou pren li 62 ans, li ka deside pou pren li 63 ans, li ka deside pou pren li 64 ans, li ka deside pou pren li 65. Et nous n'allons plus loin. Si li décide pour prendre li après 65, ce pension pour augmenter quand il commence à prendre pension.
1: Jab koi 60 saal ki umr mein adjust kiya gaya pension lega to jab rakam badhegi to use adjustment wali rakam bhi milegi. अभी भी पेंशन प्राप्त लोगों को कर्मचारियों के साथ साथ कंपेंसेशन मिलता आया है, जैसे इस साल 15,000 का पेंशन कंपेंसेशन के साथ बढ़कर 15,555 रुपया हो गया।
0: Avec compris monté, nos gouvernements une faire qui à ce là pensionnaire aussi gagne compensation quand travailleur gagne compensation. À partir de janvier cette année là, pensionnaire il gagne sur compensation compris de monté. La pension c'est 15,000 roupies, mais là il vient 15,555.
1: पेंशन सुधार एक दूसरा स्तंभ है ताकि हम पूर्व सरकार द्वारा जो तबाह किया गया उसे वापस खड़ा कर सके नेशनल पेंशन फंड को। हम एनपीएफ 2.0 ला रहे हैं जो फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं होगा।
0: नेशनल पेंशन फंड et nous appelons National Pension Fund 2.0 et nous pour relancer NPF 2.0 nous appelons comme ça li pas pour intégrer dans finance bill.
2: सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परामर्श किया जाएगा। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु को चरणबद्ध तरीके से 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय फिलहाल यथावत रहेगा। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18 से 49 वर्ष आयु के वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों को उनके रिश्तों परिवार आयोजन संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के डिप्टी डायरेक्टर चेतन कुमार आर्यानाइक ने मॉरिशस में आज के युवाओं के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उनको सुनते हैं।
3: नौजवान अपने क्वालिफिकेशंस के अनुरूप ही नौकरी तलाशते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शुरुआती तौर पे वे पहली नौकरी पर लग जाएं, अनुभव प्राप्त करें और बाद में अपने क्वालिफिकेशंस के अनुरूप नौकरी बदलें। भविष्य में उनको पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए मौका देना चाहिए। हाउसिंग, बच्चों की देखभाल आदि के लिए सेवाएं देनी चाहिए। इसके साथ ही देश के विकास में भी युवाओं को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, खासकर वे जो विदेश जाते हैं उन्हें इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि वे वापस लौटे। नौजवानों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2: प्लेटफॉर्म कोमे सेंडिकल के बैनर तले आज 11 जुलाई को पोर्ट लुइस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मारी रेन दे ला पे सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या मौजूद पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बिना बनाए रखना

0: संभव है। समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतू के अनुसार यदि वर्तमान पेंशन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया तो इससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है, साथ ही बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर और अधिक निर्भर हो सकता है। वे अद्रियन वालिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, सुनते हैं उनको सुनते हैं।
1: Si nous gardons ça, l'ici était avant. Du coup, il y a une répercussion du normal économiquement et socialement. Côté social, il y a des gens qui sont contents de gagner ce casse. Ils sont contents de gagner ce casse et ils sont contents de vivre, comment dire, correctement. Nous avons aussi été, est-ce que le gouvernement, pour foutre payer ça va dans ce sens-là? Nous avons compris, comment dire, nous pouvons vivre dans une société vraiment vieillissante. Une société, comment dire, nous aging population. Il est very high, nous avons de presque, nous pouvons tous là-haut, presque 20% quelque chose, mais il est un peu difficile dans les années à venir, dans 15 ans, 20 ans, il peut venir presque 40, 45%, quand même un petit peu plus même. Mais est-ce que le gouvernement peut être capable de payer ça? Parce qu'il nous a compris, ça va nous devenir dépendant, pas juste côté casse, côté l'hôpital, côté la santé, côté sécurité sociale, il est un peu compliqué.
0: समाजशास्त्री राजेंद्र संतू का कहना है कि मॉरिशस के समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी और नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण सहायता करती हैं। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। हालांकि सोशियोलॉजिस्ट ने आगाह किया कि यदि वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो दीर्घकाल में पेंशन प्रणाली के वित्तपोषण का बोझ अधिकतर युवा पीढ़ी पर पड़ सकता है।
1: D'autres jours, elle nous remarque, ben, nous sommes pas guettes, ben, vieilles du monde. C'est pas guetté. Généralement, c'est pas guetté. Ben, vieilles du monde, c'est débrouillé par eux-mêmes. Ben, nous sommes eux-mêmes, c'est un tellement de problèmes. Pour ce travail, pour ce moyen, pour ce faire de famille. C'est bien difficile, guettes, ben, vieilles personnes. C'est bien difficile pour ben, là. Au contraire, ben, vieilles personnes qui guettent, ben, les enfants. Pour ça, ben, c'est des enfants qui peuvent marier, là, là. Bon, j'ai pu finir un problème pour ben, c'est dans les années à venir. Quand nous parlons, comment dire, quand ben, nous avons contribué beaucoup plus, comment dire, pour capable payer sécurité sociale, la santé, ben, du monde de pension, les pouvoirs un peu difficiles. À cause de ça, comment dire, ben, le gouvernement, comment dire, peut prendre, ben, on peut faire, ben, débat, ben, on peut reprendre, ben, décision, comment dire, qui, comment dire, diminuer, ben, dépendance, l'État, comment dire, pour subvenir à ce besoin.
0: जैसा कि आपने सुना, मॉरिशस तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौती का सामना कर रहा है। ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन सुधार पर बहस जारी है, लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है। क्या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है? वित्तीय चुनौतियों के अलावा बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है जो उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप हों। इसके लिए अधिक जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की उपलब्धता के साथ साथ दीर्घकालिक और समग्र योजना भी जरूरी है। जेरियाट्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर पास्कल जीरों की राय के अनुसार जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की कमी निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता वृद्धावस्था से जुड़े मुद्दों के लिए एक ठोस राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की है। और सुर्खियों में हम बात कर रहे थे फीफा विश्व कप के बारे में। फीफा विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई हाल के मैच में लॉस एंजेलिस के सोफी स्टेडियम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम का स्कोर रहा 2-1। मेरिनो ने 88 मिनट पर स्पेन के लिए दूसरा गोल दागा। गौरतलब है कि कल रविवार को सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड तथा सुबह 5 बजे अर्जेंटीना खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच का ये मुकाबला काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है, स्पेशली यदि इंग्लैंड के फैंस विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में देखना चाहती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे थे स्पेन के बारे में ही। दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य लापता बताए जा रही हैं। आपातकालीन सेवाओं की टीमें

शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। अधिकारियों के अनुसार आग गुरुवार दोपहर अल्मेरिया प्रांत के लॉस गालादोस क्षेत्र में उस समय भड़की जब एक बिजली का खंभा जंगल में गिर गया और उससे निकली चिंगारी से आग पकड़ ली। स्थानीय मीडिया से बातचीत में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग ने पूरे इलाके को इस तरह तबाह कर दिया मानो वहां बम विस्फोट हुआ हो। वहीं कई लोगों ने कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। बढ़ते मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटू पर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। सुनने वालों को आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं तथा हम पूरे समाचार डेस्क को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। क्रिमेशन रोड रोशनवा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिमन्यु इमांडी जिन्हें राम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके दामाद अनिल कपूर पादियाची के घर रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन लावेनिया सैपिया में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरूदा दरगाही पैदा शम सोहन और जिन्हें मदम आहून के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 1:30 बजे इनके मकान लावेनिया सैपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोसा सैपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। दुखी रोड लालोगा सैपिया में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी बुदन पैदाश्याम भागोस और जिन्हें इंदिरा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर लालोगा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अवेन्यू सैन लुई प्लेजांस रोजिल में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिहरन मुथिया जिन्हें राजन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे राय रोड बुबासैन एलियनसन के यहाँ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। त्रेबो नंबर पाँच वाकवा में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोइंदामा पेमाल पैदाशाम मुत्तुसामी और जिन्हें तौचिन गाने के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनके बेटे विष्णु पेमाल के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट ओकुले में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दानो लक्ष्मी गोविंदू नायडू पैदाशना नायकेन और जिन्हें मनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके पति श्री नायडू श्रीनिवासन गोपाला किसनामा के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ला रू क्यूपिप में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के रेजा बोरू रेजा

अबूगूज रेजा के नाम से लोगज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे इनके मकान क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बीगा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। बगालू रोड ब्रिजेवेजिया में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की बीबी सलमा नोदाली पैदाशना फोकन और जिन्हें सलमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके बेटे मोहम्मद रियाज नोदाली के मकान ब्रिजेवेजिया से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए सैयद पीर कुदरत अली शाह मस्जिद ले जाएगी। फिर दफनाने के लिए बोबालाल माटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड मोदालबे में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती बाबूलाल पैदाशनाम लकुआ जिन्हें मामा संजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 2 बजे उनके बेटे संजय बाबूलाल के घर मोदालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉबर्ट बर्न्स एवेन्यू फ्लोरियाल में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती भवन पैदाशाम बंधुआ जिन्हें बसंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके पति राज भवन के घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टूडी एट 2 PM। एवेन्यू पेड्रिक्स नंबर दो मोसेल मोराफ्रे पाई में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती क्रिसमावती मधु पैदाशनाम जनकी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 12:30 बजे उनके बेटे धनजय मधु के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडियर हॉफ पॉस नून। मातुलेन लाफ्लोरा में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमंती अपुलासामी पैदाशनाम गिरधारी और जिन्हें सुमंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रीतम अपुलासामी के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौवा शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 41 रॉय रोड कास्टेल में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मालिंगम रामास्वामी जिन्हें बोम्बा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 1:30 बजे लाशापेला दौंतेलियंसर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। रॉय रोड पीतो में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिचंद जोयराम जिन्हें प्रभु इंदर के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागो मोतेल स्पेरॉस पीतो शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। पायोंके रोड मोसेलमो सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशनाम जोदवा और जिन्हें इंद्रानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के घर सेंट अंतोन गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोंटोक्यो रोड रियोबेल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबावती दुखराज की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके पिता ज्ञानी दुखराज के घर रियोबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। कोंकाकोल केन्या में 64 साल की 64 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती मानती नायको पैदाशाम सिपौसादा जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर कोंकाकोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती वार्ता कुमारी गुगाना पैदाशनाम वेंकिया और जिन्हें दीवा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके घर काठोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा काठोबोन के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 AM। आलिब्रियों वाकुआ में 85 साल की 85 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती सुबौती पेसान पैदाशनाम शिवनाथ और जिन्हें साबित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे लाशापेला दौंतेलियन सैन बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30।

नियम काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री दनीलाल पगाऊ जिन्हें ज्ञान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डेट ऑफ पॉस नून रॉय रोड क्रिवक्योर में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मेधा दनु पैदाश्रम बर्थन और जिन्हें मेधा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले रजिस्ट्रर ऑफ एसोसिएशन के एक्टिंग डेप्यूटी रह चुकी थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके पति सोमराज सिंह दनु के घर क्रिवक्योर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM मोसेलमा बुले रूज फ्लाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री करण गजाधर जिन्हें सुरतम पेपे के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले गांधी रोड लालमाटी के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर बुले रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM वाल्तो मोतायलोंग में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद इतवा जिन्हें अजीत के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बबीता इतवा के घर मोतायलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमा शौतिया घोष की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हॉफ पॉस 9 AM एवेन्यू डू लिस्पेरेंस पीतो में 72 साल की 72 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती शांति देवी शंभू पैदाश्रम बद्री और जिन्हें बसंती के नाम से ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हॉफ पॉस 9 AM न्यू रोड घोषणों में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज अलोल जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला अरोल के घर घोषणों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हॉफ पॉस 11 AM ग्लेनपार्क वाकवा में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री ओनंद हरिलाल जिन्हें विदान के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे राकेश ओनंद के घर ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हॉफ पॉस 9 AM रॉय रोड एनएस फ्लोरों में 63 साल के 63 ईयर्ज़ ओल्ड के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे इनके घर एन एस प्लोगों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM नंबर नौ मोसेलमो माउंट पॉपलेबुसेस में 80 साल के 80 ईयर्ज़ ओल्ड के श्री प्रेमानंदा मंगापति जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर मोसेलमा माउंट पॉपलेबुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM कालीमाई रोड पाल्मा कैट्रोबोन में 65 साल के 65 ईयर्ज़ ओल्ड के श्री जसोनाथ बोयरू जिन्हें चिबाई के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले CNT में ड्राइवर का काम करती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमामेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:08 हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है।

इक्विप दे फ्रांस वर्सेस लारोरा, ये है फीफा विश्व कप 2026 का पहला धमाकेदार सेमीफाइनल जो मंगलवार रात 11 बजे के लिए निर्धारित है। कल रात क्वार्टर फाइनल नंबर दो में मिकेल मेरिनो फिर बना स्पेन का हीरो, जिसने खेल के 88th मिनट पर बेल्जियम की धज्जियां उड़ा दी। गोलकीपर सेन लामेंस की भारी गलती पर मेरिनो ने फायदा उठाया और बेल्जियम के समूचे गोल्डन जेनरेशन को उठा के पटक डाला। फाइनली अंततः स्पेन 2 बेल्जियम 1। पहला गोल खेल के 31वें मिनट पर फाबियन रियूज ने बनाया, स्पेन को आगे किया, जिसे काटा बेल्जियम के स्ट्राइकर शाल दे केतेलेरे ने खेल के 41वें मिनट पर। यानी फर्स्ट हाफ में स्पेन 1 बेल्जियम 1। फिर चिबो कुतुआ के घायल होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर सेन लामेंस मैदान पे उतरा, स्ट्राइक को कैच न कर पाया और 88वें मिनट पर मिकेल मेरिनो लगातार दूसरे मैच में बना स्पेन का हीरो। स्पेन 2 बेल्जियम 1। अब मंगलवार रात 11 बजे सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में स्पेन खेलेगा फ्रांस के विरुद्ध। और आज रात अभी से लेकर रात 12 बजे तक कोई भी मैच नहीं होगा। आराम से कंबल चादर ओढ़कर और मुड़ी गाड़ कर सो जाइए। फिर कल रविवार की सुबह 1 बजे तड़के 1 बजे क्वार्टर फाइनल नंबर 3 ज़रूर देखिए, और इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे या हरिकेन वर्सेस हैलैंड का तूफान। गोल मशीन एर्लिंग हैलैंड के दम पर नॉर्वे इस मुकाम पर पहली बार पहुंचकर पहले से ही इतिहास रच चुका है। तो इंग्लैंड 60 सालों में 60 ईयर्स में इस ट्रॉफी का प्यासा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या द थ्री लायंस दहाड़ेंगे या नॉर्वे के वाइकिंग्स एक बार फिर इंग्लैंड की उम्मीदें बहाले जाएंगे। जवाब कल तड़के 1 बजे से मायामी गार्डन्स के हार्ड रॉक स्टेडियम में, हैरी केन वर्सेस अर्लिंग हैलैंड, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे। देखते रहिए और सुनते रहिए। और इन दोनों में जो जीतेगा वो लोहा लेगा अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से। यानी क्वार्टर फाइनल नंबर 4 कल ही रविवार की सुबह 5 बजे, यानी एक पहला मैच 1 बजे, दूसरा मैच 5 बजे, पहला सेमीफाइनल मंगलवार रात 11 बजे खेला जाएगा फ्रांस वर्सेस स्पेन, और दूसरा बुधवार 15 जुलाई को इसी समय वर्ल्ड कप का महाफाइनल रविवार 19 जुलाई 2026 की रात 11 बजे। देखते रहिए और सुनते रहिए। आज रात कोई भी मैच नहीं, लेकिन कल तड़के 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, मार्क गेही, डेक्लान राइस और रिस जेम्स सबके सब ट्रेनिंग पर लौट आए हैं, इसलिए कोई भूल चूक नहीं। इट्स कमिंग होम। इस बीच इंग्लैंड का ट्रांसफर बाजार 15 जून को खुलते ही फटने लगा है। अब तक का सबसे महंगा और ढांसू ट्रांसफर मैनचेस्टर सिटी ने पूरा किया है, यानी एलियट एंडरसन 116 मिलियन पाउंड में नॉटिंगहम फॉरेस्ट से आया है। सैंड्रो टोनाली 92.5 मिलियन पाउंड न्यूकासल यूनाइटेड से टोटेनहम हॉट्सपर में। टोटेनहम ने ही मैथ्यूस फर्नांडेज को भी हासिल किया वेस्ट हम यूनाइटेड से, और इसी टोटेनहम में आया है ब्राइटन से यान पोल वान हेक 52 मिलियन पाउंड में। एकदम ताज़ा एक्टिव सक्रिय हो गया है टोटेनहम हॉट्सपर। और ब्राज़ीलियन खिलाड़ी एडियसन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो सौदा तय हुआ था पिछले 2 जून को, लगता है वो अभी लटका हुआ है, अभी तक वो अपना मेडिकल पूरा करने नहीं आया है। इस बारे में सुनते रहिए। 1 सितंबर की रात ट्रांसफर विंडो बंद हो जाएगा, किंतु इससे पहले खूब बजेगा बाजा और खूब होगी नीलामी खिलाड़ियों की। टेनिस में अलेक्जेंडर जेरे वर्सेस यानिक सिनर, ये है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल। कल रात विश्व नंबर 2 यानिक सिनर ने 39 ईयर ओल्ड नोवाक जोकोविच को रुला दिया एक क्लिनिकल फिनिश में, यानी 6-4, 6-4 और 6-4 से हराकर 3 बार 6-4 से जीत हासिल की। यानिक सिनर ने जो अब टक्कर लेगा 29 वर्षीय 29 ईयर ओल्ड जर्मन चैंपियन अलेक्जेंडर जेरेव से। सो कल संडे को ही फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर जेरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को कल रात उसने हराया 7-6, 6-2 और 6-4 से हराकर साबित कर दिखाया कि रोलांग गारोस में जीत
जाकर जीतना कोई इत्तेफाक नहीं था, एक कंफर्मेशन था कि 29 साल की आयु में भी उसका टाइम आ गया है। अलेक्जेंडर ज़ेरेव वर्सेस यानिक सिनर कल शाम विम्बलडन के सेंटर कोर्ट में, और आज रात लगभग 7 बजे वुमेन सिंगल का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा करोलिना मुचोवा और लिंडा नुस्कोवा के बीच, यानी 100% एंड ऑल चेक फाइनल। क्रिकेट में एक टोटल वाइट वॉश, एक कंसलेशन और बाकी 3 मैच बुरी तरह से हारने के बाद भारत की T20 टीम आज फिर इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी T20 मैच खेलने उतर रही है साउदम्पटन के यूटिलिटा बाउल में। सीरीज हारने के बाद युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की कमियों की बात हो रही है, तो दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज का ये आखिरी T20 मुकाबला जीतना सम्मान का भी सवाल है, तो दूसरी ओर भारत की महिला टीम को बनाकर टीम इंडिया को मजबूती, मतलब भारतीय महिला टीम को भी कुछ मुखी खानी पड़ रही है। हालांकि स्मृति मानधाना ने एक शानदार 83 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की है, किंतु इंग्लैंड ने कल रात 1 विकेट के नुकसान और 21 रनों पर पहले दिन का खेल खत्म किया। भारतीय टीम ने बहुत ही कम रन बनाए हैं एक पहले टेस्ट मैच के पहले दिन, सो आज दूसरा दिन आरंभ होगा लॉर्ड्स स्टेडियम में। आज भयंकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की अपेक्षा की जा रही है, इस बारे में भी सुनते रहिए। सो संक्षेप में, कल रात स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया, अब स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। आज रात 12 बजे तक आराम, कल तड़के 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, फिर सुबह 5 बजे कल ही अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, यानी सुपर संडे की सुपर सुबह। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।

सुबह के 7:23 हो रहे, एक बार फिर स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। ये है AM2 रेडियो मॉरिशस, मीडियम में बात 7 किलोहर्ट्ज़ पर सभी का हम स्वागत करते हैं। और सुबह के 7:24 अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। और क्यूपिप लीज कॉमर्सन स्ट्रीट, लाक्रॉ स्ट्रीट, विक्टर इगो स्ट्रीट, बेसाक स्ट्रीट, मोहल स्ट्रीट, लाल माटी स्ट्रीट, डाली स्ट्रीट, मोसेल मोसेनविल, मैक्सिम बुले स्ट्रीट, इंपास हेनरी, इंपास मेग्रो, ड्यूक्रे स्ट्रीट, ड्यूपेरे स्ट्रीट के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 12 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 4 बजे के बीच

0: विच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और जी हाँ, बेले पॉन लॉजे बेले रूट रॉयल ला लुसी बेले मोसेलमान ला शमीने बेल रोज क्लेमेंसिया के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:15 से शाम के 4:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में Morcellement Sifflen, Flic en Flac, Avenue des Perruches, Avenue des Mêles, Avenue des Cresserelles, Oasis, Avenue des Paillonqueux, Kenivation Co, Sotit Kia Jatahe, Kia Chenivar Gara July Co, Bakisari Arbitre, Shamkisari Tin Bajiki Beach, Bizlik Supply Makatoti, Lai Jaigi. Or Nouvelle Découverte, Jihan Nouvelle Découverte, Burma Road, Rajabali Road, Bilor Bird, Royal Road, Nouvelle Découverte, School Lane, Chiwala Road, Chemin La Plaine और Speed Lane के इनोवेशन को सूचित किया जाता है कि ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 3:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बोबासिन Prison Beaubassin, Avenue Jasmin, Avenue Cosmos, Avenue Berkeley, Asylum, Résidence Berkeley, La Rue Etienne Roder, MOA Berkeley, Piscine Serge Alfred, OYC Verge Bissambor, Montroche और आसपास में जुगलियाँ हैं। वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:30 से दिन के 9:30 के बीच और दोपहर बाद के 1:30 से 2:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर कैटरबोन, जी हाँ कैटरबोन, पियरफों, क्रेसनविल, अविप्रो पियरफों, क्रेसनविल, बासन स्ट्रीट और मोसेलमोर रिवरसाइड की निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:30 से दिन के 1:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।

नई सुबह है आज, नए दिन का आगाज कीजिए एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ। कल जो बीत चुका वो एक सपना था, आज जो है आपका हकीकत है, आपका वर्तमान है और आने वाला है आपका भविष्य। बुद्धिमान इंसान, अकलमंद इंसान वो है जो वर्तमान में जीता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। अगर वर्तमान अच्छा हो तो भविष्य उज्जवल होता है कि नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम तो ठीक ठाक है और आपका साथ देने आएंगे मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजारा।

0: सुबह का नजाना अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। यस, और अभी सुबह का नजाना पार्ट 1 चल रहा है। कुछ प्यारे प्यारे गाने, कुछ लवली म्यूजिक, मीठी मीठी बातें आप लोगों के साथ। 7:45 होगा ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से। 8 बजे भोजपुरी में समाचार, शोक समाचार पढ़े जाएंगे, उसके बाद पार्ट 2 सुबह का नजाना, और 9 बजे हमारा आपका साथ पूरा हो जाएगा। आज है सैटरडे मॉर्निंग 11 जुलाई 2026। आज की तारीख खास है क्योंकि अगर आज आपका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑल द बर्थडे बॉयज, ऑल द बर्थडे गर्ल्स, हैप्पी बर्थडे। और हमारा प्रसारण केवल रेडियो पर नहीं चल रहा, हमारा प्रसारण चल रहा है रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी। सो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। और मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर मैसेजेस पढ़ेंगे 8 बजे के बाद, ठीक है? ऑलराइट। और बेशक जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है। भर सप्ताह आपने काम किया, सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स ऑन रिलैक्स मोड। और सैटरडे संडे को बहुत से लोग घर पे रहते हैं और बेशक आराम कर रहे हैं, तो यूँ ही आराम करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। कुछ लोग काम कर रहे हैं, बोंको आज कहते हैं आप लोगों को, तो चलिए शुरू करते इस मस्त मॉर्निंग शो के पहले हिस्से में आज का चिंतन डॉक्टर झमन जी द्वारा।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: आत्मविश्वास ही वह अद्भुत अदृश्य और अनुपम शक्ति है, जिसके बल पर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। वही आपकी आत्मा है, वही आपका पथ प्रदर्शक है।

जीवन का कटु सत्य ये है कि प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं। प्यार से बना है संसार, प्यार से बने हैं आप, प्यार से बने हैं हम। भगवान ने हर चीज बहुत प्यार से बनाया है। ये पेड़, ये वन, ये हरियाली, ये पक्षी, तितलियां, आकाश, धरती, मनुष्य, जानवर, प्रकृति का हर एक कण कण प्यार से बना है। प्रभु ने बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से संसार को बनाया है और हमें हर हाल में संसार को यूं ही प्यारा रखना है हमारे कर्मों द्वारा, है कि नहीं। सो प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं। प्यार अगर ना होता, ना हम होते, ना आप होते, ना ये संसार होता।

अगर ये बात सच है कि प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं, सो इस दुनिया में इतनी नफरत क्यों है, इतने शिकवे क्यों है, दिलों में क्यों इतनी नफरत है आज? आज इंसान इंसान के खून का प्यासा क्यों है? क्यों हर इंसान प्यार से जी नहीं सकता एक दूसरे के साथ? बस दो दिन की जिंदगी है, फिर पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं। सो बैड, रियली बैड। हर किसी को हर किसी से प्यार करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं दोस्तों, इंसान के नाते हमारे दिल में लोगों के लिए प्यार होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए हम सुनते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गाना, सपनों के शहजादे, ख्वाबों के शहजादे। और आपके ख्वाबों में कौन सा वो शहजादा है जो आपको रात दिन तड़पाता है? कहीं वो शहजादा वो ही तो नहीं? क्या बात है। चलिए, प्यार भरी बातें हो रही है और प्यार भरे गीत भी, आप सभी के नाम, रेडियो मोशन के लिसनर्स के नाम।

अब जी सुनिए, सुबह का नज़ा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है, द फर्स्ट पार्ट। अब सुनते हैं हिंदी स्पीकिंग यून के उससे अगला प्रोग्राम ज्ञान सरोवर।

हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा श्रीमान पैतृ विक्रम का सादर नमन, सादर अभिवादन। मेरे आदरणीय श्रोताओं, हर सप्ताह की तरह हम आज भी एक नए विषय पर चर्चा व विचार विनिमय करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, आज का विषय जितना महत्वपूर्ण तथा रोचक

0: लायक है, उतना ही विशेष हमारे सामने बैठी हमारी अतिथि है। आप मॉरिशसीय धरातल के हिंदी विभाग के वे सशक्त स्तंभ है जिन पर हिंदी भाषा का झंडा पूरे जोर शोर से लहरा रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में सीनियर लेक्चरर होने के साथ साथ आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन की कर्मठ प्रधाना भी है। प्रिय श्रोताओं, चलिए हम डॉक्टर अंजनी चिंतामणि जी का सहृदय स्वागत करते हैं। डॉक्टर अंजनी चिंतामणि जी, आज के अतिथि के रूप में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद विक्रम जी।
0: प्रिय श्रोताओं, सभी हिंदी प्रेमी तथा पाठक इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होंगे कि जुलाई के महीने में मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है। इसी विषय में डॉक्टर चिंतामणि जी, 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है, तो आप हमारे श्रोताओं को यह बताने की कृपा करें कि प्रेमचंद साहित्य की विशेषता क्या है जिसके कारण वे हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं।
1: सबसे पहले तो हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से मैं आपका विक्रम जी और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार करती हूँ। मुंशी प्रेमचंद, जब मुंशी प्रेमचंद की बात होती है तो आप हिंदी और उर्दू के महान कथाकार, उपन्यासकार तथा समाज सुधारक थे।
0: अच्छा।
1: उन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण बनाया और अपनी लेखनी के माध्यम से किसानों, मजदूरों, महिलाओं, समाज का जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, साथ में सामान्य जनजीवन की पीड़ा और उनके संघर्ष को उन्होंने स्वर प्रदान किया।
0: क्या बात है।
1: उनकी भाषा वैसे तो सरल, सहज और जनसामान्य की भाषा होती है और इसीलिए उनकी सारी कहानियाँ, उनके उपन्यास सीधे दिल को छूते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके जो प्रमुख उपन्यास है, मैं अपने श्रोताओं को याद करा दूं कि ऐसे कई नाम हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। उन उपन्यासों में है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। और प्रचलित कहानियों में ईदगाह कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी।
0: मैंने पढ़ी भी है
1: जी। सुंदर, जब बचपन में थे तो ईदगाह कहानी पढ़ा करते थे। फिर है कफन, पूस की रात, नमक का दड़ोगा, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी। ये ऐसे कुछ नाम है, ऐसी कुछ कहानियां हैं जो आज भी बड़ी ही प्रासंगिक है और यही कारण है कि उन्हें हिंदी कथा साहित्य और विशेषकर उपन्यास साहित्य का सम्राट माना जाता है। मैं आपको बता दूं विक्रम जी कि जब हिंदी साहित्य की बात होती है तो प्रेमचंद उनके एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदी साहित्य की चर्चा हो और आप प्रेमचंद को भूल गए हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे उन्होंने हिंदी साहित्य की नींव बांधी है।
1: बिल्कुल। और जिस समय उन्होंने रचनाएं रची थी उस समय तो भारत परतंत्र था।
0: बिल्कुल।
1: अब उस समय उन्होंने लोगों में देश प्रेम की भावना, क्रांति की एक आग सुलगाई थी। और आज हम जब देखेंगे उनकी कहानियों को इतने वर्षों बाद अगर हम पढ़ें या उपन्यासों को, तो जिन समस्याओं की बात की है कहीं ना कहीं समाज में आज भी वे दिखाई देती हैं।
0: आज भी प्रासंगिक है। मतलब
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर चिंतामणि जी, गर्व के साथ कहते हैं कि आपके तत्वाधान में हिंदी स्पीकिंग यूनियन बड़ी सक्रियता के साथ कार्य करती हुई परिलक्षित हो रही है। आप हमें बताएं कि इस महीने हिंदी संगठन इस संदर्भ में किस गतिविधि का आयोजन कर रहा है।
1: जी, जिस तरह से आपने एक तो विषय की पृष्ठभूमि आज बांधी है विक्रम जी, हम चूंकि प्रेमचंद की बात कर रहे हैं और आपने अभी भी बताया कि 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है, तो इस बार हिंदी संगठन ने कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में यह निर्णय लिया कि प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जो कालजयी कहानी है बूढ़ी काकी, उसके नाट्य मंचन का आयोजन किया जाएगा।
0: अच्छा।
1: और काफ़ी समय से मैंने ध्यान दिया है कि मॉरिशस में प्रेमचंद साहित्य की चर्चा या उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों पर उतनी मतलब बातचीत नहीं हो पा रही है, विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है और न ही पिछले कुछ समय में हमने उनके नाटकों का मंचन भी देखा है। पहले खूब हुआ करता था।
0: हाँ, पहले खूब हुआ करता था,
1: लेकिन फिर इसी ये जो एक स्थिति आ गई है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे युवा हैं, वे पुनः न केवल कक्षा के दायरे में प्रेमचंद

0: को पढ़ें, लेकिन कक्षा के बाहर निकलकर प्रेमचंद कौन थे, किस तरह की कहानियां लिखते थे, कहानियों में संवेदना क्या थी, उसे लोगों के सामने लाना। तो उनकी कहानियों में मानवीय मूल्य, सामाजिक चेतना और जो साहित्यिक विरासत है, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषकर युवा पीढ़ी तक हम उसे पहुंचाएं। और इसी उपलक्ष्य में सोमवार 20 जुलाई को, लगभग 2 सप्ताह बाद 20 जुलाई को सेर्ज कॉन्स्टेंटिन वाक्वा में बूढ़ी काकी उनकी कहानी का नाट्य मंचन होगा।
1: सच में?
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा।
0: इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए आज मैं विशेष कर ज्ञान सरोवर के कार्यक्रम में आई हूँ, ताकि जो जनता हमें सुन रही है इस गतिविधि से अवगत हो।
1: ये वाकई में, सच में विश्वास कीजिए, एक प्रेरणादायक कार्य होगा। तो प्रधानाथ जी, मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि मुंशी प्रेमचंद की समस्त कहानियों में, जैसे कि आपने कहा कि बूढ़ी काकी नामक कहानी का चयन क्यों किया गया है?
0: जी, यह एक बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है। मैं कहूँगी कि शुरू शुरू में जब विचार किया जा रहा था संगठन में कि कौन सी कहानी ली जाए, देखिए कफन का मंचन हो चुका है, पूस की रात, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका बहुत पहले मंचन हुआ है, लेकिन बूढ़ी काकी प्रेमचंद की अत्यंत ही, मैं कहूँगी, मार्मिक कहानी है, संवेदनशील कहानी है। और इस कहानी में हमें बुजुर्गों के सम्मान, जो उनका पारिवारिक उत्तरदायित्व है, करुणा, मानवीय मूल्यों का संदेश इस कहानी में हमें मिलता है। और आज आप जानते हैं कि जब परिवार और समाज की संरचना बदल रही है, परिवार कहीं ना कहीं बिखर रहा है, एकल परिवार का बोलबाला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस कहानी की सच्चाई हमें काफ़ी संदेश देने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रस्तुति दर्शकों को आत्मचिंतन के लिए जरूर प्रेरित करेगी।
1: तो प्रधाना जी, पूरी कहानी का मंचन होगा नाट्य रूप में?
0: जी, पूरी कहानी का, लेकिन इतना है कि समय की पाबंदी होती है।
1: हाँ।
0: लेकिन इतना आश्वस्त रहें कि कहानी की पूरी संवेदना बड़े ही सुंदर ढंग से इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।
1: तो डॉक्टर चिंतामणि जी, कहानी को नाट्य प्रस्तुति में परिवर्तित करने का क्या कोई विशेष कारण है?
0: जी जी, ज़रूर। देखिए, जब हम कहानी पढ़ते हैं या कोई आपको कहानी सुनाता है, उस विधा की अपनी विशेषता होती है, लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जो साहित्य को जीवंत बना देती है, उसे बिल्कुल जीवित बना देती है। और जब भी कोई कहानी मंच पर साकार होती है, तो उसका संदेश सीधे दर्शकों के हृदय तक पहुंचता है।
1: सच बात।
0: और देखिए, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए यह साहित्य से जुड़ने का एक प्रभावी और रोचक माध्यम बन जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैं आपको बताऊं कि बचपन में जितने नाटक हमने देखे थे, जहां जहां हमने प्रस्तुतियां देखी और नाटकों में भाग भी लिया, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। तो इस रूप में नाटक के माध्यम से जब आप एक प्रस्तुति करते हैं, तो वह आपके मानस पटल में बिल्कुल ताजा हो जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे चित्र सा खींच जाता है सामने में।
0: बिल्कुल, जैसे आप फिल्म भी देखते हैं तो वही होता है ना। तो मैं भी चाहूंगी कि जो अनुभव हमें उस समय में प्राप्त हुआ था, आजकल के हमारे बच्चे आप जानते हैं कितने विजुअल हो गए हैं, सब कुछ सोशल मीडिया में, फोन के माध्यम से जब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता
1: आज
0: है।
1: आज पढ़ाई पढ़ने की पांच जो कला होती है, सिमट कर सिर्फ दृश्य में आ गया।
0: हाँ, देखते हैं ना। तो युग की यही मांग है, और इस तरह हमने सोचा कि इस नाटक के माध्यम से जब युवा पीढ़ी और जितने हमारी जो जनता है, जितने लोग वहाँ आएंगे, उस कहानी की संवेदना को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। हाँ। यही हमारी आशा है।
1: डॉक्टर चिंतामणि जी, इस नाटक में कौन भाग ले रहे हैं? क्या यह आम जनता अर्थात कॉमन पीपल, पब्लिक के लिए भी खुला है?
0: जी, जब हम नाटक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस नाटक की तैयारी में एक बहुत ही, मैं कहूँगी, समूह है, ग्रुप है युवा कलाकारों का। और इस नाटक का मंचन वाक्वा कलाभूमि मंदिर के प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा तैयार किया जाएगा।
1: अच्छा।
0: और आपको बता दूं कि यह एक ऐसा समूह है जो हाल में ही वे लोग भारत में गए थे, और वहाँ पर भारत में जो उत्सव मनाया जाता है नाटकों का, उस फेस्टिवल में उन्होंने भाग लिया था।
1: सच में?
0: और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वे चमके थे।
1: हमारे स्थानीय कलाकार,
0: हमारे अपने स्थानीय कलाकार,
1: बहुत अच्छी
0: उनके

0: डायरेक्टर आदर्श सितोहल जी हैं और उनके साथ कई युवा कलाकार जुड़े हुए हैं। तो इस समूह ने तैयारी की है, अभी जोर शोर से वे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, 2 सप्ताह बचे हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य में लगे हैं। और उन्होंने प्रेमचंद की जो मूल कहानी है उसकी आत्मा और संवेदना को पूरे ध्यान के साथ, निष्ठा के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए खूब श्रम वे कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी यह प्रस्तुति दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ेगी।
1: हाँ, प्रधाना जी, हम सब हिंदी प्रेमी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि मुंशी प्रेमचंद भारतीय हिंदी साहित्य आकाश के युग प्रवर्तक का रचनाकार हुए हैं। तो क्या उनकी रचनाएं कालजयी हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आज की आधुनिक पीढ़ी उनसे परिचित हैं?
0: जी, प्रेमचंद का साहित्य, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। इससे पहले मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जहां आपने पूछा कि क्या यह कार्यक्रम आम जनता के लिए खुला है, तो यह हाँ आम जनता के लिए खुला है, निशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, और उसमें सभी लोग आ सकते हैं देखने के लिए, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, साहित्य प्रेमी हो, समस्त नागरिक वहाँ आ सकते हैं।
1: डॉक्टर चिंतामणि जी, आप हमारे श्रोताओं को प्रेमचंद दिवस के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी विक्रम जी, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं तो कहूँगी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी प्रेमचंद साहित्य रखा गया है, चाहे SC हो, HSC हो, हिंदी प्रचारणी सभा की बैठकाओं का जो पाठ्यक्रम है, और तृतीयक स्तर के पाठ्यक्रम में भी प्रेमचंद साहित्य है। तो मेरा संदेश यही होगा आज के इस कार्यक्रम का, मैं चाहूँगी कि साहित्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सभी इस कार्यक्रम में आएं और इस नाटक का रसास्वादन करें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमें करुणा, संवेदनशीलता, समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश देता है। तो आइए प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर हम उनके साहित्य को पढ़ें, समझने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संकल्प लें। और पुनः मैं कहूंगी, सोमवार 20 जुलाई को शाम के 6 बजे सेश कॉन्स्टेंटिन थिएटर में वाक्वा में आयोजित बूढ़ी काकी के नाट्य मंचन में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।
1: तो आदरणीय श्रोतागण, हम आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। हम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की प्रधाना को अपने अमूल्य समय तथा विचार परक ज्ञानवर्धक बातों, विचारों तथा शिक्षाप्रद संदेश के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ज्ञान सरोवर को जीवंत सत्र बनाए रखने के लिए अगले सप्ताह एक नया विषय सुनने के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए एक बार फिर आप सभी को, हमारी विशेष अतिथि को तथा MBC के टीम को कोटिशः धन्यवाद। सादर सप्रेम नमस्ते।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: घरी मिला ले जा फजीर के 8:03 हुआ था। सब कोई के नमस्ते या प्रणाम। देरी से शुरू करल जाए होला ई भोजपुरी समाचार खातिर क्षमा प्रार्थी हैं जा। सबसे आगे हमनी देश के समाचार संगे बुलेटिन के शुरू करब जा। आज 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस मनावल जाता है। ई बरिस के विषय आज और भविष्य खातिर युवा के आशा और आकांक्षा के साकार करे के है। ई विषय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड देने से जारी एगो नवा रिपोर्ट के निष्कर्ष के दर्शावेला। ई सर्वेक्षण में 73 देश के 18 से 39 बरिस आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़ल 1 लाख से जस्ती आदमी के उलो के रिश्ता, परिवार, नियोजन, संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ल आकांक्षा के बारे में जानकारी देवेला। रिपोर्ट से ई वैश्विक तस्वीर सामने आवता कि आज के युवा वयस्क अपन संबंध, पारिवारिक जीवन और भविष्य से कौन अपेक्षा रखत हवन जा और उ लोग कौन कौन प्रमुख चुनौती और बाधा के सामना करत हवन जा। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो काल सांझ के पोर्ट्रिस में आज एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट करलन कि कोनो भी पेंशन योजना के समाप्त नहीं कर जाता। मंत्री बोलन कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन हर एगो पात्र नागरिक के अधिकार है। उ भी पुष्टि करलन कि वरिष्ठ 2026 2027

आईज के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देई होला व्यवस्था के सरकार वापस ले ले बाटे। उ बतैलन कि अब मॉरिशस के नागरिक लगे 60 बरिस के आयु से संशोधित पेंशन मिले के विकल्प बाटे हुए परी जे अपन स्टेट एज पेंशन के भुगतान 65 बरिस के आयु ले स्थगित करे खोजत हो जा उ लोग के आजस्ती पैसा पेंशन में मिली। राज्यसभा काल देरी सांझ के घरेलू हिंसा विधेयक के यानी के डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बिना कोनो संशोधन के पारित कर दिली बाटे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री आर्यन अवमारी बोलन कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ित के जस्ती बेहतर सुरक्षा दे खातिर और अपराधी के जवाबदेह बनाए खातिर प्रतिबद्ध बाटे। ई नवा कानून के चलत अपन पेशेवर दायित्व के निर्वहन करत बखत घरेलू हिंसा के मामला के जानकारी मिलला पर संबंधित पेशेवर खातिर एकर सूचना दे के अनिवार्य होई। एकर संगे एनफोर्समेंट ऑफिसर के जिम्मेदारी के भी विस्तार करल जाता। मंत्री बोलन कि ई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन खातिर मंत्रालय यह देने से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करल जाए। ई प्रशिक्षण सेफ लाइफ्स यूके के विशेषज्ञ प्रशिक्षक के सहयोग से देवल जाए। मंत्रिपरिषद शागोस द्वीप समूह से जुड़ल मामला में हाल में भयल नवा घटनाक्रम की भी समीक्षा करलक। 2 जुलाई 2026 के अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर और प्रधानमंत्री दफ्तर तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ब्रिटेन सरकार के अधिकारी संगे गो वर्चुअल बैठक में भाग लेलन जा। ब्रिटिश अधिकारी बतैलन जा कि 20 जुलाई 2026 ले नवा प्रधानमंत्री के नियुक्ति होइला के उम्मीद बाटे। कर संगे उ लोग भी बोलन जा कि शागोस द्वीप समूह के लेके ब्रिटेन के नीति में कोनो बड़ा बदलाव की संभावना नहीं बाटे। बैठक के बखत मॉरिशस ई बात पर जोर दिलक कि ब्रिटेन के नवा प्रधानमंत्री के शागोस समझौता के अनुमोदन खातिर एगो स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करे के चाहिए। मॉरिशस ई भी संकेत दिलक कि जे आवश्यक प्रगति नहीं हो तो उ सितम्बर 2026 ले अपन स्थिति के समीक्षा करे सकी। आर मंत्री परिषद काल भयल बैठक में कईगो महत्वपूर्ण निर्णय भी लेलक। जिकर में एगो निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 137 गो मवेशी से संबंधित बाटे। इस मवेशी के आज सामदी 11 जुलाई के जहाज से उतारल जाता। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुल्लेल बोलन कि मवेशी के सबसे आगे लाशोमियम के क्वारंटीन केंद्र में रखल जाए। एकर बाद उलो के स्वास्थ्य के जांच खातिर कईगो परीक्षण करल जाए। एक संगे जहाज के चालक दल के भी स्वास्थ्य के निगरानी करल जाता। मंत्री बोलन कि ई पूरा प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के पूरा पालन करल जाता। ई भी स्पष्ट करलन कि अनुमति आयातक कंपनी उबोरा वेंचर्स के विशेष परिस्थिति में एगो असाधारण उपाय के रूप में देवल जाता। ध्यान रखे कि एमवी अपेक्स तंजानिया के ध्वज होला एगो मालवाहक जहाज मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह से 537 गो मवेशी के लेके गिनी खातिर रवाना हो रहा। हालांकि अपरिहार्य परिस्थिति के हवाला देवत जहाज के कप्तान पोर्टलिस बंदरगाह पर रुके के अनुमति मंगले रहल। एकर बाद 4 जुलाई के मॉरिशस के अधिकारी जहाज के मॉरिशस के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में ठड़ा होय के आदेश देले रहल। अब बात फुटबॉल के बारे में करिया जा। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन सेमीफाइनल में चलाल बाटे। कल रात के खेल गए क्वार्टर फाइनल मुकाबला में स्पेन बेल्जियम के 2-1 के स्कोर से हरेलक। पूरा मैच में स्पेन दबदबा दिखैलक। एक बार फिर पोर्चुगाल के खिलाफ राउंड 16 निखन मिकेल मेरिनो टीम के हीरो बनलन। मैच के बखत बतौर सब्सिट्यूट मैदान में उतर के ऑर्सेनाल के मिडफील्डर मेरिनो अंतिम क्षण में बेल्जियम के गोलकीपर लामेंस के गलती के फायदा उठावत विजय गोल दाग के स्पेन के सेमीफाइनल के टिकट दिलैलक। एकर से आगे मैच के आधा घंटा होइला पर यानी कि 30वां मिनट पर फाबियन रुइज स्पेन के बढ़त दिखैलक जबकि बेल्जियम खातिर देके तेलेरे बराबरी के गोल करलक। अब मंगर के सेमीफाइनल में स्पेन के सामने

0: ना फ्रांस से हो ई मुकाबला के सीधा प्रसारण एमबीसी पर करल जाए। फीफा विश्व कप की दुगो आज रहल क्वार्टर दुगो आ टीम दुगो खेल जोन क्वार्टर फाइनल में हो ऊह तिमास 1 बजे फजीर के इंग्लैंड अपन दूसर विश्व कप खिताब के उम्मीद लेके नॉर्वे के खिलाफ खेली। ई मुकाबला के सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 11 पर करल जाए। दूसर मैच जोन रही ऊ क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मुकाबला स्विट्जरलैंड से हो ई मैच काल फजीर के ही 5 बजे फजीर के खेलल जाए। दूसरा देश के समाचार में दक्षिण स्पेन में लगल भीषण जंगल के आग में अबले 12 जना के मौत हो गल बाटे, जबकि 23 जना अभी ले उलो के कोनो अता पता नहीं बाटे। आपातकालीन सेवा के टीम सुक से आग बुताई में लगल हवंजा। अधिकारी लोग बोलत हवंजा कि बीफे के लगल ई आग फैलते गल बाटे, और ऐसन बखत में लगल जब एगो बिजली के खम्बा जंगल में गिर गल, उसे जोन चिंगारी भरकल उसे आग धरगल। तही संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल, ध्यान से सुनला ओका खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मन्नी के समाचार सुना। मोंटेक्योरो द्रियांबेल में 60 बरिस की 3 कोरी बरिस के श्रीमती सुभावती दुकास के मन के मृत्यु हो गल बाती। इनकर अर्थी आज फजीर 9 बजे इनकर बाप ज्ञानी दुकराज के घरे रियोम्बेल से उठाकर अंतिम संस्कार करती सुया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। रॉयल रोड नोट्रडाम में 70 बरिस के 3 कोरी 10 बरिस के स्वाले केरामत जिनकरा स्वाले के नाम से भी आदमी जिसे जाना था जहाँ इंतकाल कर गल हुआ। इनका जनाजा आज फजीर के 12 बज के आधा इनकर बेगम रोजिदा केरामत के घरे नोट्रडाम से उठा के सबसे आगे नोट्रडाम के मस्जिद ले जावल जाए, फिर दफनाए खातिर बुआ मौसों के कब्रस्तान। फिर हाफ पॉस नून। क्रिमेशन रोड रोशनो में 65 बरिस के 3 कोड़ी 5 बरिस के श्री अभिमन्यु एमांदी जिनका राम के नाम से भी जैसे जाना था जाके मृत्यु हो गई बैठे। इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनकर दमाद अनिल कुमार पादियाची के घरे रोशनो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लामोचे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे एट 11 AM। स्कूल इन लावेनिया सैपिया में 74 बरिस के 3 कोड़ी 14 बरिस के बीबी फारूदा दगाही पैदाशी नाम सोहना जिनकरा मदम आउन के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ थन जा इंतकाल कर गल हुआ। इनका जनाजा आज दिन के 1 बज के आधा इनका घरे लावेनिया सैपिया से उठा के दफनाए खातिर सैकोसा सैपिया के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे हाफ पॉस 1 PM। दुखी रोड लालोगा सैपिया में 63 बरिस के 3 कोड़ी 3 बरिस के श्रीमती चंद्रानी बुदन पैदाश नाम बागोसा जिनकरा इंदिरा के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ थन जा के मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घर लालुआ सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोसा सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अवनी सैन लुई प्लेजांस रोजिल में 61 बरिस के 3 कोड़ी 1 बरिस के श्री हरिहरन मुचिया जिनकरा राजन के राम से बेदमी जैसे जहां तक जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बज के आधा एलियनसन बुबासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कॉलोवी के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पॉस 2 PM। थ्रेबो नंबर पांच वाकुआ में 82 बरिस के 4 कोड़ी 2 बरिस के श्रीमती गोइंदामा पेमान पैदाशी नाम मुतुसामिया जिनकरा तौचिन गने के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होकर बाती। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे कर बेटा विष्णु पेमाल के घरे वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रेसुलफिगनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट ओकुले में 73 बरिस की 3 कोड़ी 13 बरिस के श्रीमती दानो लक्ष्मी गोविंदू नायडू पैदाशना नायक है ना जिनकरा मनी के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पति श्री नायडू श्रीनिवासन गोपाला कृष्णास्वामी के घरे उकुली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगाह के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लारू लेक्लिजियो क्यूपिप में 56 बरिस के 2 कोड़ी 16 बरिस के रेजा बरू जिनकरा रेजा के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ इंतकाल कर गल हुआ। इनका जनाजा आज फजीर के 11 बजे इनका घरे क्यूपिप से उठा के अंतिम दफनाए खातिर बिगा के शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। Bagalu Road, vous avez jamais

Valley Road, Brzeve Gemme, Unhatar Baris K 69 years old, Kitin Kori, no Bariski, Bibi Salma Nudali, Bibi Salma Nudali, Pedasham Fukana, Jinkra Salma Kinamsi, Jis Jatanja, in the Kalkar Gulhuan, in Kajanaza, Ajpajiki, the Spajin Karbeta, Muhammad Rea Nudali Kekare, Brzeve Jesutaki, Sapsiagi, Namazi Janaza Khatir, Sayed Pir Kudrat Alisha, Mazili Javajai, Fir Defnai Khatir, Brzevejia, Bobwa Lal Machi K. Bobwa Lal Machi K. Kabrasani Javal Jai. Funeral today at 10 a.m. Rai Road Modal BMA, Bayasi Bariski, Charkuri Dubariski, Shrimati Parmauti Babulal, Pedasham Lakua, Jinkra Mama Sanjay, Kinamsi Bedmi, Jessijanthan Chakir Mithi Hogalbati, Inkar Arti, Aj Dubajin Karbita, Sanjay Babulal Kikari, Modal Besi Utakan, Tim Siskar Khatir, Hue Kishamshan Bumili Jawal Jai Commission today at 2 p.m. Robert Burns Avenue Floreal Me, Pachatar Bariski, Teen Kuri, 15 बरिस के श्रीमती बसंती भवन पैदाशम बंधु आज जिनकरा बसंती के नाम से बेदमी जिस जाते हैं जाकर मृत्यु होगल बैटिनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पति राजभवन के घरे Residence d'Oiseau, Robert Burns, Avenue Floreal, c'est au Takentim Sanskar Khatir, à l'Ebrion, qui est Shamshan Boumili, Jabjal, qui est à 2 p.m. Avenue Pédrix, number 2, Monselmont Raffray Paimé, Avenue Pédrix, number 2, Monselmont Raffray Paime, 85 baris ke, 4 kuri 5 baris ke, Shrimati Krishmauti Madhu, Pedasham Jonki, Kemriti Hogal Batin kar arthi, aaj din ke 12 baj ke aadha, inkar beta, Dhanjay Madhu ke ghare, Mosalma Ghafri Pai se utha ke antim sanskar khatir, Pai ke Shamshan Bhumi le javal jaye, Commission today at half past noon. Matulen La Flora me, 60 baris ke, 3 kuri baris ke, Shrimati Sumanti Apulasami, Pedasham Gridari, Ajinkara Sumanti ke naam se vedmi, jisse jahantan jake in mithi hokar bati, inkar arthi aaj din ke 1 baje inkar beta, Pritam Apulasami ke ghare La Flora se utha ke antim sanskar khatir, Gauba ke Shamshan Bhumi le javal jaye, Commission today at 1 p.m. Number 41, Rai Road Castle me, 88 baris ke, 88 years old ke, 4 kuri 8 baris ke, Shri Dharmalingam Ramasami, jinkara bomba ke naam se admi jaise jahan ja ke mriti ho gal bati, inkar arthi aaj din ke 1 baj ke aadha, lasha pehla udon te liye ensan bubase se utha ke antim sanskar khatir, shibel ke shamshan bhumi le javal jaye, Cremation today at half past 1 p.m. Rai Road Pito me, 90 baris ke, 4 kori 10 baris ke, Shri Harichand Joyram, jinkara prabhu indar ke naam se bhi admi jaise jahan ja ke mriti ho gal bati, inkar arthi aaj din ke 1 baj ke aadha, inka ghare pito se utha ke antim sanskar khatir, Caro Mortel, L'Espérance Piton, Kishamshan Bhumili, Jabajai, Cremation today at half past 1 p.m. Payanke Road, Monselmont, Saint-Antoine, Goodlands, mais Payanke Road, Monselmont, Saint-Antoine, Goodlands, mais 77 bariske, 3 kori 17 bariske, Shrimati Jagwanti Rajkumar, Pedasham Jodwa, Ajinkara Indrani ke naam se bedmi, jis jahatan jakar mithi hoga bati, inkar arthi aaj phajit ke 11 baje inkar beta Vimal Rajkumar ke ghare Saint-Antoine Goodland se utha ke antim sanskar khatir Daguchi ke shamshan bhumi le javal jaye, Cremation today at 11 a.m. Kankarol Kenya me, 64 baris ke, 3 kori 4 baris ke, Shrimati Manti Naiku, Pedasham Sipasad, और जिनकरा नंदा के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगा बाटी इनकर अर्थ ही आज दिन के 12 बजे इनकर घर एक कोकाकोल के नियासे उठा के अंतिम संस्कार करते हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टुडी एट नून नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैट्रबोन में नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैट्रबोन में 87 बरिस के 4 कुरी 7 बरिस के श्रीमती वार्ता कुमारी गगना पैदाशना वेंक्या जिनका जीवा के नाम से बेदमी जिस जाकर मृत्यु होकर बैटिन कर अर्थी आज फजीर के 10 बज के आधा इनका घरे कैट्रबोन से उठा के अंतिम संस्कार का तीर गांधी पालमा कैट्रबोन के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डियर हॉफ पोस्ट 10 एएम आले ब्रियन वाकुआ में 85 बरिस के 4 कोरी 5 बरिस के श्रीमती सुबौती पेसन पैदाशम शेवनत और जिनकरा सबित के नाम से बेदमी जिस जा के मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 9 बज के आधा La Chapelle aux Dentelliens, Sun Bobasse Soutakin, Tim Sanskar Khatir, Ali Brion Kishamshan Bhumile Javal Jaye, Commission today at half past 9 a.m. Kali Lane Bambu me, 74 Bariske, 3 Kori, 14 Bariske, Shri Dhanilal Parau, Jinkara Gyan ke naam se bedmi, jis jahan jaakar mriti ho gal bati, inkar arthi, aaj 12 baj ke aadha, inka ghare Bambu se utha ke antim sanskar khatir, mein jin Bambu ke Shamshan Bhumile Javal Jaye, Commission today at half past noon. Valton. Montailong me 62 baris ke, 3 kori 2 baris ke.

0: श्री सत्यानंद इतवारा, श्री सत्यानंद इतवारा जिनकर अजीत के नाम से बेद में जिस जहाँ तक जाके मृत्यु हो गई बट इनकर अर्थी आज 9:00 के इनकर पत्नी श्रीमती बबीता इतवारा के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआमा औषंत अघोष के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमिशन टू डियर हॉफ पॉस 9 AM एवेन्यू डू डे लिस्पेरेंस पितो में एवेन्यू डू डे लिस्पेरेंस पितो में 72 बरिस के 3:12 के श्रीमती शांति देवी शंभू, श्रीमती शांति देवी शंभू पैदाशम बद्री या जिनकरा बसंती के नाम से वेद में जिस जातन जाके मृत्यु होकर बैठे इनकर अर्थी आज फजर के 9:00 इनकर बेटा रामचंद्र शंभू के घर इस पे औस्पितों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डेयर हॉफ पॉस 9 AM न्यू रोड घोषणा में, न्यू रोड घोषणा में 76 बरिस के 3:16 के श्री धर्मराज अलोल, श्री धर्मराज अलोल जिनकरा धर्म के नाम से वेदी जिस जहाँ जाकर मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजर के 11:00 आधा इनकर पत्नी श्रीमती माला हरलोल के घरे घोषणा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डियर हॉफ पॉस 11 AM कॉम्बेले ग्लेनपॉक वाकुआ में, कॉम्बेले ग्लेनपॉक वाकुआ में 80 बरिस के 4:20 के श्री ओनन हरिला, श्री ओनन हरिला जिनकरा विदा के नाम से आदमी जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज फजर के 9:00 आधा इनकर बेटा राकेश ओनन के घरे ग्लेनपॉक वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थॉमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डियर हॉफ पॉस 9 AM रॉय रोड एन एस फ्लोरो में, रॉय रोड एन एस फ्लोरो में 63 बरिस के 3:03 के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया, श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया के मृत्यु होगल बटिनकर अर्थी आज फजर के 11:00 इनके घरे एन एस फ्लोर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जाव जाए क्रिमिशन टू डे एट 11 AM नंबर 9 मोसेलमो माउंट पॉम्प्लीमुसेस में, नंबर 9 मोसेलमो माउंट पॉम्प्लीमुसेस में 80 बरिस के 4:20 के श्री प्रेमानंदा मंगापति, श्री प्रेमानंदा मंगापति जिनकरा नंदा के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जाकर मृत्यु होगा बटे इनकर अर्थी काल फजीर के 9:00 इनका घर है माउंट पॉम्प्लीमुस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM कालीमाया पालमा कैट्रोबोन में, कालीमा रोड पालमा कैट्रोबोन में 65 बरिस के 3:05 के श्री जसोवत, श्री जसोनाथ बैरू, श्री जसोनाथ बैरू जिनकरा चिबाई के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ जहाँ अर्जुन आगे सियंते में ड्राइवर के काम कर रहा था, इनके मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी काल दिन के 1:00 इनका घर है पालमा काठोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थॉमा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमनी के दिली संवेदना बाटे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस के सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमन स्वीकार हो। सुबह के 8:30 बज रहे, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ सुबह का नजाना, योर मस्त मॉर्निंग शो। और अब प्रस्तुत है एक दो विज्ञप्तियाँ सीबी की ओर से। जी हाँ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से सुनिए कुछ विज्ञप्तियाँ। Beaubassin, prison Beaubassin, avenue Jasmin, avenue Cosmos, avenue Berkeley, asylum, résidence Berkeley, la rue Etienne Rodet, MOA Berkeley, piscine Serge Alfred, RYC, Verge, Bissambor, Montroche, Raspas, Medjugalien, hein, वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 11 जुलाई को सुबह के 8:30 से दिन के 9:30 के बीच और दोपहर बाद के 1:30 से 2:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Or, 4 bonnes Pierrefonds, Crescentville, Avipro Pierrefonds, Crescentville, Bassin State, or Mossemont Riverside, qui nous a dit que ce titre qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, qui a été सीबी इन सभी असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।

सुबके 8:00 जहाँ सुबके 8:35 हो रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो मॉरिशस की लहरों पे और

पर आपका हम स्वागत करते हैं और बेशक हम आपका साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा प्रसारण चल रहा है। साथ में आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज है शनिवार, जी हाँ शनिवार

Auntie Hey Madhav, Fi Nanad Rina, Sasu Mamala and all Bird of Family. रोशन बुधना का जन्मदिन है. हेलो रोशन भाई, ढेर सारा प्यार आपकी पत्नी टीना और आपकी दो बेटियों की ओर से, साथ में आपके सब बुधना परिवार की ओर से. संजय की ओर से गीत जाएगा सुरेखा के नाम, उनकी पत्नी है. फिर निश्चल शिवरतन, विजय राघु, विजय सोमरा, संदेश, रंजीत सिंह, मौसी संगीता, गोकुल, नवीन भैरव, नवीन अजोदा और सब उनके दोस्तों के नाम. और अगला गाना जो है हम चलाएँगे डॉक्टर राकेश रामचरण की ओर से. आप रहते हैं प्लेन मायो, उनकी पत्नी आशा और उनके दो बेटों के नाम और सब रामचरण परिवार के नाम जाएगा गीत. एंड द गाना विल बी पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी. यही गाना हम चलाएंगे और जे फैमिली के सभी दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत प्यार से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत प्यार. एंड बेशक ये गाना और जी फैमिली के जो सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनमें हैं अजीज़ा, यह गाना आपके नाम, साथ में रितेश हमन, आदित्य, अनीता पांचू, अंजू किशुन, आशील चितंकी, बाल गोबिन. फिर ये गाना जाएगा भाई गुरु, भामा, भारती, भारती नंद, बुलाकी, बृंदा पांचू, शाकिर, प्रयाग सिंह, कोथन, देवी, दागा, टीना दीना, गिरीश लक्ष्मण, यह गीत आपके नाम भी, गनु भाई है, हंस, हिरीश नारायण, विशाल हीरू, जाबीर, कलाईवानी, केशव रिसोल, किश्ती, महादू, मालिनी दौलत, माया, मिस बेनी, गंगा जी, फिर नवीन, नवीन जानकी, उदित, प्रवीण बुधन, प्रीति बाबुआ, प्रीतम, प्रीतम राधा, गनु, रिहाना, रीता, रोशन, हरनाम, रोशनी, रोसाय, शैलेश महावीर, संजय हरिचंद, सत्यम सुबोल, शैलन बंसी, शालिनी हिरू, शामिनी, सूरज परमानन, तयाबाऊ जागीर, टीना बुधना, उमा जगनायक, लूरूसा, वीरापेन, विकास, विनीत सुभान, विश्वानी बाबूलाल, वियासीव और नटराज रामकोरन के नाम. सो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी. याद रहे टिकटॉक पेज पर फ़ोन मत कीजिए. TikTok पेज पर केवल मैसेजेस भी ना, ओनली सेंड SMS ऑन द TikTok पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस, ठीक है? और आप फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर.

सुबह की 8:50 हो रहे हैं और बेशक आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मोशस की लहरों पे और आप हमें देख रहे हैं रेडियो मोशस के टिकटॉक पेज पर भी। और अगला गाना है जीना भी क्या है जीना तेरी आँखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी सांसों के बिना, आ ए, ए, ए,

0: हाँ, फिल्म का नाम है कसम पैदा करने वाली की, पिक्चराइजिंग मिथुन चक्रवर्ती एंड द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस नीली आंखों वाली सलमा आगा। नेक्स्ट गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आप हैं रेमन, जॉन पैट्रिक, सुनीता माथुर, प्रीति, आयुष थापा, आनंद त्रिभु, मिस मीना, फिर मुस्तफा केबल और धनी। धनी जी एंजॉय करे इस प्रोग्राम को। प्रतिमा दुखित राम, यह गीत आपके पति कृष्ण, मामा बसंती, सब दुखित राम और राम रसन, राम सरन परिवार के नाम। एंड जया भी हमारा साथ दे रहे, माला मोहन, करुणा दुर्गा और आदर्श, समीहा, स्टेफानी भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। आदर्श शाइन जी हाँ, और साइप्रस भी, और इस समय हम हमारा साथ दे रहे बबीता नेमन। हाय बबीता, दिस गाना फॉर यू। कोलंबो भाई, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। और कुछ एसएमएस भी आ रहा है यहाँ पर, सो लेट मी चेक। ऑलराइट, यह गाना चलेगा फरहीन और शेरोज की शादी की सालगिरह के मौके पर। आप रहते हैं न्यू ग्रोव। बेस्ट विशेज फ्रॉम अमी, शहनाज, शर्मीन, जहीर, दिलशाद जो न्यू ग्रोव रहते हैं, बहुत बहुत प्यार के साथ। और यही गाना जो है चलेगा आसमा की ओर से, माला जो बबासे रहती है। ये गाना हम चलाएंगे शिव। ओके, एसएमएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम रेडी सॉरी। जब एसएमएस भेजते हैं तो प्लीज़ कृपया अच्छी तरह से लिखें कि किसके नाम करेंगे गाना। एंड यह गाना जो है हम चलाएंगे ओके यह गाना चलेगा अनीता जी के नाम। अनीता लाल जी है मॉडल बेस से, अनीता फिकॉन फ्लैग से है, हमारा साथ दे रहे ये लोग। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आशी हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ दोस्त है लाइन पे, उनसे मिलेंगे। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते भाई।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: प्रमिला बैजू कुटेज से।
0: आपका स्वागत है प्रमिला जी, कैसी हैं?
1: मेरा भाई का बर्थडे है।
0: ओहो, क्या बात है, भैया का नाम क्या है?
1: राजन गुरु बादू।
0: हाँ राजन को हैप्पी बर्थडे।
1: और मामा है आत्माराम, पापा है आत्माराम, मामा है रत्नावती, और उसका बहन प्रमिला, जया, बेबी, अनुराधा, सारा, उमा, उसका बहन के तरफ से, और उसका भाई है देविन, और उसकी मेरा भाभी है सुजाता, और सभी गुरु बादू परिवार में सभी बच्चे की तरफ से।
0: थैंक यू जी, हम सभी के नाम करेंगे। बी ट्राई टू बी शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत से लोग इंतजार कर रहे। हेलो,
2: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम?
2: हम तारा बोल रहे हैं रोजिन से।
0: ओके तारा जी, आपका स्वागत है।
2: हम एक गीत मांग रहे हैं।
0: गीत अभी है पेरिस में।
2: केविन,
0: हाँ?
2: केविन वो प्रदेश जा रहे हैं, उसके लिए एक गीत, उसके माताजी, उसके पिताजी को एक सुंदर सा गीत।
0: कौन से देश जा रहे हैं आपका बेटा?
2: परदेशी जाना
0: नहीं, नहीं। कौन सा देश वो जा रहे है?
2: वो जा रही है इंग्लैंड।
0: ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू हिम, ढेर सारा प्यार हमारे ओर से भी। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोस्त लाइन पे। हेलो,
3: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते,
0: कौन है आप?
3: हम गुडलैंड से केशवंती बोला था।
0: कैसे
3: दो दिन से लाइन खोजे थे भाई जी, नहीं मिला।
0: दो दिन हम नहीं रह रहे यहाँ पर, हम चार शाम जी के काम करी रहा।
3: हाँ, नहीं तो हम दो दिन वहाँ खोजा रहे।
0: हाँ जी, तो चलिए आपको लाइन मिल
3: गई। 9 तारीख को हमारे शादी के साल गिरा था।
0: ओके, हाँ,
3: हम तो बहुत थे कि तीमन आशीर्वाद अपन सब टीम के बोलिए।
0: बहुत बहुत बधाई हो, शादी की सालगिरह मुबारक।
3: हाँ,
0: क्या बात है।
3: हमने के दो बेटे, दो बहु है, बेटी, सब बधाई देव थोजा, सब नाती पोती उनके शादी के साल पर। मेरे पति का नाम है ज्ञान, हमारे केशवंती।
0: ओके,
3: और एगो नीमन गीत डाल,
0: एक प्यार सा गीत आप सभी के नाम। ओके, तो चलिए एक साथ सुनिए प्यार सा गाना। जीना भी क्या है जीना तेरे आँखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना। रेडियो मॉरिशस के सभी जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, और टिकटॉक पेज पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, यह प्यारा सा गीत खास हम खास स्पेशली आप सभी के नाम। इसी गीत के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इट्स टाइम टू से गुड बाय। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फोन कॉल्स, SMS के लिए और TikTok पेज पर हमें देखने के, रेडियो पर हमें सुनने के लिए शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात होगी आज रात के 9 से 11 बजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा भोजपुरी तड़का और 9 बजे होगा समाचार, उसके बाद पीक टाइम मैगजीन आप सुनेंगे 9 से 10 के बीच। इट वॉज ग्रेट टू बी विद यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला हमें। रात को फिर से मिल रहे हैं 9 बजे से 11 बजे तक रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। देंस गुड बाय फ्रॉम मी और जी प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।

0: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं आशिता रघु। नमस्कार आशिता।
2: नमस्कार किरण। श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को आकार साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों से उनके रिश्तों, परिवार, नियोजन, संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों, पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसक विधेयक यानी कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना बोमागी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी मिलने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का भी विस्तार किया गया है। मंत्रिपरिषद ने शागोस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है। 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गैविन ग्लोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागोस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। और मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है। इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा जाएगा। कृषि एवं उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने बताया कि मवेशियों को सबसे पहले लाशोमिया स्थित एक क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे। साथ ही जहाज की चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुमति आयातक कंपनी यूबोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है। बात करें अब फीफा के बारे में। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 के स्कोर से हराया। पूरे मैच में स्पेन का दबदबा देखने को मिला। एक बार फिर पोर्चुगल के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की तरह मिकेल मेरिनो टीम के हीरो बने। मैच के दौरान बतौर सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरे आर्सेनल के मिडफील्डर मेरिनो ने अंतिम क्षणों में बेल्जियम के गोलकीपर लेमेंस की गलती का फायदा उठाते हुए विजयी गोल दागकर स्पेन को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। इससे पहले मैच के 30वें मिनट पर फाबियन रुइज ने स्पेन को बढ़त दिलाई थी, जबकि बेल्जियम के लिए देकेतेलेरे ने बराबरी का गोल किया। अब मंगलवार रात सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस से होगा। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण एमबीसी पर किया जाएगा। फीफा विश्व कप के 2 शेष क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल सुबह खेले जाएंगे। कल रविवार सुबह 1 बजे इंग्लैंड अपने दूसरे विश्व कप खिताब की उम्मीद के साथ नॉर्वे का सामना करेगा। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 11 पर किया जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच कल सुबह

0: 5 बजे खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 23 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं की टीमें शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि आज समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में विश्व विरासत सूची में आप्रवासी घाट के शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। मुख्य मेहमान होंगे विष्णु बंदन जी और साथ में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी किरण जानकी जी। तो इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज की चर्चा में, जैसा कि अभी आपने इस गाने में सुना दादा दादी की कहानी, हमारे देश में हमारे जो परदादा हमारी परदादियाँ थी, वे जब मॉरिशस आए तो किस जगह पर वे उतरे, कहाँ पर वे ठहरे, किस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और किस संदर्भ में हम ये बातचीत आज रख रहे हैं। ऐसा है कि इस वर्ष 16 जुलाई को 2026 को हम आप्रवासी घाट का विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। मतलब कि हमारे पूर्वज हमने के जो परदादा परदादी लोग रहल उन लोग के मॉरिशस आल ई बरिस जो साइट पर आड़ लंजा, उस साइट जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होल तो ओकर 20 बरिस मनावल जाता। 2006 में ई साइट के लिस्टिंग हो रहल और आज ई 20 बरिस के संदर्भ में कौन कौन गतिविधि चलता आप्रवासी घाट पर, ई 20 बरिस के सफर कैसन रहल, ई सब विषय पर बातचीत करे खातिर आज हमने संगे एगो विशेष मेहमान हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक ओकर डायरेक्टर श्री वेद प्रकाश बंधन, श्री विष्णु बंधन। विष्णु बंधन जी नमस्ते।
2: नमस्ते। नमस्ते किरण जी और सभी जो लोग हमको देख रहे हैं
1: और सुन रहे हैं
2: रेडियो और टीवी द्वारा, सभी को मेरा सजो नमस्कार।
1: और आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है आप्रवासी घाट, जिसके नींव पर हमारे देश का निर्माण हुआ। हमने के देश, हमने के उन्नति, हमने के जो डेवलपमेंट होलबा तो वो हमने के पूर्वज लोग के ही बदौलत होलबा और उन लोग के जो पहला कदम पड़ रहा, जो पहला चरण उनका पड़ा था मॉरिशस में, वो आप्रवासी घाट ही था। और आज आप इस संस्था, इस इंस्टीट्यूशन के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, इस संदर्भ में कई गतिविधियां चलाई जा रही होंगी, लेकिन सबसे पहले हमने के ये बतावा कि ये जो संस्था बा, ये आप्रवासी घाट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बा, एकर कौन लैपोताओं सा कौन अहमियत है?
2: देखा, आप्रवासी घाट ये ऐसा कुछ संस्था है कि जैसे बोली जा सके रिकॉग्नाइज्ड आ ट्रैवल मून
1: जी।
2: कैसे रिकॉग्नाइज्ड आ ट्रैवल मून, मतलब कि ये यूनेस्को द्वारा पूरा संसार में ऐसे ऐसे जो जगह है, जो जगह की महत्व जगह बा, यूनेस्को उन लोगों के लिस्ट करेगा ताकि दुनिया भर के लोगों को बताए के चाहे कि ये जगह का इम्पोर्टेंस का है। तो ऐसे जैसे कि आप देखेंगे अन्य देश में, भारत में भी ताजमहल है, फ्रांस में वो लाटू एफेल वगैरह है, ये सब लिस्टे है यूनेस्को द्वारा। तो हमारा देश मॉरिशस जो छोटा सा टापू है हिंद महासागर में, कि लेमोन ऐसे लोग खब खोज मापे तो
1: बिंदु है,
2: बिंदु है, नहीं कोई देखेगा कहाँ खोजवा, मान माइक्रोस्कोप ले खोजवा तब जाकर मॉरिशस कहाँ है ढेर के मालूम नहीं है। तो ऐसा एगो जगह मॉरिशस आज हो गल बा कि लेमोन ऐसे पूरा विश्व के लोग जाने चाहलन से कि मॉरिशस देश जो है कैसे यहाँ पर पहले जो थवाइया गाजे जैसे बोलिया से वो लोग यहाँ मॉरिशस में आल बा, एक ये एक ऐसा नहीं वो जगह बा कि लेमोन में पूरा विश्व में एक ही ऐसा संस्थान है जो कि जो बोलते हैं ट्रवाइये आगाजे आधार मोरिस में उसका रिकॉग्निशंस है।
1: मतलब कि अभी विष्णु बंधन जी बहुत सुंदर रूप से बतावत हवन कैसे आप्रवासी घाट आज एगो विश्व विरासत स्थल बनल बा। विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मतलब है एगो ऐसा साइट जेकर महत्व खाली आपके देश खातिर जरूरी नहीं है, ओकर जो महत्व है वो सार्वभौम यूनिवर्सल है। मतलब कि दुनिया भर के लोग सके इस साइट से जुड़े, एकर जो लैपोताओं बा ओकर से हर एक के एगो संबंध रहेला। और अभी जब आप बोला था कि ये जो साइट बा मॉरिशस में, ऐसे तो इंडेंचर सिस्टम, शर्तबंद मजदूरी, थवाइयाँ गाजे, ये जो सिस्टम रहल ये बरतानी सरकार अपन समय में उपनिवेशवाद कॉलोनी के समय में वो मॉरिशस में ये एगो टेस्ट केस कर ले रहल, एगो महाप्रयोग कर ले रहल कि मॉरिशस जैसे बोल रहा हिंद महासागर के बीचों बीच बा, तो सकल जाए जितना देश बा हमने के इर्द गिर्द हुआ से थवाइयाँ गाजे आने, और सबसे जस्ती कहाँ से आ रहा।
2: अच्छा, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम करने आए थे, मतलब बोलते थे

0: चलो मॉरिशस, पत्थर उतारने से गोल्ड सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय वासी थे उस समय का जो थे उनको यहाँ लाया गया था इस तरह के। चलो किसी को भी बोलेंगे चलो पत्थर उड़ाते से सोना मिलेगा, कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा। तो इस तरह से जैसे चीटर कर उनको यहाँ पर लाया गया था। और उस समय मतलब 1834 से लेकर कम से कम 2 करोड़ लोग वहाँ से भारत छोड़े हुए थे। उन 2 करोड़ में से 500,000 मॉरिशस आए हुए थे,
1: क्योंकि उस समय भारत की भी दुर्दशा थी। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं थी,
0: बहुत ठीक नहीं था। और वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब कंट्रोल था
1: जी।
0: तो वो लोग जो कुछ चाहते थे वो करते थे भारत के वासी द्वारा। तो इसी कारण वहाँ से वो लोग भारत में वो गन्ने का खेती होता था, तो वो उन लोगों को लाए थे यहाँ पर। हमारे पूर्वज जो आए थे यहाँ लेबरर्स के नाते यहाँ उसको लाया गया था ताकि वो गन्ने का खेती का मतलब सिंचाई किए, राइट, जैसे बोलते हैं
1: रोपाई
0: करने के लिए उसको लाया गया था। तो उस समय मॉरिशस एक टापू ऐसा था कि वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, चारों तरफ जंगल भी था, मतलब फॉरेस्ट चारों तरफ था। लेकिन उस तरफ ये तो जैसे बोलते हैं अभी कितना कितना मशीन काम करते हैं, कैटरपिलर वगैरह काम करता है, तो उस समय ये सब नहीं था। वो मजदूर जो आए थे
1: उनको ही करना पड़ता
0: था, से अपना काम करना पड़ता था। और उन लोगों के पास बहुत माइनर ये जो टूल बोलते हैं, रुचि बोलते हैं था। तो इस अब जब आप सोचिएगा ऐसा देश में जब आए थे, कितना कठिनाई से वे लोग ये काम करने आए थे यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 500,000 लोग मॉरिशस में आए हुए थे, इसी कारण आज ये मतलब ये मॉरिशस ऐसा एक देश था कि इसमें सबसे ज्यादा लोग मॉरिशस में बसे हुए थे, लोगों को लाया गया था यहाँ।
1: और इनका जो लिखा जोखा रिकॉर्ड है वो सिर्फ मॉरिशस में है,
0: इस मॉरिशस में, मतलब कि वो जो बोलते हैं उसका आर्काइव जो है।
1: हाँ।
0: तो एक काम ब्रिटिश ने किया,
1: सही किया
0: कि जितने लोग आए हैं उन लोगों का नाम और उनका नंबर यहाँ रजिस्टर किया गया है। जैसे कि अभी देखो मेरा पूर्वज जो आए थे, मेरा परदादा जो आए थे उसका भी नंबर है, उसका भी फोटो है। उसके द्वारा अभी हम जैसे बोलते अभी OCI का देते हैं, हम तो चौथा जेनरेशन है। तो हमारे मैं था, मेरा पिताजी, मेरा दादाजी, फिर मेरे परदादा, वो आए थे भारत से। तो उसका एक नंबर, कैसे हम बोलते हैं ना, हमको जानना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पूर्वज कौन था, हम किस जगह से, देश में भारत से तो आई है हाँ, लेकिन किस जगह से, किस प्रांत से आए हुए थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मतलब कि जाए खोज करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि हर लोग जो है सबसे पहला, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे बोले नालिवीद, हमको बता दें हमारा
1: अतीत क्या है, हमारा
0: अतीत क्या है, हम कहाँ, हमारा जर कहाँ से। तो ये अभी से सुविधा है, मैं तो ये अभी आपका ये प्रोग्राम द्वारा बोलता हूँ कि जिन लोगों को अपना वो रूट्स ढूंढना है, पता करना है, ये बहुत आसान है। आप लोगों को अपना रूट्स जानना चाहिए कि आप कौन दिशा से भारत से या मॉरिशस में आए हुए थे।
1: और इसके लिए आपको सिविल स्टेटस ऑफिस जाना चाहिए। आप अपने पिताजी का, अगर दादाजी का नहीं है तो पिताजी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लेकर सिविल स्टेटस चाहिए, और वहाँ से वो पता लगाते चलेंगे कि उनके पिताजी कौन थे। फिर जो पहले व्यक्ति यहाँ आए थे उनके बर्थ सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा।
0: अच्छा, मैं आप बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ ताकि दर्शक लोगों को मालूम पड़े। हर एक व्यक्ति, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका परदादा कहाँ से आए थे, तो ये सब सुविधाएं हैं
1: है।
0: ऐसा है कि आपको लेटा सिविल जाना, सिविल स्टेटस ऑफिस जो बोलते हैं बीओ लेटा सिविल, वहाँ आप जाओगे। देखो मैं तो फोर्थ जेनरेशन का हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो मैं, अगर मैं अपना जन्म पर्ची निकालूंगा तो उसमें मेरा पिताजी का नाम होगा। तो मैं अपना पिताजी का जन्म पर्ची निकालूंगा, उसका मेरा दादा का नाम, उसका पिताजी का नाम होगा। जब मैं अपना दादा का जन्म पर्ची निकालूंगा तो उसमें उसका पिता का नाम होगा। तो वो व्यक्ति है कि जो भारत से आए थे, उसका होगा कि उसका नाम, जैसे मेरा नाम है बंधन, तो उसका नाम है बंधन और एक नंबर है
1: जी।
0: तो ये मिलेगा। अब वो जब आपका वो जन्म पर्ची मिल गया, 4 जन्म पर्ची मिल गया, तो ये आप जन्म पर्ची लेकर आप जाएंगे आकार जो के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का आकार जो है वहाँ आप उसको देंगे। तो वहाँ लोग कम से कम
1: आईडी कार्ड के साथ
0: नेचुरली अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे, तो वो वहाँ का जो कार्य

0: ऑफिसर
1: ऑफिसर हैं वो कम से कम एक हफ्ता लेंगे या 10 दिन तक लेंगे आपको पूरा से पूरा ढूंढ कर फोटो सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो वो आप लेकर एक सर्टिफिकेट मतलब दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि आपका पूर्वज का नाम क्या था, उसका नंबर क्या था, किस गांव से था, किस जिला से था और किस प्रांत से था
0: और किस उम्र में वो यहाँ आए,
1: किस उम्र में वो यहाँ थे, किस जहाज में वो बैठकर आए हुए थे या कौन तारीख को यहाँ मॉरिशस में आए हुए थे, जैसे आपने बताया उसका आयु कितना था, तो उसको यहाँ लाकर अप्रवासी घाट में उनको यहाँ उतारा गया था। इसी कारण हम बोलते हैं कि अप्रवासी घाट का वो जो महत्व मतलब कि उसका लैपोता जो है वो हमारे जड़ से जुड़ा हुआ है और हर एक मॉरिशन हर एक व्यक्ति जो भारतीय है जिसके पूर्वज भारत से आए हुए हैं ये आपका फर्ज बनता है कि आपको जानना चाहिए कि आपका पूर्वज कहाँ से आई है। ये सब सरकार द्वारा ये सब सुविधाएं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा
0: समय निकालना चाहिए।
1: ओके, अगर आपको वो मिल गया सब पूरा सा इन्फॉर्मेशन तो आप क्या करेंगे, देखो अभी भारत सरकार द्वारा हमको OCI कार्ड दिया जाता है, मतलब OCI मतलब वीजा फॉर लाइफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो वो वीजा भारत सरकार द्वारा खास करके वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि अभी 6 नहीं 7वां जेनरेशन जो है उनको भी अभी रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि उनको मालूम कि सिर्फ मॉरिशस में ऐसे लोग आए थे बड़े तालाब में यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो जो रिकॉर्ड रजिस्टर जो है उसके द्वारा ये एक काम मैं कहूँगा कभी कभी ब्रिटिश बोलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि हम भी हमको अपना रूट ऐसे भी है, अन्य जो आए थे फ्रांसीसी के समय में तो कुछ इन्फॉर्मेशन
0: नहीं है, कुछ खास नहीं है।
1: उसको मालूम नहीं कि कहाँ से आए थे, कब आए थे, उसका पूर्वज किन देश से आए थे, लेकिन हम को ये कैसे बोलते हैं
0: सुविधा है
1: और कि हम अपना रूट्स
0: सुविधा है और सौभाग्य है
1: कि हमको ये सब हम ढूंढ कर सकते हैं और ये हमको क्योंकि देखो हमको मानना चाहिए कि हम यहाँ देश में, तो बच्चे लोग पूछेंगे भी पिताजी पापा कि हम कहाँ से हैं, हमारे दादा कहाँ से, लोग कहाँ से, हमारा प्रांत कहाँ से है। तो मैंने भी जब ये किया तो वो जब पेपर दिया तो OCI कार्ड मेरा सरकार द्वारा, तो अब कहीं भी जाते हैं मतलब कि आप सिर्फ अपना टिकट लो हवाई जहाज में बैठ कर चले जाओ, नहीं तो वीजा वो जो पासपोर्ट दिया गया भारत सरकार द्वारा वो सब लेकर जाओ। अब अगर जाएंगे भारत में भी तो वहाँ भी आपका एक सेपरेट डेस्क होता है, इमिग्रेशन डेस्क होता है, और वो लिखते ऊपर OCI कार्ड होल्डर्स, मतलब आप जाओ तो सीधा
0: आसानी से
1: आप जाके निकल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपके पास वो वीजा पासपोर्ट फॉर लाइफ भारत वाला होता है। अच्छा,
0: लेकिन ये मतलब हम रुके थे कहाँ तक आपको वो पेपर मिलता है MGI से, इसके बाद किस तरह से अब अप्लाई करना चाहिए OCI।
1: अच्छा, तो अगर आपको वो जो सर्टिफिकेट है जो मिल जाता है वो MGI के आकाश द्वारा, तो आप उसको लेकर या तो भारतीय हाई कमीशन उसाइए जो है मॉरिशस में वो ऑनलाइन प्रोसेस चलता है OCI एप्लीकेशन चलता है, और नहीं अगर आपका वो सुविधा नहीं है तो आप भारतीय उच्चायुक्त एबेन में जो है हाई कमीशन ऑफिस वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से भी मतलब आपको पूरा से पूरा
0: सहयोग
1: मिलेगा, तो आप वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का थोड़ा सा एक
0: वक्त लगता है
1: और एक रजिस्ट्रेशन फी भी होता है।
0: तो लगभग 12,000 होता है।
1: हाँ, 12,000 होता है, तो आप बहुत बहुत आसानी से ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर ये अब जब आप सोचिए जब आपको मिल गया सब इन्फॉर्मेशन, आप एक OCI कार्ड होल्डर हो गया, तो जब आप जाएंगे उस जगह में, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा जो आए थे पूर्वज आए थे, मालूम है गांव कहाँ से आए, कौन सा ज़िला से आए, कौन सा प्रांत से आए, तो अगर वहाँ आप जाते हैं तो आपके हृदय में एक ऐसा कुछ होता है कि देखो मैंने मेरा पूर्वज उस समय में किस गांव से निकल कर कैसे कितना कठिनाई से होकर वहाँ गए थे। हाँ, तो अब देखते हैं वो सब, तो एक अलग से फीलिंग होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने लोग हैं अगर आपको कोई समस्या भी है तो आप अप्रवासी घाट द्वारा आप मदद मांग सकते हैं, आपको हम वो सब इन्फॉर्मेशन देंगे।

0: ताकि आपका जो जानने आपका परिवार आपका जो रूट्स का जानने का है मतलब वो आसानी होगा।
1: ज़रूर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं विश्व विरासत सूची में आप्रवासी घाट के शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह। इस वर्ष 16 जुलाई को हम 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आप्रवासी घाट के अंकन की, और इस विषय पर आप्रवासी घाट से जुड़े विषय पर हमसे बात कर रहे हैं आज आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर श्री विष्णु बंधन जी। थोड़ी ही देर में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा।
1: फजर के 9:30 होवा था और ई वक्त आप सुनत हवा आज की चर्चा कार्यक्रम। और आज हमने बात कर रहे थे जा आप्रवासी घाट पर, कहे कि ई बरिस हमने आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टिंग करला 20 बरिस मनावा थे जा। तो विष्णु बंधन जी, आज हमने क्या आप बतावा कि ई बरिस जब वैचम आनी वैसे 20वीं सालगिरह मनावल जाता आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करला, तो इस संदर्भ में ऐसा कौन गतिविधि चलावत है जा?
2: 20 साल से यूनेस्को द्वारा आप्रवासी घाट का रिकॉग्निशंस है, मतलब उसको लिस्टिंग इंस्क्रिप्शन किया गया था
1: जी।
2: कि जब उसको इंस्क्रिप्शन किया गया 20 साल पहले, उसका एक रीज़न होता है
1: ज़रूर
2: क्यों ये कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक आप्रवासी घाट एक ऐसा साइट है जो पूरा विश्व भर में वो एक यूनिक है
1: जी, सिर्फ एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक ही इंडेंचर साइट बाकी
2: एक ही है, एक ही है। तो इसको हमको यहाँ मॉरिशस में इसको मतलब हमको बताना चाहिए लोगों को इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने पहले भी बताया, तो इस हम मना रहे 20वीं, हमारे 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 20 ans inscription de Apravasigat auprès de UNESCO. Tout ici,

0: 20 साल जो है मना रहे हैं, इससे हमको वो मौका, कैसे बोलते हैं,
1: अवसर,
0: अवसर जो है प्ली इम्पोर्टेंट लोकेशन से बोलते हैं कि है कि हमने सोचा है कि मैं पहले हमारे मिनिस्टर श्रीमान
1: महेंद्र गुंजिया
0: को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब हमने बातचीत किया, उसको बताया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसने हाजिर से कहो चलो हम मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हमको श्रद्धांजलि पेश करना है। तो किस ढंग से पेश करेंगे, तो मैंने सोचा कि इस बार 20 जो है वह सेंटेनरी पू वह चैमानी वैसे है। अच्छा, ये तो जैसे जितना सेंटेनेरियन है हमारे पास, जिसका अभी 100 वर्ष हो गया है, उन लोगों तो काफ़ी नहीं ले जा सकते चारों तरफ, तो हमने कोलाबोरेशन लिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है उसका सीनियर सिटीजन काउंसिल द्वारा, फिर उसका मेडिकल यूनिट जो है, क्योंकि वो लोग जैसे बोलते हैं कि उसको डोमिसाइल विजिट करते हैं घर पर ना, तो डॉक्टर जो जाते हैं उसको मालूम है कौन कौन ऐसे लोग हैं सेंटेनेरियन जो है कि वो लोग बात कर सकते हैं, उसको हम बुला सकते हैं
1: जी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
0: तो ऐसे लोग हैं, और वो उसका वो अभी तक उसका मतलब कि जैसे बोलते फैकल्टी ऐसा है कि वो बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, जितना बोलते हैं राकोटे कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ। देखो अभी हम बोलते हैं कि हमारे 1925 से लेकर 1926 है
1: जी,
0: तो इसमें कितने से चीज़ हुआ है दुनिया भर में, लागे मोजल दूध लागे मोजल हो गया है, तो ये लोग जो है ये हमारा चलता पोता जो बोलते हैं आर्काइव्स है, ये जो लिविंग आर्काइव्स है। वैसे तो आर्काइव्स हम बोलते हैं तो वो कोना में कहीं भी दफ्तर में किताब द्वारा रखा गया था, तो ये चलता फूटा जो है लिविंग लेजेंड्स, तो हमको इसके पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह से हमके जितना लोग आए थे पूर्वज उसको श्रद्धांजलि हम पेश करना चाहते हैं। तो इस कारण हम इस साल वैचे मानी वैसे और वह सेंटेनेरी हम कोशिश कर रहे हैं 20 सेंटेनेरियन जो है पूर्वज लोग के जुटाने के लिए आप्रवासी घाट में। इसके लिए हमारा जो सीके है क्लिनिक जो है, उन लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि उन लोगों को अपने घर से लेकर सब सुविधाएं देंगे आप्रवासी घाट
1: लाने के
0: पहुंचाने के लिए, और वहां से उनको रवाना करने के अपना घर घर, और वहां पर भी सीके द्वारा हमारा एक एम्बुलेंस स्टैंड बाय होगा, डॉक्टर भी लोग स्टैंड बाय होंगे, ताकि सब सुविधाएं हम देंगे उन सेंटेनेरियंस को।
1: और ये कब चल रहा है?
0: ये चल रहा है 16 तारीख को 1 बजे अप्रवासी घाट में
1: जी।
0: एक फंक्शन हम कर रहे हैं जो कि मेन चीफ गेस्ट है हमारा मिनिस्टर श्रीमान महेंद्र गुंजिया जी। तो जानते हो अभी हम देखते हैं ये सेंटेनेरियन, कोई लोग ऐसे बात करते हैं, मेरे एक है सेंटेनेरियन जो लाल माटी में है, मैंने जब उनको देखा तो मैंने सोचा कि ये बहुत से चीज़ हम ला सकते पा सकते हैं,
1: डॉक्यूमेंट
0: कर सकते हैं। यूनेस्को ये बोलते हैं कि ओरल हिस्ट्री, देखो अभी ऐसी ऐसी जगह आपको मालूम होगा, दर्शकों लोगों को मालूम होगा, बहुत से ऐसे कौ सिक्रिय जो था अब नहीं है। तो उसके अभी हम जो जनरेशन अभी के भी लोग पीढ़ी जो है उसको कैसे मालूम हुआ कि क्या था यहाँ पे उस गांव में, तो ये लोग अभी तो जीवित है, तो वो लोग सुना सकते हैं हमको, बता सकते हैं हमको, बोल सकते हैं, हम उनको इंटरव्यू ले सकते हैं, ताकि उनको हम रखेंगे कैसे बोलते हैं एक आर्काइव्स, हिस्टोरिकल आर्काइव्स, मतलब ओरल हिस्ट्री द्वारा, ताकि वो लोग सुनाते हैं, वो लोग बोलेंगे, उसके हम सवाल पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे हमको किस तरह से उस समय मॉरिशस देश में क्या था, कैसे लोग जीते थे, और कितने सी इमारत किस ढंग से वो जीते थे। कभी जो बोलते हैं हम कौशिक्रिय में तो एक कमरा में पूरा एक परिवार रहता था, और आप जब अभी सोचिए आप एक परिवार एक कमरा में कैसे जी सकते थे उस समय, लेकिन वही सुविधा था उन लोगों ने किया। अभी हम ढूंढते हैं कि हमारा एक मकान हो, अपना परिवार हो, बच्चों को सब सुविधा दें, लेकिन उस समय ये नहीं था। तो इसी कारण हमने सोचा कि ये जो जो संस्थान ने बताया, जैसे सीनियर सिटीजन काउंसिल, ये मेडिकल यूनिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये सीकेयर वेलकिन जो सीकेयर क्लिनिक द्वारा हमसे सब प्रबंध करते हैं, ताकि वो जो सेंटेनेरियन है

0: मैं मांग करूंगा कि जो सेंटेनियन है उसका परिवारों से मैं मांग करूंगा कि आप लाइए, ताकि ये एक हिस्टोरिकल रह जाएगा पूरा आते आते जनरेशन का। हम जो रखेंगे वीडियो और जो उसका वो इंटरव्यू होगा, जितना कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा उनको द्वारा, हम उनको रखेंगे और आगे चलकर ये को हम रेफरेंस कर सकते हैं।
1: विष्णु बंधन जी, जब आप कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू हम लेंगे,

0: इसी के डायरेक्टर जनरल के साथ आपकी बातचीत हो रही है इस सिलसिले में।
1: जैसे बोलते हैं ना सियरी शेरे गाटू, तो ये समझ रखा कि एमबीसी संस्थान को मैं रखा कि बाद में अलग से उसे बात कर रखना। देखो हमारा किरण जी जो आपको मालूम है, ये भी हमारे साथ काम करते हैं, अपना पासीघाट के कर्मचारी है, इनको खुद मालूम है किस तरह के हम रिसर्च किस तरह के काम वहाँ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये अपना पासीघाट कैसे हम उसको प्रकट करेंगे, कैसे उनको लाएंगे हमारे सोसाइटी में। तो एमबीसी ऐसा एक संस्थान है कि उनके द्वारा हम ये पहुंचा सकते हैं। तो हमने मिला अपना ये डायरेक्टर जनरल जो है आपका से आर्यन गोदान सौची, उनसे मिले, उनको बताया इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने देखा कि हाँ वो ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और उसका लॉन्चिंग हुआ 16 तारीख को अपना वासीघाट में, कि हम हर एक सेंटेनेरियन जो होगा मतलब उसके घर जाएंगे, उसका मकान जाएंगे, उसके परिवार के साथ में उनका इंटरव्यू लेंगे एमबीसी द्वारा, और वो जो पिक्चर जो फिल्म होगा उसको हम रखेंगे आकाश में, ताकि आगे चलकर जो यंग जनरेशन होगा, आगे का पीढ़ी होगा, उन लोगों को वो लोग देखेंगे सुनेंगे, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस तरह का यहाँ मॉरिशस में लोग आए थे और काम किस कंडीशंस में वो काम कर रहे थे।
0: ज़रूर। तो अभी जिस तरह से विष्णु बंधन जी बता रहे हैं कि अगले 16 जुलाई को आपरा वासीघाट पर ठीक 1 बजे एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर ऐसे 100 साल जिन्होंने 100 साल तक जिनका जीवन जिया है सेंटेनेरियन, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि 20 वर्ष है तो 20 सेंटेनेरियंस को आमंत्रित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, उनको सम्मानित किया जा रहा है, और फिर सेंटेनेरियंस के साथ एक ऐसा परियोजना, एक ऐसी परियोजना चलेगी जहां पर उनका इंटरव्यू होगा, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो यादगार है, मेमोरीज जिसे कहते हैं, जो कि इतिहास और रिसर्च की दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मेमोरीज। और हमारे पूर्वज उनकी जब हम बात कर रहे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो एक लिविंग आर्काइव्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, पकवान कैसे बनाए जाते थे पहले, पहनावा कैसा था, उनकी जो भाषा है, जो भोजपुरी आज के हमारे दादा दादी बोलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं, हमको उनसे अभी तक सीखना है। तो इस दिशा में उनसे बातचीत करना, उनका जो ज्ञान है उसको रिकॉर्ड करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये आप्रवासीघाट के मैंडेट में शामिल है। इस तरह से आप्रवासीघाट कितने सारे डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहा है, जैसे कि अभी आपने ओरल हिस्ट्री की बात की, फिर आर्काइवल रिसर्च है, फिर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, आप्रवासीघाट का जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसका जो साइट है, उसका जब दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और आर्काइवल रिसर्च और ओरल हिस्ट्री, ये जो तीन डिसिप्लिन है ये साथ साथ चलता है, और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च भी आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम जिए हैं इस जीवन को, हम जिए हैं अपने पूर्वजों के साथ।
1: देखो जब आप बोलते हैं ये जो 100 साल के लोग हैं,
0: जी हाँ,
1: तो वो लोग ने ये जिया है, ये जीवन जी कर वो अभी तक यहाँ है। तो ये लोग क्या हमको उसका वो लेपोटांस उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए लोगों को जो है। मैं तो अभी खासकर उन परिवारों को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो लोग अभी तक अपने जो जो जो सेंटेनेरियन है उनको अपना सहयोग दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं ठीक से, उसका डेली का मतलब जो रोज़ का जो है उनको भी रखे ठीक से। मैं आप सभी को बधाई दूंगा, और इसी कारण हमने सोचा कि हमारे आप्रवासीघाट जो है, आप्रवासीघाट बोर्ड जो है, हमारे चेयरमैन जो है, उसका मेंबर जो है चेयरमैन श्री रामदास जी, और जितना बोर्ड मेम्बर है सब, जब उन लोगों को हमने ये बातचीत किया कि ये करेंगे, तो बोर्ड ने बहुत खुशी से कहा कि चलो हम ये काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अभी तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। और ये कार्यक्रम जैसे बोलते हैं वन एंड ओनली अखाद दुनिया में पूरा यूनेस्को द्वारा पहली बार ये कार्यक्रम होगा कि चलो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 20 सेंटेनेरियन को लाएंगे वहाँ पर, ये उसको उस दिन में इंटरव्यू नहीं होगा, उस दिन में हम लॉन्चिंग करेंगे, ताकि हर हफ्ता या हर 2 हफ्ता एक सेंटेनेरियन को इंटरव्यू लेंगे, या तो किसी आपने कहा पकवान पर, पहनाव पर, किस तरह से वो जीते थे, मतलब वो जो सामाजिक था, जब मिलते थे वहाँ तो आपका

0: समय में उन लोगों को वो कैसे बोले दुआ नहीं था कि संगठन करने के लिए मिलने के लिए, वो रात्रि में काम करने के बाद चुप चुप के वो अपना जो आज अपना संस्कृति रखे हुए हैं। तो इसी कारण हमारा ये फर्ज बनता है कि अपरावासी घाट द्वारा, कर्मचारी द्वारा, हमारे बोर्ड द्वारा, मिनिस्ट्री मंत्रालय द्वारा, कि हमको ये जब हम ये संस्थान चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो हमको चाहिए कि उन लोगों को ये रिस्पेक्ट दें, ये रिकॉग्निशंस दें, ताकि आप भी चलकर वो परिवार जो है उन लोगों को मालूम होगा कि चलो कम से कम जब मैं अभी अप्रवासी घाट बोल रहा हूँ तो ये तो सरकार द्वारा ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ताकि आगे चलकर ये रिकॉग्निशंस इसे बार रिकॉग्निशंस नहीं होगा।
1: ज़रूर। हाँ। और अप्रवासी घाट की जब बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग में किसी भी साइट को शामिल करने के लिए एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू उसको निर्धारित करते हैं, और आप्रवासी घाट का जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, उसकी जो विशेषता है वह ये कि मॉरिशस में एक टेस्ट केस किया गया, एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको द ग्रेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि यहाँ पर सबसे पहले एक बैच था शर्तबंद मजदूरों का, उनको यहाँ लाया गया और ये देखा गया, देखने की कोशिश की गई कि क्या ये इंडेंचर सिस्टम ये सफल होगा, ये चलेगा, इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि अब स्लेवरी मतलब दास प्रथा को अबोलिश किया जा रहा था, और जब दास प्रथा का उन्मूलन होता है तो फिर इनका जो काम था अब वो कौन करेगा। तो इंडेंचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए मॉरिशस में एक टेस्ट केस, एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया और यह बहुत ही सफल हुआ। इसके बाद सारे कॉलोनीज़ में, ब्रिटिश कॉलोनीज़ में इसको स्थापित किया गया, और यही कारण है कि आज आप्रवासी घाट एक विश्व विरासत स्थल, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस विषय पर हम अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे। आप्रवासी घाट का एक बफर जोन होता है, और 16 जुलाई के संदर्भ में एक कंसल्टेटिव कमेटी भी की जाएगी बफर जोन के जो स्टेक होल्डर्स, जो साझेदार हैं, और फिर हमारे आप्रवासी घाट के साथ कौन और ऐसे साइट जुड़े हुए हैं, इन सभी पर अभी हम थोड़े ही देर में बात करेंगे, और हमारे सवालों का जवाब देंगे श्री विष्णु बंधन जी, जो कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर हैं।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। आज की चर्चा कार्यक्रम में हमने बात करते जा आप प्रवासी घाट के अंकन के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में और 20वीं वर्षगांठ के और इस संदर्भ में कितने गतिविधि चलता, कितने परियोजना चल रहे आवता और अंजाम देवल जाता। और हमने संगे हवन श्री विष्णु बंधन जी, आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक डायरेक्टर। तो विष्णु बंधन जी, अभी बोलत रही जा कि आप प्रवासी घाट जब एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गए तो एगो बफर जोन है। बफर जोन मतलब कि ओकर भीरी जितना भी इमारत बा, एक बार थोड़ा हमने के बोला कि कैसे बफर जोन के ओकर संचालन आप प्रवासी घाट करेला।
2: देखा, जब यूनेस्को हमने के आप प्रवासी घाट का लिस्टिंग कर लग 20 साल पहले, तो उसका भी कौन रेगुलेशंस है
1: जी
2: कि हमको हमने के चाहिए बहुत स्वीव बहुत स्ट्रिक्ट स्वीव करे के।
1: हाँ।
2: अभी देखा शहर के बाजार कैसे बा, आगे कैसे रहल, तो अभी के जनता नया पीढ़ी के जो लोग हमसे नहीं जन जन सा, तो अब मान लो ओकरा खासे करके एगो बड़ा इमारत बना दो सा, तो फिर आगे के पीढ़ी जो आएगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, तो शायद एगो फोटो देखेंगे तो उसको मालूम है कि पोर्टिस का बाजार ऐसा था। इसी कारण वो जो बफर जोन है जितना उसमें इमारत है कि उसका गाइडलाइंस है, वैसे बोलते हैं पॉलिसी प्लानिंग पॉलिसी गाइडलाइंस कि उसके अलग से नहीं जा सकते हैं, हम फॉलो करते हैं। लोग बोलते हैं कि ऑफिसों फिर डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन उसका जो इमारत है जैसे कि
1: नियम
2: के द्वारा उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका वो बाचिमा का जो बिल्डिंग का जो इमारत का वो फासाद जो है उसको रखना चाहिए। आप किसी तरह की अपना डेवलपमेंट करो लेकिन उसको ध्यान से, ताकि जो यूनेस्को बोलता है करने का कि उसका उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। तो अभी जैसे शहर का बाजार है, अन्य वो बफर जोन में बहुत से ऐसी जो बिल्डिंग्स है वो देखेंगे आप
1: पत्थर,
2: तो वो
1: का, बना
2: पत्थर का बनाया हुआ है, उसमें ये कंक्रीट का नहीं है, पत्थर का है। तो उस पत्थर के जब रखे हुए हैं तब ब्लॉक, जैसे अभी हम ब्लॉक चढ़ाते तो वह ब्लॉक नहीं है, उसमें लाशो इस्तेमाल किया गया था, चूना इस्तेमाल किया गया था उस समय। तो वो बोलते हैं कि इसको रखना चाहिए, वो जो जो उसका पत्थर का वो जो दीवार है उसको इसी तरह रखना चाहिए, आप चाहे तो कितनी मंजिल डाल सकते हो ताकि कोई भी जनता कोई भी नए पीढ़ी के लोग वहाँ आएंगे तो वो जब देखेंगे तो वो इमारत का वो जो फासाद बोल के उसका दिवाचे जो है तो उसको मालूम पड़ेगा, हाँ मॉरिशस ऐसा था पहले, उसका जो बिल्डिंग था ऐसे थे। अच्छा, आप्रवासी घाट अकेले वो नहीं काम करता है, आप्रवासी घाट अन्य संस्थान से मिलकर साथ में काम करता है, जैसे कि मिश्वाची तो पोर्ट्रीस है, वो बफर जोन जो है उसका को जोन जो है,
1: नेशनल हेरिटेज
2: फंड जो है और अन्य ऐसे जो संस्थान है उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं ताकि जो कुछ डेवलपमेंट आएंगे वो मतलब
1: एक नियम से
2: नियम द्वारा हो सकता है। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि हमको वो पोर्ट्री जो है उसको रखना चाहिए जिस तरह का है,
1: जो ऐतिहासिक

0: हिस्टोरिक,
1: हाँ काफी हिस्टोरिक रखना चाहिए। तो आप किसी व्यक्ति को माना नहीं है कि आप वहाँ डेवलपमेंट मत करो, लेकिन डेवलपमेंट करने से मतलब होता है कि आप जो पहले का वो काशी या जो पोर्टिस का था, वो पहले का इमारत जो था
0: उसका रूप वैसे ही रूप
1: और सही रखना चाहिए।
0: सिर्फ यही है। और फिर ये भी है कि आप्रवासी घाट जब एक विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जब वो टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो शहर है वो कैसा है, और उनको लगना चाहिए कि एक ये एक ऐतिहासिक शहर है, एक हिस्टोरिकल शहर है जहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक तालमेल होना चाहिए वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ की जो जगहें हैं और आप्रवासी घाट, इनको जब आप देखेंगे तो इनको अलग नज़र आना चाहिए। और इसी दिशा में आप्रवासी घाट सभी स्टेक होल्डरों, सभी साझेदारों के साथ काम करता है, और हर वर्ष एक कंसल्टेटिव कमिटी भी चलती है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक लगाई जाती है, उनके जो प्रस्ताव हैं उनको सुना जाता है, और फिर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं एक साथ मिलकर, इस पर बातचीत होती है। और एक विश्व विरासत स्थल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह जनता को और सभी जो राष्ट्र हैं उनको जोड़ता है, और आप्रवासी घाट भी इसी दिशा में काम करता है। अभी श्री विष्णुबंधन जी ने बताया कि किस तरह से हम अपने बुज़ुर्गों को अपना सबसे प्रथम साझेदार मानते हैं, क्योंकि ये जो विश्व विरासत स्थल, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये उन्हीं का हैं, ये आप ही का हैं। इनका संचालन करने की जिम्मेदारी आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड को है, सरकार को है, लेकिन ये विरासत, ये धरोहर, ये आप लोगों का है, ये हमारे बुज़ुर्गों का है, और फिर हमारे स्टेक होल्डर्स, उनके साथ हम काम करते हैं। और इस तरह से कई अन्य साइट हैं बिन बंधन जी, हाँ, जो आप्रवासी घाट से जुड़ा हुआ है।
1: अच्छा, मैं उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1901 में जब महात्मा गांधी मॉरिशस से होकर आए थे,
0: जी,
1: से मगरनाथ डॉक्टर को भेजे थे,
0: जी,
1: क्यों भेजे थे ये हमारे साथ, उस हमारे पूर्वज जब आए गए थे उसका कंडीशंस ऑफ लाइफ जो था उसको बनाने के, उसको बनाने के, ताकि हर एक व्यक्ति को अपना वो जो उसका राइट्स होता है उसको मालूम हो। तो जब वो आए थे तो बोलते हैं, जैसे कि हम इतिहास द्वारा, कि वो जो गुजराती कुमेसों लोग था,
0: ट्रेडर्स
1: था,
0: व्यापारी
1: था उस समय का, उन लोगों ने श्री गांधी को सपोर्ट किया, तो उन लोगों ने मिलकर
0: तहर बाग
1: में उनको बुलाकर उनका उसका सम्मानित किया,
0: हाँ,
1: कि देखो आप ऐसा एक बड़ा वकील है, भारत से आ रही है, भारत सरकार द्वारा आ रहे मॉरिशस में, तो उसको सम्मानित किया गया। तो उस समय गांधी जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप
0: उनको शिक्षित करो, उनको पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाओ,
1: पॉलिटिक्स में मिलाओ। तो मैं सोचा कि देखो ये संबंध जो है, देखा मैं आपको 1901 का संबंध बता रहा हूँ, इस पर भी हमको रिसर्च करना चाहिए कि उस समय क्यों उसको भेजा गया था, क्या हुआ था मॉरिशस में, और वो जो गुजराती ट्रेडर्स अभी तक है, आप देखेंगे शहर में कितना ट्रेडर, बड़े ट्रेडर लोग हैं, बहुत लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों से मिल कर भी हमको काम करना चाहिए। और जब बोलते थे बफर जोन, जैसे आपने बताया बफर जोन में है जो इमारत हम रख रहे थे, ऐसा हमारा और इसी साइट जो है,
0: साइट है,
1: जैसे कि है फुलियार में है,
0: जी,
1: यह फुलियार क्यों वो साइट रखा गया है, क्योंकि वहाँ पहले जो ग्रुप आए थे, लोग आए थे,
0: 36 पहले मजदूर आए,
1: जब आए थे 36 आए थे 1834 में आए थे, तो वहाँ से जब उन लोगों आप्रवासी घाट में उतरे थे तो सीधा उन लोगों को वहाँ से फुलियार बालो ले जाया गया था। तो इसी कारण वो एक साइट है। फिर अभी देखेंगे त्रियानों में जो ओल्ड त्रियानो लिबरल्स क्वार्टर्स जो है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मॉरिशन वालों को मालूम नहीं है। तो हम सोच अभी जो 18 और 19 अप्रैल का था
0: इंटरनेशनल
1: डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, तो हमने खुला था उस दिन, तो अब धीरे धीरे वहाँ भी कोई एक्टिविटीज रखेंगे ताकि मॉरिशन वालों को मालूम कि वो किया था। आप देखेंगे वहाँ भी जाकर तो ऐसा एक चीज़ है कि बहुत लोगों को मालूम है, अब वहाँ जाएंगे तो आपका दिल गदगद हो जाता है कि किस तरह से वो उसको बताया वो इमारत अभी तक है, हम उसको
0: वो एक एक गांव था ढाका शुगर,
1: एक गांव था, एक गांव से ओल्ड लेबर्स क्वार्टर्स को बोलते हैं, तो उसमें रहते थे, तो उसका भी हम साथ में काम करते हैं। ये वेगरेंट डिपो है, जब मतलब कि पहले तो अगर आपको उस समय का जब ब्रिटिशर पुलिस वाले आपको पकड़ लेता, आपके पास आपका आईडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं होता तो आपको पकड़ कर

0: वहाँ विक्रांति पोत में बंद किया जाता था, वो एक प्रिजन था वहाँ पर। तो ये साइट ही सब हम,
1: और फिर फ्लैट आइलैंड भी है।
0: फ्लैट आइलैंड भी है, फ्लैट आइलैंड में, फ्लैट आइलैंड को भी हम क्यों ये इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हमारे पूर्वज आते थे शिप द्वारा, जहाज द्वारा, तो कहीं उस समय में स्मॉल पॉक्स या कोलेरा
1: महामारी
0: बीमारी होता था, तो ब्रिटिश लोग चाहते थे कि जो आयु है उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रखना चाहिए, और जिसको जो बीमार था उसको नहीं उतारा जाता था, सीधा उनको फ्लैट आइलैंड में भेजा जाता
1: क्वारंटीन पर।
0: क्वारंटाइन मतलब वो क्वारंटाइन था, लेकिन वो क्वारंटाइन नहीं था, वहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं था। तो बाद में जाकर उन लोगों ने वो हॉस्पिटल ब्लॉक किया और अन्य चीज़ वहाँ लागू किया।
1: बस एक एक छोटी सी इमारत थी,
0: कोई
1: खास सुविधा पानी वगैरह की तो बहुत कमी थी वहाँ।
0: और ये शायद जितना दर्शक को देख रहे हैं आपको मैं ये बता देता हूँ कि उस समय भी फ्लैट आइलैंड में एक डिसैलिनेशन प्लांट रखा गया था उस समय का,
1: मतलब कि खारा पानी जो है सॉल्टी वाटर,
0: सॉल्टी वाटर उसको, क्योंकि वाटर रिजर्वोयर कुछ नहीं था, तो वो सॉल्टी पानी
1: के अंदर समुद्र
0: का पानी के फिल्टर करकर लोगों को वहाँ दिया जाता था
1: पीने के।
0: और जैसे मैंने बताया हमारा वो भादो में भी है साइट जो है, इस सब साइट को हमको रखना चाहिए ताकि अभी देखो भादो जाते हैं वहाँ पैदल जॉगिंग वगैरह करने, तो वो जो वातावरण है वहाँ पर जो जिस तरह का
1: एनवायरनमेंट
0: जो है, तो वहाँ पर लोग देखते हैं जलते हैं कि ये देखो ये जो है अभी उस समय का है, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को मालूम होता है कि हमारा ये हिस्ट्री
1: वहाँ पर चीनी मिल जो थी उसके रुइंस अभी तक है,
0: अभी तक है।
1: तो इसी पर भी है,
0: इसी पर हम रिसर्च करते हैं अप्रवासी घाट द्वार, हमारा जो रिसर्चर्स है जो कर्मचारी है काम करते हैं अप्रवासी घाट में, इनका ये मतलब रिसर्च करने का, और वो रिपोर्ट अपना देते हैं ताकि वो रिपोर्ट रखते हैं आर्काइव में हम रखते हैं ताकि आगे चलकर लोगों को
1: पता चले जरूर।
0: और मैं अभी खासकर मेरे ख्याल से
1: समय हो रहा है
0: कि मैं फिर से ये जितना सेंटेनेरियन है मैं उनका परिवार को मैं ये
1: आमंत्रित
0: करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि ये एक दो दिन में हमारे दफ्तर के कर्मचारियों के पास आएंगे, आपको कंसेंट फॉर्म देंगे, आप कंसेंट फॉर्म द्वारा आप अपने सेंटेनेरियन को लेकर आओ आना अप्रवासी घाट में 16 तारीख को। ये एक पहली चीज़ ऐसा है कि पूरा दुनिया में यूनेस्को में पहली बार ये होगा, ये आपका परिवार का बदौलत होगा कि आप आए अपना सेंटेनेरियन को लेकर, और इस कार्यक्रम को चलो हम आगे कर उसको रखेंगे, हम आकाश में रखेंगे ताकि आपका वो जो नाम है आपका सेंटेनेरियन का नाम है
1: चलता रहे हमेशा
0: रहे हमेशा के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु बंधन जी।
0: आपको भी किरण जी बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमने बोला आज कल चलो देखते हैं कि वो मदद करेंगे लोगों को,
1: सबको पसंद आया और लाभ
0: उठाएंगे।
1: आप सभी सुनने और देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक अगली आज की चर्चा के अंतर्गत एक अगली विषय पर बातचीत की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने कल दोपहर पोर्टरिस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे, उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी। प्लेटफॉर्म को मैं सेंजिकाल के बैनर तले आज 11 जुलाई को पोर्टरिस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मारीगन दे ला पी सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रही है। हालांकि इस आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या मौजूदा पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बिना बनाए रखना संभव है कि नहीं। अन्य खबरों में समाजशास्त्री राजेंद्र संतु का कहना है कि मॉरिशस के समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। वही युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण सहायता करती हैं। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है। 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी फिलीपींस में दशकों के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पूर्वी एशिया के कई देश एक बड़े तूफान के आने की तैयारी कर रहे हैं। टाइफून बावी अपने सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो करीब करीब फ्रांस की चौड़ाई के बराबर है। ये तूफान प्रशांत महासागर के ऊपर से बढ़ते हुए ताइवान की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये ताइवान के और पूर्वी हिस्सों तथा जापान के दूरदराज द्वीपों की श्रृंखला में भारी बारिश लाएगा। इसके बाद शनिवार को इसके दक्षिण पूर्वी चीन यानी कि आज दक्षिण पूर्वी चीन में पहुंचने की संभावना है। तूफान को देखते हुए पूरे क्षेत्र में दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई स्कूलों ने कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तूफान से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने आवश्यक सामान जमा करना शुरू कर दिया है जिसके चलते कई सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हो गई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। 61 साल के श्री हरिहरन मुचिया, जिन राजेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे ला शपेल ओदों तेलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 12 बजे कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। इकसठ साल के श्री हरिहरन मुचिया जिन्हें राजेन के नाम से ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज लाशा पेलोदों तेलियनसन

0: वो बस इसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। जगुलेन मोताबा में, जगुलेन मोताबा में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भगवंती गुमानी, श्रीमती भगवंती गुमानी पैदाश्रम सुबान और जिन्हें भगवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके बेटे नीरज गुमानी के घर मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काना एवेन्यू कैट्रोकोको में, काना एवेन्यू कैट्रोकोको में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री आदेश कुंजल, श्री आदेश कुंजल जिन्हें विदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले लॉन्ग बीच होटल के टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कैट्रोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: नाबूद।
1: ऐ पैगंबर, उन मुनकिरान इस्लाम से कह दो कि ऐ काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते।
0: वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन।
1: और मैं फिर कहता हूँ कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूँ, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ।

इस तहरीक को रोक न सके तो काफिरों ने कहा कि चलो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मुसालहत कर लेते हैं, मुफाहमत कर लेते हैं। आके तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क्या चाहते हैं, तो कहने लगे कि आप एक साल हमारे बुतों की पूजा करें तो एक साल हम आपके रब की इबादत करेंगे। आपने फरमाया ये तो नहीं हो सकता। ये कहते रहे कहते रहे कहते रहे, यहां तक इन्होंने कहा कि चलें फितना खत्म करने के लिए एक दिन आप हमारे बुतों की पूजा कर लें, फिर हमेशा हम आपके रब की इबादत करेंगे। आपने फरमाया मैं एक दिन भी तुम्हारे बुतों की पूजा नहीं कर सकता। तो फिर इस पर आ गए कि एक दफा सज्दा कर लीजिए। आपने फरमाया मैं एक सज्दा भी तुम्हारे बुतों को नहीं कर सकता। तो कहने लगे अच्छा एक दफा अकीदत से हमारे बुतों को हाथ लगा लीजिए तो हम आपके खिलाफ साजिशें खत्म कर देंगे। तो इस पर आपने फरमाया ये भी नहीं हो सकता। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत करीमा नाजिल हुई और आप हरम शरीफ में गए और तमाम काफिरों के सामने ये सूरह मुबारक आपने तिलावत करके सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू कि बहुत ज्यादा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। कुल, ए महबूब आप कह दें, या अय्युहल काफिरूना, ए काफिरों। अब हम बताइए कोई बात भी अगर कुरान के खिलाफ कही जाए किस कदर गलत बात है। अगर कोई ये उसूल पेश करे कि काफिर को भी काफिर कहना गुनाह है, भाई काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते, तो हम सोचें कि अगर ऐसी बात होती तो क्या अल्लाह ताला अपने महबूब से ये फरमाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाकर ऐलान कर दें या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों। तो काफिर को काफिर कहना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मुसलमान को मुशरिक कहना या काफिर कहना यह गलत है, लेकिन जो काफिर है तो उसको काफिर ही कहना होगा। उसे मुसलमान कहेंगे तो हम खुद काफिर हो जाएंगे। ला अबुदु मा ताबुदूना, मैं पूजा नहीं करूंगा उन बुतों की जिनकी तुम पूजा करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, और तुम इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं पूजा हरगिज नहीं करूंगा कभी भी उन बुतों की जिनकी तुम पूजा करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और तुम इबादत नहीं करोगे उस रब की जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो जब ये सारी बात है और असल झगड़ा तो इसी पर है, तो अब कोई मुफाहमत की सूरत नहीं। लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तुम जहन्नम के रास्ते पर और मैं जन्नत के रास्ते पर, तुम गुमराही के रास्ते पर मैं हिदायत के रास्ते पर। तो ये आपने ऐलान फरमा दिया। इस सूरह मुबारका के बारे में उलमा ने लिखा कि जो शख्स ये चाहता हो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, उसे चाहिए कि जब वो सोए तो सोने से पहले अपने तमाम औराद वज़ाइफ पढ़ने के बाद आखिरी जो उसका कलाम हो वो कलमा तैयबा हो और सूरह काफिरून की वो तिलावत करे। फिर उसके बाद वो कोई बात ना कहे और आखिरी कलाम उसका सूरह काफिरून हो, तो फरमाया अल्लाह ताला उसे ईमान की सलामती अता फरमाएगा।

0: वास्ते
1: आमीन।
0: दूर कर दे मेरे मौला मुझसे हर कोई भला, सिवते असगर उस शहीद करबला के वास्ते
1: आमीन।
0: मेरे सजदों को भी यारब कर दे तू ज़ैनुल अबाद, हजरत सज्जाद रसूल औलिया के वास्ते
1: आमीन।
0: इल्म हो बारे अमल और हर अमल हो ज़ेर इल्म, हजरत बाकर इमामों पेशवा के वास्ते
1: आमीन।
0: सिद्क हो गुफ्तार में और सिद्क ही किरदार में, जाफर सादिक शाहे सिद्क व सफा के वास्ते
1: आमीन।
0: सर झुका दूं जब कहे सुन लो तेरा प्यारा कलाम, मूसा काज़िम शाहे सब्र व रज़ा के वास्ते
1: आमीन।
0: दे बुलंदी मुझको भी अपने रज़ाए खास की, शाह हम नाम अली मुर्तजा के वास्ते
1: आमीन।
0: कराता हुस्ने अमल के साथ हुस्ने खात्मा, शाह हसन बसरी अमीरुल औलिया के वास्ते
1: आमीन।
0: मेरा सीना हो इलाही और हो तेरा हबीब, शाह हबीब अजमी की शान दिल रुबा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही रंग दाऊदी में मुझको रंग दे, हजरत दाऊद ताही खुशनवा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही अम्र बिल मारूफ की तौफीक दे, हजरत मारूफ कर रहनुमा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही मुझ पे हर सिर खफी कर दे जली, शाह सिरिये सफी के कश पे हक नुमा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही हो जुनूदे हक में मेरा भी शुमार, हजरत शेख जुनायद पारसा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही दौलत सिद्क व सफा कर दे नसीब, हजरत अबू बकर शिबली बासफा के वास्ते
1: आमीन।
0: एक देखूं एक जानूं एक काहो कर रहूं, अब्द वाहिद शाह तमीमी की सखा के वास्ते
1: आमीन।
0: दीन दुनिया की अता कर दीजिए सब फरहतें, हजरत बुलफरह तरतूसी बा खुदा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही हुस्न नियत हुस्न ईमान कराता, बुल हसन हंकारी पीर हुदा के वास्ते
1: आमीन।
0: आकिबत मेरी मुबारक हो मेरी दुनिया सही, वो शहीद शाह वो शहीद शाह मुबारक बा खुदा के वास्ते
1: आमीन।
0: अल-गियासो या गियासल आलमी, गौसे आजम बंदाए कुदरत नुमा के वास्ते
1: आमीन।
0: जिक्र हद्दादी की जलवा रेजिया कर दे अता, शाली हद्दाद मेरे पेशवा के वास्ते
1: आमीन।
0: बख्श दे या रब मुझे दारैन की सारी फलाह, अली अफलाह के जोदो इत्तेका के वास्ते
1: आमीन।
0: मुझ पे या रब जुम कर बरसे तेरा अब्र करम, हजरत बुलकैस इस बहर आता के वास्ते
1: आमीन।
0: फजल फरमा और मुर्दा दिल को दे दे जिंदगी, इब्ने ईसा फाजले हक आशना के वास्ते
1: आमीन।
0: रात दिन बरसा करे जोके इबादत की घटा, शाह उबैद गैसी बेरिया के वास्ते
1: आमीन।
0: दीन कुर्ब दीन को मेरी जलालत कराता ऐ दुल जलाल, शाह जलालुद्दीन बुखारी रहनुमा के वास्ते
1: आमीन।
0: दोनों आलम की शराफत बख्श दे मौला हमें, अशरफ समना मेरे गौसुल वरा के वास्ते
1: आमीन।
0: आंखों में दे नूर नूर रिस्क में दे बरकतें, नूर आईने अब्दुल रज़्ज़ाक औलिया के वास्ते
1: आमीन।
0: मेरी दुनिया हो हसी और मेरा उब्बा हो हसी, शाह हसन सरदार बज़्मे अतकिया के वास्ते
1: आमीन।
0: दिल में हो इश्क मोहम्मद लब पे हो हमदे खुदा, शाह मोहम्मद अशरफ शाह हुदा के वास्ते
1: आमीन।
0: मेरा सर हो और सौदाए मोहम्मद मुस्तफा, हजरत सैयद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते
1: आमीन।
0: राह हक में मुझको जाबाजी का जज्बा कराता, शाह हुसैन सानी के सब्र और रज़ा के वास्ते
1: आमीन।
0: बरकतों से बर्द मेरा कासे दिल ऐ करीम,

0: हजरते अब्दुल रसूल पारसा के वास्ते इस तरफ देखो नजर आए मुझे नूर खुदा शाह नूरुल्लाह नूरुल असफिया के वास्ते मेरा सर हो और हो सर मस्तिये हुब्बे इला शाह हिदायतुल्ला मेरे ना खुदा के वास्ते बस अनायत ही अनायत हो मेरे अल्लाह की शाह इनायतुल्ला की मेहरो वफा के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही रात दिन मुझ पर रहे अशरफ का फजल नजर अशरफ सैयद आले सफा के वास्ते
1: आमीन।
0: ऐ खुदा तेरी नवाजिश पर हर घड़ी मुझ पर रहे शाह नवाजु साहिब जूद सका के वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही उम्र बरखा के दरे अशरफ रहो शाह सिफत अशरफ के जोहदे बेरिया के वास्ते मस्त कर दे मस्त रख और अपने मस्तों में उठा हजरत सैयद कलंदर के वला के वास्ते या इलाह आलमी मनसब मेरा कर दे बुलंद सैयद मनसब अली की इर्तका के वास्ते उसने पाकीज़ा अता कर अशरफी दरबार से हजरत अशरफ हुसैन मुक्तदा के वास्ते या इलाही हमद से तेरी कभी गाफिल न हो शाहबू अहमद हमारे पेशवा के वास्ते मुझ पे अहमद का हुसाया मुझ पे अशरफ का करम मुर्शदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते के नूरानी है क्या सब सुन्नियों को बख्श दे या इलाही शाफ़े रोज़े जज़ा के वास्ते
1: आमीन।
0: दिल को अरमा दे मेरे दिल को मुनव्वर जल्द कर शाह दौला और मुनव्वर की दिया के वास्ते
1: आमीन।
0: कराता मुझको भी अब अल अल फख्र फखरी का मकाम मुल्ला इख्वान फकीर बेनवा की वास्ते
1: आमीन।
0: या इलाही हमद से तेरी कभी गाफिल न रहो या इलाही हमद से तेरी कभी गाफिल न हो शाहबु अहमद हमारे पेशवा के वास्ते
1: आमीन।
0: अहमद मुख्तार का जिल्ले करम सर पर रहे सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते
1: आमीन।
0: है के नूरानी है क्या हर कादरी को बख्श दे कादरी दरबार के सब औलिया के वास्ते
1: आमीन।
0: ये वसाइल है मेरे मौला तेरी सरकार में मुझको भी मिल जाए थोड़ी सी।

0: मछुआ और उसकी बीवी एक पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े समुद्र के नजदीक। रोजाना मछुआ पहाड़ पर जाता और रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ता। वो इस हलीम जिंदगी से बहुत मुतमईन था, पर उसे गुमान था कि उसकी बीवी खुश नहीं है। वो हमेशा तैश में रहती।
1: इस मैली झोपड़ी की तरफ देखो, इसकी बू मुझे बीमार कर देती है। मैं इसे दिन रात साफ करती हूँ, ये साफ होती ही नहीं।
0: मछुआ अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत करता था, पर बीबी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। वो दिन मुबारक होते जब वो दो मछलियाँ पकड़ता तो बीबी तीन की गुजारिश करती। अगर वो उसके लिए आम लाता तो वो आड़ुओं की फरमाइश करती। वो नाकाम रहता उसे खुश करने में।
2: ओ मेरी जाने हयात, मैं क्या करूँ तुम्हें खुश रखने के लिए?
1: इस बदबूदार झोपड़ी से मुझे निजात दो, तब मुझे सुकून मिलेगा।
0: एक दिन वो मछुआ मछली पकड़ने गया पहाड़ी के करीब। पानी ठहरा हुआ और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समुद्र में अपने मछली के कांटे को डालकर बैठा था। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया।
2: मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है।
0: शौहर ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और

0: उसे खींचने लगा।
1: ओह, ये तो बहुत वजनी है, यकीनन एक बड़ी मछली होगी।
0: जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी।
1: ओ चमकीली मछली, ये इतनी वजनी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा।

0: वैसे भी मैं तुम्हें मजेदार नहीं लगूंगा, मेहरबानी करके मुझे जाने दो।
1: ओह, और कुछ मत कहो, यकीनन एक बोलने वाली मछली का कत्ल नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो।
0: शुक्रिया।
2: इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीबी को बताने के लिए मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर आया और ये भूल गया कि आज अपनी बीबी को देने के लिए उसके पास कोई मछली नहीं।
1: मेरी जाने हयात, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ।
3: क्या आज कोई मछली नहीं लाए?
1: ओ नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी पर वो बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक तलिस्मी शहजादा है।
3: क्या, फिर क्या हुआ?
1: फिर मैंने उसे छोड़ दिया, वो अब समुद्र में है।
3: तुमने एक तलस्मी मछली पकड़ी और उसे यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं, हम इस बदबूदार झोपड़ी में रहते हैं, कम से कम तुम एक बेहतर घर मांग सकते थे।
1: वो मुझे घर कैसे दे सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता था। हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है।
3: मैं खुश रहूंगी अगर मैं एक कोठी में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक तलस्मी शहजादा था? तुमने उसकी जान बख्शी, वो तुम्हारे लिए कम से कम ये तो कर सकता था। जाओ और जाकर एक कोठी मांगो।
2: शौहर थोड़ा हिचकिचाया पर वो वापस समुद्र की तरफ गया। वो हैरान हुआ, पानी थोड़ा हरा और नीला हो गया था।
1: तलस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो?
2: फौरन ही वो चमकीली मछली सतह पर आ गई, जैसे कि वो उस शौहर के वापस आने का ही इंतजार कर रही हो।
1: मेरी बीवी नाखुश है।
0: उसकी क्या ख्वाहिश है?
1: उसे एक कोठी चाहिए।
0: वापस जाओ, उसे ये मिल चुकी है।
2: शौहर वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीबी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो कोठी बहुत ही सजी धजी और साफ सफाक थी, उसमें फर्नीचर और आग के लिए बुखारी भी थी।
3: जाने मन, देखो ये घर ज्यादा बड़ा और साफ है।
1: हाँ, और हमारे पास आग जलाने की बुखारी भी है, ये बहुत अच्छा है ना? कि आप तुम मुतमईन हो, हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं।
3: हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में, चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं।
2: उस रात बीबी ठीक से नहीं सोई, वो ये सोचती रही कि वो किस बात से खुश हो सकती है। सुबह वो पहले ही अपने शौहर का इंतजार कर रही थी खाने की मेज पर।
3: सलाम वालेकुम मियां। देखो ये घर हमारे लिए छोटा है, मुझे एक महल चाहिए और मैं एक बेगम बनना चाहती हूँ। उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो हमें एक महल दे।
1: क्या तुम एक बेगम बनना चाहती हो? हमारे लिए ये काफी है।
3: इसका फैसला मुझे करने दो। उस चमकीली मछली के पास जाओ और मुझे एक बेगम बनाओ।
2: शौहर हिचकिचाते हुए समुद्र की तरफ गया। आज पानी बैंगनी था और हवाएं तेज चल रही थी।
1: तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी बीवी नाखुश है।
0: उसकी क्या ख्वाहिश है?
1: वो एक महल की मुंतजिर है और वो एक बेगम बनना चाहती है।
0: वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है।
2: जब शौहर वापस गया तो वहाँ से वो कोठिया गायब थी और उसकी जगह एक बुलंद महल खड़ा था जिसके बड़े बड़े पीतल के दरवाजे थे। बहुत से नौकर जाकर इधर उधर भाग फिर रहे थे। उसने अपनी बीबी को एक तख्त पर बैठे देखा, उसके सिर पर एक ताज था।
1: तुम अब एक बेगम हो?
3: हाँ मैं बेगम हूँ।
1: ये बेहतर है ना? क्या तुम अब खुश हो ना?
3: नहीं, बेगम बनना काफी नहीं है, मैं मलिकाए आलिया बनना चाहती हूँ।
1: क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, चमकीली मछली तुम्हें मल्लिका नहीं बना सकती, ये नामुमकिन है।
3: तुम इससे वाकिफ नहीं, उस मछली के पास जाओ और मुझे मलिकाए आलिया बनाओ।
2: मछुआ हिचकिचाते हुए समुद्र की तरफ गया। उसने भूरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है।
1: तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरे मेरी बीवी ना खुश है।
0: अब क्या हुआ?
1: वो एक मन

0: राधिका बनना चाहती है।
1: वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है।
2: मछुआ वापस घर चलकर आया, दिल में ये सोचते हुए कि क्या अब उसकी बीबी खुश होगी। जब वो महल पहुंचा, अब वहाँ सोने के दरवाजे थे, उन बड़े बड़े पीतल के दरवाजों की जगह घर और भी बड़ा हो गया था। अंदर उसकी बीबी एक सोने के तख्त पर बैठी थी। सभी राजे और मंत्री उसके तख्त के नीचे खड़े थे। उसके एक हाथ में सोने का गोला था और दूसरे हाथ में शाही सोटा।
0: जाने मन, तुम अब यकीनन मल्लिका आलिया हो।
3: हाँ, मैं हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मछली सब कुछ कर सकती है?
0: हाँ, तुमने कहा था। क्या अब तुम खुश हो ना?
3: ये मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, हमें सोने जाना चाहिए।
2: मछुआ खौफजदा था कि बीबी एक और फरमाइश करेगी। तमाम दिन की दौड़ धूप के बाद बहुत थक गया था। जैसे ही वो लेटा, वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन बीबी सो न सकी। वो बैठकर सोचती रही कि वो किससे खुश हो सकती है। एक हफ्ता गुजर गया। हर रात मछुआ दुआ करता था अपनी बीबी को खुश करने के लिए, लेकिन हर रात बीबी बिस्तर पर बैठी रहती, चांद तारों को ताकती रहती। आखिर में एक रात वो सोचते सोचते थक गई और वो आराम करना चाहती थी, लेकिन
3: क्या सहर हो गई? सूरज को इस वक्त उरूज होने की जरूरत कैसे हुई? क्या उसे मालूम नहीं था कि मैं एक हफ्ते से सोई नहीं? मियाँ, उठ जाइए। मैं सूरज और चांद को काबू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हुक्म के बिना हिले भी। मैं कादिर मुतलक बनना चाहती हूँ, एक मख्फी।
0: क्या? मेहरबानी करके ये बंद करो। मैं वापस जाकर अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता।
3: तुम हमारी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालोगे, मैं हम दोनों की जिंदगी की मालिक बनूंगी। कुछ भी हमें छुएगा भी नहीं। मछली के पास जाओ और मुझे कादिर मुतलक बनाओ।
0: नहीं जाने मन, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या मांग रही हो।
3: मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम इसी वक्त नहीं गए तो मैं पशेमान हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा पशेमान।
2: मछुआ अपनी बीबी को खुश देखना चाहता था, पर उसे मालूम था कि ये गलत है। बाहर समुद्र पर बादलों ने घेरा डाल दिया था और हवाएं दहाड़ रही थी।
0: ये कब खत्म होगा? ये बहुत गलत है। पानी आज इतना काला क्या है? मैं सचमुच खौफ जदा हूँ। तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ए मछली, मेरी बीवी अभी भी ना खुश है।
1: अब क्या ख्वाहिश है उसकी?
0: वो कादिर मुतलक बनना चाहती है, मख्फी।
1: वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है।
2: वो मछुआ पूरी तेजी से वापस भागा।
0: ओह, मुझे नहीं मालूम मेरी बीवी को अब क्या बना दिया गया है। मुझे वहाँ जाना होगा। ओ नहीं, ये क्या?
2: मछुए ने जान लिया कि उसकी बीवी चली गई थी। वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने ढूंढा और ढूंढा। वो वापस समुद्र के पास दौड़ा गया। पानी अब ठहरा हुआ और साफ था। बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था।
0: तलिस्मी मछली, ए तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेहरबानी करके वापस आओ। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया?
1: मैंने उसकी मुराद पूरी की। वो कादर मुतलक और अनजान बनना चाहती थी, और वो ही है वो। किसी ने कादर मुतलक को नहीं देखा, अब वो मख्फी है हर एक के लिए।
0: नहीं, उसे मुझे वापस दे दो।
1: मैं एक मुराद को उलट नहीं सकता मछुए।
0: रुको, मुझे इल्म है। अब तक मैंने अपनी बीवी के लिए क्या मांगा है? तुमने उसकी सभी मुरादें पूरी की, लेकिन मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब मेरी मुराद पूरी करो।
1: तुम सही हो, तुम क्या चाहते हो?
2: मछुए ने गहरी सांस ली।
0: मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खुश रहे।
1: वापस जाओ दोस्त, उसके पास पहले से ही वो सब है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए।
2: शौहर तेजी से घर वापस आया। वो हैरान था। उसने अपनी बीवी को छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा, पर अब वो बदबूदार नहीं थी। वो अपनी बीवी की तरफ दौड़ गया।
0: ओह, तुम वापस आ गई, तुम वापस आ गई।
3: हाँ जानेमन, मैंने ये जान लिया है कि महल और तख्त खुशी नहीं खरीद सकते। चलो अपने घर चलें।
2: उस दिन के बाद से मछुआ और उसकी बीबी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे। बीबी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है सब आम सी चीजों में, और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे।

0: एक मर्तबा का जिक्र है, एक वीरान रास्ते पर एक ऊंट खड़ा था और उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। उसी रास्ते से एक चूहे का गुजर हुआ। उसने जब देखा कि एक ऊंट खड़ा है और उसके गले में रस्सी है और वो कहीं बंधी हुई भी नहीं, न जाने चूहे को क्या सूझी। चूहा बड़े फखर से आगे बढ़ा और ऊंट की रस्सी उठा ली। अब मंजर कुछ ऐसा था कि चूहा रस्सी अपने मुंह में थामे आगे आगे और ऊंट चूहे के पीछे पीछे। चूहे की चाल ढाल में बड़ा तकब्बुर था। चूहा दिल ही दिल में अपने इस कारनामे पर बहुत खुश था कि इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ।
1: देखा, इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ।
0: ऊंट समझ गया,
2: छोटे से जानवर तू किस कदर खुशफहमी का शिकार है, बस थोड़ी देर सबर तो कर।
0: चूहा और ऊंट एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी देखकर तो चूहा डर गया, चलते चलते रुक गया। ऊंट रुका और चूहे से मुखातिब हुआ।
2: ऐ मेरे रहबर, खैरियत, आप रुक गए?
0: प्यारे मदनी मुन्नो, पता है फिर क्या हुआ? चूहा जो पहले तो बहुत तकब्बुर फखर से चल रहा था, अब नदी के बहते पानी और गहराई को देखकर तो उसकी हालत ही गैर हो गई। ऊंट ने हंसी छुपाते हुए कहा,
2: डर क्यों गए हो? क्या बात है, आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत और जुर्रत से काम लो।
0: चूहे ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली और बताया कि
1: पानी बहुत गहरा है, मैं तो डूब जाऊंगा।
0: ऊंट ने कहा,
2: मैं देखता हूँ पानी कितना गहरा है।
0: फिर वो नदी के पानी के अंदर उतर गया और चूहे को बताया कि
2: पानी कोई इतना गहरा भी नहीं, बस घुटनों घुटनों तक ही तो है। आप आए आगे ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं।
0: ये सुनते ही चूहे की तो गोया जान ही निकल गई हो। बड़ी आजजी और इनकसारी करते हुए चूहे ने कहा,
1: पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा।
0: चूहा समझ चुका था कि वो जिस बात पर गुरूर और तकबर कर रहा था या वो जिस खुशफहमी में था वो दुरुस्त न थी। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।
2: कभी अपने आप से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए, हर चीज की अपनी अहमियत होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
0: चूहे की ये हालत देखकर ऊंट ने चूहे को अपनी कोहान पर बिठा लिया और नदी पार करा दी। देखा, जो दूसरों को हकीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम किसी को हकीर न जाने। आप नियत करते हैं ना कि आइंदा किसी को हकीर नहीं समझेंगे।

सन 808 हिजरी मुहर्रम शरीफ की वो 28वीं तारीख थी जब जुहर की नमाज अदा फरमाकर हज़रत अशरफ मखदूम जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह आलम पनाह में रौनक अफरोज हुए। सिमना का यह सुल्तान, दुनियाए रूहानियत का यह आफ्ताब, विलायत हिदायत के आसमान पर एक नूर बनकर चमका और देखते ही देखते चश्मे आलम से रूपोश हो गए और अपने खालिक कायनात से जा मिले। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत गौसुल आलम महबूब यजदानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया आज भी मलजाए खलाइक है। न जाने कितने औलिया अल्लाह ने इस सरजमीन को अपने लिए रुश्द व हिदायत का मरकज़ तसव्वुर किया। इस सरजमीन पाक में न जाने कितने शहदा, कितने उलमा, कितने औलिया, कितने कलंदर आसुदे खाक हैं। हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल कचौचा शरीफ में 25 से 28 मुहर्रम हराम को बड़े तज़क्को एहतशाम से मनाया जाता है। मुल्क और बैरूनी मुल्क के हज़ारों ज़ायरीन बिला तफरीक व मिल्लत उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं। बिलाशुबा सामीन यहाँ पर आने वाला अपने दामन आरजू को बारगाह अशरफ में कुशादा करता है और गौहर मुराद से अपनी खाली झोलियों को भरता है। ए अशरफ़ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता कलीदे करम।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लेटफॉर्म कुमे सेंजिकाल की बानतली आज 11 जुलाई को पोर्ट लुइस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मरियन दे ला पे सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रहे हैं। समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतू का कहना है कि मॉरिशस की समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, वहीं युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी और नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण

0: सहायता करती है। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों से उनके रिश्तों, परिवार नियोजन, संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों, पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखती हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने ईरान से मांग की है कि वह सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापारिक जहाजों के लिए खुला और सुरक्षित है तथा व्यापार जहाजों पर हमले पूरी तरह रोकने का वचन दे। ये मुद्दा आज शनिवार को ओमान में होने वाली वार्ता में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। अमरीकी मीडिया के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने निजी तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों से स्वीकार किया है कि व्यापारिक जहाजों पर हुई गोलीबारी एक गलती थी। हालांकि ईरान ने इसके लिए अपने ही एक कथित कट्टरपंथी गुट को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर इस सप्ताह हुए संघर्ष के बावजूद दोनों देशों ने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस ने इन घटनाओं को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। डालिया रोड आमिचे में 80 साल की 80 ओल्ड की श्रीमती सनपतिया अनाम पैदाशराम रामबकस और जिन्हें सतिया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर आमिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ट्यूटोरियल 3 PM। पोतीराम लेन विचमिल त्रियोली में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नोगतन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर विचमिल त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोली शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। आवनी सिकन बासेरोड कैटरबोन में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती कुमारी अनंत जिन्हें पैदाशराम बुदन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे अजय अनंत के घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैटरबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मौज करवा गुजराती गीतों ना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे गीतों नी बहार गीत बहार गीत बहार

पैसा की मौज आए भा धरण धरण भल खड़ खड़ सब नहीं मैं कि तू गुट वाली छापुरानी हेटरिया ने जाली रखा।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: नमस्कार. इस समय दिन के 2:15 हुए हैं, यानी कि इस समय 2:15 हैं. हमारा आपका साथ है, हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर. रेडियो मॉरिशस पर हमारा आपका साथ रहेगा 4 तक. और अभी से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपकी पसंद कार्यक्रम. और हमारे मन में ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं. आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका हर एक पल आपके लिए सफल पल कहलाए. तो चलिए इसी दुआ के साथ हम आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम
2: आपकी पसंद.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहेंगे तो आप हमें 5251705 पर मैसेज भेजिएगा. और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 पर कॉल कीजिएगा. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कॉल्स के मुताबिक हम आप लोगों की पसंद के गाने पेश करेंगे. तो हम हैं सुरेखा, साथ आपका दे रहे हैं बस इस दुआ के साथ कि आपके जीवन में झिलमिल सितारे झिलमिलाए, आपके जीवन में खुशबूदार फूल महक जाए. ये गाना पेश करते हैं आपके लिए.

चलिए हमारे इस प्रोग्राम में हम शान बढ़ाते हैं आपके पसंदों की, और पसंद इस बार है जमुना जी की। जमुना जी जो रहती हैं कौन मसपा वे, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है अपनी मामा के लिए, अपने पापा के लिए और अपने फियांसे यादव के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं हम ये गाना, जुर्म मूवी से लिया गया।

चलिए जरा हम विश्वानी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। विश्वानी जी ने वाकवा से फिल्म बेजुबां के गाने की फरमाइश की है और विश्वानी दुमन जी ने ये गाना मांगा है अपनी बहनों के लिए, इंदिरा और शारदा के लिए, अपनी सखियों नीला और प्रतिभा के लिए, शोभा जी के लिए और अपनी कजिन गीता गजाधर जी के लिए। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं, सुनवाते हैं, इंजॉय करते हैं।

इस समय 2:35 हुए हैं और इस वक्त जो गाना पेश करेंगे वो होगा आप अपना देश मूवी से लिया गया गाना। ये गाना हम किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनेंगे और ये गाना हम सुदेवी जी की पसंद पर पेश करेंगे। वाक वाक की सुदेवी जी ने ये गाना मांगा है थोयोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु, संगीता, जीवराज, मलेगा के यशनार, नीरज और रामरतन, रामगुलाम, कुआहू और रघुबर परिवार के लिए। तो चलिए जरा सुनते हैं सुदेवी जी की पसंद।

चलिए रेडियो मर्शस पर जो आपकी पसंद कार्यक्रम पेश कर रहे हैं उसमें हम मुकेश की आवाज़ सुनवाते हैं आपको और वाकवा से नंद जी के नाम करते हैं हम ये गाना। चलिए ज़रा सुनते हैं मुकेश की आवाज़। और इस जहां में जहां पर मुकेश की आवाज़ गूंजती है वहां दिलों का एहसास होता है। मुकेश की आवाज़ जो है वो गले से नहीं आती, वो दिल से निकल के आती है, इसीलिए दिल की गहराई में ही उतर जाती है।

3:45 बज रहे हैं और आपके पसंद कार्यक्रम में इस बार हम आपको सुनवाते हैं एक जन्मदिन वाला गाना। रखवाला मूवी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ का है और ये गाना हम गीता जी के लिए बजवा रहे हैं। गौंगुप की गीता जी अपना जन्मदिन मना रही हैं, उनके पति अजय की तरफ से, उनके बेटे आनिश की तरफ से, उनकी ननदें हैं सुनीता और अमृता और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। जन्मदिन की मंगल कामनाएँ बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह के साथ गीता जी को दे रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य।

तो बस चलिए बढ़ जाएं और हम पेश करें कालिया मूवी का गाना। कालिया मूवी का ये गीत है जिसे हम गायत्री जी के लिए बजवा रहे हैं। गायत्री जी जो नुवेल फ्रांस की रहने वाली हैं, वे ये गाना मांग रही हैं अपने बेटे अजय के लिए, मेबा की मामी कल्याणी मोहन के लिए, लॉन्ग माउंटेन की भाभी शकुंतला के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं हम ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। कालिया मूवी का ये गीत है।

तो चलिए इस बार हम माला झड़ी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। पिछित खत से माला झड़ी जी ने ईश्वर के लिए, बेटी रीमा के लिए और बेटी दीपक के लिए मांगा है मूवी हीरा के गाने का गाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों का ये गाना है और यही गाना हम शातो बिनाकिस की ज्योति जी की तरफ से भजवा रहे हैं आशनी, रेखा, सुरेखा और पूरे मंडप परिवार के लिए।

0: Wishing you all a very good afternoon. You check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार यहाँ पर आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
1: नमस्कार. सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. प्लेटफॉर्म कुंभ सैंतिकाल की पहल पर इस समय राजधानी की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही है. ये रैली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में प्रस्तावित सुधार के विरोध में आयोजित की गई है. रैली आज दोपहर करीब 1 बजे मैगन डोलापे से शुरू हुई और कंपनी गार्डन में जाकर समाप्त होगी. हर उम्र के लोग श्रमिक संघों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं. वे वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले लोगों से व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए. कैबिनेट ने अक्टूबर में होने वाली प्राइमरी स्कूल अचीवमेंट सर्टिफिकेट पीसा परीक्षा के टाइम टेबल की भी जानकारी दी. परीक्षाएं 22 अक्टूबर से शुरू होंगी. पहले दिन फ्रेंच और साइंस की परीक्षा होगी. 23 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर होगा. इसके बाद छात्र 26 और 27 अक्टूबर को भी परीक्षा देंगे. आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष का विषय है आज के भविष्य के लिए युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करना. यह विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक नई रिपोर्ट पर आधारित है. इस रिपोर्ट के लिए 73 देशों में 18 से 39 वर्ष की उम्र के 1,00,000 से अधिक लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया गया. रिपोर्ट में युवाओं के संबंधों, परिवार, बच्चों, भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के साथ साथ उन चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें वे अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में न्यूजीलैंड के ओकलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते दोस्ती, साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य की सोच पर आधारित है. श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय है जो दोनों देशों के संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए.
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका. स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल. स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा. ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट.

0: स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
3: तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं हम रेडियो मॉरिशस पर और माइक के इस पार तो हम हैं, कभी ना कभी आप भी होंगे वन डे और जी पर आप ज़रूर भाग लीजिएगा। इस समय 3:06 हुए हैं और हमारा आपका साथ है आपकी पसंद कार्यक्रम में और इस बार हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ का ये गाना। ये है जो जीता वही सिकंदर मूवी का गाना। इसे हम विद्या जी के लिए पेश कर रहे हैं। सैंकवा की विद्या जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी बहन उर्मिला के लिए की है और उनका ये कहना है कि ये गाना उनको अपने बचपन की याद दिला देता है। तो चलिए बचपन की यादों में घुले रहिएगा, प्यारी प्यारी बातों में रमे रहिएगा।

चलिए इस बार हम विद्यानंद जी की पसंद का गीत सुनवाते हैं आपको। ये गाना है फिल्म पूनम से लिया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना है। विद्यानंद जी ने इस गाने की फरमाइश मेबर्ग से की है, सोहंती जी के लिए अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश और विष्णु गजाधर जी के लिए जो शिवाला लेन मेबक के रहने वाले हैं। और विद्यानंद जी ने ये गाना अपनी बहन बिंदु कालीचरण जी के लिए मांगा है।

और आगे बढ़ते हुए समय 3:15 बजे है, आप तक पहुंचाते हैं हम खानदान मूवी का गाना। खानदान मूवी का ये गीत आप सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं फ्लिक ऑफ लाकी अनीता जी के लिए। अनीता जी ने ये गाना मांगा है अपने पति राज के लिए, बेटे अंतिश और अंकुश के लिए, बहू मनीषा और अशीमा के लिए, पोती हिमेशा आध्या के लिए और पोते अंश के लिए, और हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: तो चलिए हर घड़ी हर पल आपको एंटरटेन करते हैं हम एंटरटेनमेंट आज आपकी पसंदों से आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके चुने हुए गाने और इस बार पेश करेंगे साहिब बहादुर मूवी का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एक वायर की सेलू जी की तरफ से उन्होंने ये गाना मांगा है अपने पूरे परिवार के लिए और अपने सभी दोस्तों के लिए।

चलिए ज़रा वादों पे गौर करते हैं। जो वादा करते हैं हम उन्हें निभाना ही निभाना होता है। अगर वादा करते हैं तो ये वादा एक विश्वास होता है, इस विश्वास को तोड़ना अच्छा नहीं होता। जो वादा होता है, जो विश्वास होता है, उसे ज़रूर संजो के रखना होता है, उसे ज़रूर निभाना होता है। चलिए ज़रा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनते हैं हम ताजमहल मूवी का ये गाना, और ये गीत हम पेश कर रहे हैं पालमा के महेंद्र जी की पसंद पर। Oh,

चलिए हम बहारों की बातें करते हैं। बहारें आती हैं तो कभी बहारें हमारे लिए खिजां भी लेकर आती हैं। जब बहारें आती हैं खुशियां देने के लिए जब जाती हैं तो हम भी दे जाते हैं, और बहारों की यादें हमारे दिल में हमेशा हमें टीस दिया करती है। चलिए ज़रा हम सुनते हैं तकदीर मूवी का ये गाना। इस गाने की फरमाइश दिलीप जी ने कुंगुमा से की है। उन्होंने ये गाना मांगा है संगीता कविता किशनवी के लिए, मनीषा के लिए, आरव लक्ष्य निशान के लिए, इंदिरा और दानंद के लिए।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: तो चलिए, ये राह म्यूजिक की है, ये राह संगीत की है। इस राह पे चलते जाएं, तलत महमूद की आवाज़ से सजाएं इस महफिल को इस बार। और ये गाना हम पेश कर रहे हैं पोंफाले की जैबून जी की तरफ से। जैबून जी ने ये गाना मांगा है अपने शौहर कासम जी के लिए, चार बेटों चार बहुओं के लिए, जहिराबी के लिए, नगमा के लिए, उर्फा, असगर, हिदायत, फैजुला और निहाद के लिए। तो चलिए ज़रा हम सुनते हैं तलत महमूद की ये आवाज़, गोल्डन आवाज़, वो आवाज़ जिसे हम कभी भुला नहीं।

सफ़र है ये सुहाना सा, सफ़र है ये खामोश सा, कश्ती का खामोश सफ़र है। रात भी तन्हाई भी नज़र आती है, बस कहने की एक बात दिल में है, वो बात अब ज़बां पर भी आने वाली है। चलिए ज़रा हम किशोर कुमार की आवाज़ सुने, गर्लफ्रेंड मूवी का ये गाना वाक वाक के नंदलाल जी की पसंद पर।

सफ़र हंसी तभी लगता है जब हम सफ़र आप बने होते हैं। आप जैसे हम सफ़र मिल जाएं तो ये सफ़र इतनी आसानी से कटता है, बल्कि इतनी जल्दी ही कट जाता है कि बात मत पूछिए। जो प्यारा सा हम सफ़र साथ में है तो सिर्फ समय नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, ज़िंदगी भी बड़े प्यार से गुजर जाती है, बड़े एहसासों के साथ गुजरती है। सो आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो जो गाना हम आपके लिए पेश करेंगे वो जीवन के बारे में है। जीवन के दिन छोटे होते हैं, पर इसमें गहराई से अगर आप जिएं तो ये जीवन के दिन बड़े गहरे हुआ करते हैं। ये है बड़े दिल वाला मूवी का गाना। इस

गाने की फरमाइश करने वाले हैं थियोले के बंधु फैमिली। तो चलिए बंधु फैमिली के नाम करते हैं हम उदित नारायण और बेबी प्रीति की आवाज़ का ये गाना।

आपके पसंद कार्यक्रम का ये अंतिम गाना हम पेश करने जा रहे हैं, ये है अगर तुम न होती मूवी का गाना। इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा हमारा आपका ये सफ़र, हमारी आपकी ये मुलाकात, आपकी पसंद कार्यक्रम। इनफैक्ट अगर तुम न होते मूवी का ये गाना हम बजवा रहे हैं कविता जी की पसंद पर। सेबास्तोपुल की कविता जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति किरण के लिए और पूरे दुली परिवार के लिए, और यही गीत हम गांवबे के विजय जी के लिए पेश कर रहे हैं, उनकी बेटी स्नेहा के लिए, उनके बेटे आरव और उनकी पत्नी नीतिका जी के लिए, और साथ ही साथ उनके भाई रवि के लिए। तो चलिए इस गाने के साथ ही हमारी आपकी जो मुलाकात समाप्त हो जाएगी, आप सुनिएगा 4 बजे आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगी डॉक्टर अलका धनपत। हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे, और 6 से 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। सो फिलहाल तो हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आप अगर तुम न होते मूवी का ये गाना एंजॉय करते रहिएगा। अगली मुलाकात तक बाय बाय, शुभ शाम।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को शुभ संध्या। और आप जुड़ चुके होंगे प्यारे प्यारे गाने सुनने के बाद, एक बार फिर से मैं और सुमिता आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज सुमिता जी मेरी तकनीकी सहायिका हैं, उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और श्रोताओं, सुमिता सरकार से तो आप सभी परिचित हैं, उनकी आवाज़ तो आप रेडियो पर सुनते ही रहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम कुछ सूरीनाम की तरफ मुड़कर, और आप मेरे साथ जुड़ सकेंगे 4028085 पर। तो श्रोताओं, चलिए जरा मॉरिशस की गलियों को छोड़ के हम सूरीनाम की तरफ चलते हैं। सूरीनाम में भी हिंदी तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि सूरीनाम में देवनागरी लिपि नहीं है श्रोताओं। और हम मॉरिशस वासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि आज हमने हिंदी सीखी, हम हिंदी बोलते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमने देवनागरी लिपि को जिंदा रखा हुआ है। श्रोताओं, किसी भी भाषा के रूप का आनंद लेना हो तो उसकी लिपि तो आनी चाहिए ना, इसीलिए सूरीनाम की हिंदी सरनामी हिंदी आज कहलाती है। पर श्रोताओं, मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी जो गर्मिटिया मजदूर पहुँचे थे, उन्हीं के माध्यम से हिंदी वहाँ पहुँची थी। वहाँ पर भी जो समुदाय पहुँचा था बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म, इनको बचाना चाहता था। और जो आने वाले लोग थे वे उत्तर प्रदेश, अब उनके साथ जो भाषा आई, बोलियाँ आई, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली और ब्रज की भाषाएँ, ये वे अपने साथ लेकर आए थे। जिसके कारण अब हर व्यक्ति तो अवधी नहीं जानता था, हर व्यक्ति ब्रज नहीं जानता था, तो धीरे धीरे हिंदी वे लोग आपस में बोलने लगे। क्योंकि इन लोगों को लाकर अलग अलग प्लांटेशनों में रखा गया था, अब आपस में व्यवहार कैसे करें, तो ये लोग हिंदी बोलने लग गए। तो और जब इकट्ठे बैठते तो रामायण, गीता, पुराण, सत्यनारायण आदि की कथा, ये सब ये लोग आपस में करते थे। तो दिन भर क्या

कठिन परिश्रम हमसे ज्यादा और कौन जानेगा। मॉरिशस का इतिहास यहाँ भी यही था ना श्रोताओं, दिन भर कभी किसी को कोड़ों की मार तो कभी गालियाँ, लेकिन रात की बैठकाएँ उनकी अपनी होती थी, कभी चोरी छिपे तो कभी खुलकर। ठीक ऐसे ही सूरीनाम में भी इन बैठकाओं में वे इकट्ठे बैठते, मानस की चौपाइयाँ गाते, भजन गाते, दुख सुख की बात कहते, कुछ किस्से कहानियाँ गाँव के सुनाते, कुछ त्योहारों की बात करते। बस इन बैठकाओं के माध्यम से ही धीरे धीरे भाषा, धर्म और संस्कृति का प्रचार होता रहा। तो श्रोताओं, सूरीनाम ने भी वही दुख के दिन देखे जो मॉरिशस ने देखे थे। यहाँ पर सरनामी ने हिंदी को वह भूमिका दी जो सूरीनाम के भारतीयों ने मानो उसकी पहचान बना दी थी। सनातन धर्म महासभा, उन्होंने कई मंदिर खोल दिए और मंदिरों में हिंदी की शिक्षा देने लगे और कुछ चीज़ें रटाने भी लगे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते लिपि को लेकर एक बिल पास किया गया कि ठीक है, हम रोमन लिपि लेंगे, और रोमन लिपि में सरनामी हिंदी लिखी जाने लगी। आज बड़ी समस्या है वहाँ पर, वहाँ के बच्चों को देवनागरी लिपि नहीं आती है। और कुछ स्वयंसेवी व्यक्ति भी हैं जो काफ़ी काम कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि जनता में हिंदी बढ़ती रहे। और कुछ पुराने लोगों को तो वहाँ के लोग नानी के नाम से कहते हैं, लेकिन ये नानी या ये जो लोग सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, ये त्यौहार, अपने कवियों की जयंतियाँ और जनता तक अखबारों से सूचना पहुँचाते रहते हैं। आज लगभग 65 अध्यापक हैं जो देश में निरंतर हिंदी की पाठशालाएं सूरीनाम में चला रहे हैं। श्रोताओं, सूरीनाम में सृजनात्मक हिंदी साहित्य की चर्चा करें तो शुरू यहाँ से कर सकते हैं कि सूरीनाम में हिंदी को लगभग 140 वर्ष हो चुके हैं। अब ये तो कहना कठिन है कि कौन सी रचना कब कहाँ प्रारंभ हुई। हाँ, मॉरिशस का तो हमें पता है, जिस समय मणिलाल डॉक्टर ने हिंदुस्तानी पत्र निकाला तो पहली कविता होली, जो कवि गणेशी की है, वह हमको छपी हुई मिलती है और कहानी भी मिलती है। तो इस प्रकार से मॉरिशस का तो आज हम बता पाते हैं कि कौन सी रचना पहली जो छप कर सामने आई। तो श्रोताओं, सूरीनाम का जो साहित्य है उसमें वहाँ पर भी दुख सुख तो थे ही, उतार चढ़ाव थे जीवन के, संघर्ष थे, आशा, विश्वास, बिल्कुल परिस्थितियाँ कठिन से कठिनतम थी, प्रवास का दर्द था, लेकिन फिर भी भाषा और संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम आज भी दिखाई देता है। सूरीनाम के प्रसिद्ध हिंदी कवि पंडित हरिदेव सैतू, अपनी उनकी एक पुस्तक है सूरीनाम में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, वे कहते हैं कि पहला 1918 से 1960 तक और दूसरा 1960 से 1975 तक है। जैसे हम भी यहाँ पर कालखंड बांटते हैं ना, आज़ादी से पहला का साहित्य, जैसे कुछ गिरमिटिया साहित्य, लेकिन कुछ आज़ादी से पहले का साहित्य जो 1968 से पहले का है, उसके बाद आज़ादी के बाद का साहित्य, और उसके बाद सन 2000 के बाद का साहित्य। तो ये जो वहाँ सूरीनाम के पंडित सैतू थे, वे कहते हैं कि मुंशी रहमान खान के वह सूरीनाम का शायद पहला कवि रहा होगा। मुंशी रहमान खान और पंडित चंद्रमोहन सिंह से पहले अनेक लोगों ने लिखा तो है, लेकिन मिला नहीं, छपा हुआ नहीं मिला है। कुछ पांडुलिपियाँ मिली हैं और कुछ खोज जारी है। जैसे हमारे यहाँ भी देखिए, तिलक महाविद्यालय, तिलक विद्यालय से दुर्गा पत्रिका निकला करती थी। हस्तलिखित रचनाएं आज भी उनके म्यूजियम में है, हिंदी प्रचारिणी सभा के। अब तो कमल किशोर गोयनका ने दो खंडों में दुर्गा निकाल भी दी है और सारे जितने हस्तलिखित थे वह हमको प्रकाशित रूप में मिलते हैं। ये 2018 में छपी थी जब सुषमा स्वराज जी ने एक फंड दिया था कि मॉरिशस की जो दुर्गा पत्रिका हस्तलिखित है उसको अब प्रिंट मीडिया के रूप में छापा जाए। तो आज हमारे पुस्तकालयों में वह पुस्तक है। लेकिन सूरीनाम का इतिहास भी हमारी तरह पुराना तो है, पर कुछ चीज़ें यहाँ पर संरक्षित नहीं हो पाई हैं। पुराना उतना ही है क्योंकि हमारे यहाँ भी गिरमिटिया आए, अर्थात एग्रीमेंट के अंदर गिरमिट, जो एग्रीमेंट के अंतर्गत आए, और सूरीनाम में भी वहाँ पर गन्ने की खेती के लिए उनको ले जाया गया क्योंकि खेती के लिए वहाँ पर कोई मिलता ही नहीं था। तो इसीलिए अब ये इसको चार चरणों में बांटते हैं इतिहास को। पहला है 1873 to 1918, 1873 से 1918 तक, और दूसरा है
19

1918 to 1960 से 1960 तक, और तीसरा वे लोग मानते हैं 1962 1975, 1960 से 1975 तक, और उसके बाद 1975 या 1975 से आज तक का है। सरनामी लोग या सुरिनाम के लोग जब किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं वे हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, बातचीत कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो हिंदी में लिख नहीं पाती, हिंदी देवनागरी लिपि पढ़ नहीं पाती है। तो हम अपने बच्चों को पहली कक्षा से ही देवनागरी लिपि का परिचय कराते हैं, इसीलिए मॉरिशस का नाम पूरी दुनिया में भारत के बाद हिंदी को लेकर सबसे आगे गिना जाता है। तो चलिए, मेरे साथ यज जुड़ चुके हैं, हम एक गीत सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आपको भी लेते हैं।

0: सेक का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण, ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है अलका धनपत।
1: एक देश का दर्द नहीं था ये, सुरीनाम, गयाना, फिजी, ट्रिनिडाड, जहां जहां भी भारतीयों को लेके इसीलिए गए थे क्योंकि इससे अच्छे मजदूर कहां मिल सकते थे। इतने सहनशील और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वह कार्य कुशलता, जिसे हम कहते हैं स्किल्ड लेबर, तो ये तो पका पकाया उनको मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने भारत से लोगों को बहला फुसला के लाना शुरू किया, क्योंकि अन्य देशों के जो गुलाम थे वे तो करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज गवर्नर लिखते हैं कि भारत जैसा सहनशील और परिश्रमी और ईमानदार मजदूर कहाँ मिलेगा। तो श्रोताओं, सुरीनाम की भी दुख भरी गाथा वैसे ही शुरू हो जाती है। तो 4028085 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे आपके पिटारे में अनुभव और बातें हैं। तो शायद हमारे साथ एक फोन कॉल है। हेलो।
2: हाँ बेटी।
1: नमस्ते नानी जी।
2: हाँ,
1: आप तो उसी पीढ़ी की हैं। हाँ बिल्कुल।
2: अच्छा आवाज आना।
1: जी जी सुनाइए।
2: अभी एगो नानी के बात हो सुरीनाम में। नानी
1: हाँ,
2: के बात
1: नानी,
2: तो नानी बोले,
1: नानी बोलेला।
2: हाँ, मोरिस के नानी है बेटी।
1: मुझे पता है, आप तो हम सबकी नानी है।
2: क्या बोल बा, नानी और दादी से जीवन जाता है।
1: अच्छी बात है ना, आज आप इतनी हाँ, बड़ी हो गई, इतना अनुभव है कि सब आपको नानी दादी
2: हाँ,
1: बोलते हैं।
2: बोला था दूसरा पेश से जब आईलन
1: जी
2: दादा
1: जी,
2: क्या पगड़ी बांध के दादा घर से निकल, ऊंचा पगड़ी बांध के दादा चढ़ल नदा जावा, आहो दादा ऐलन मरीसवा, आहो दादा ऐलन मरीसवा, आंदेलन गीता रमायण, आहो दादा ऐलन मरीसवा, ऊंचा पगड़ी बांध के बाबा घर से निकालन, ऊंचा पगड़ी बांध के बाबा घर चढ़ल न दह जावा, आहो बाबा ऐलन मरीसवा, आंदेलन गीता रमायण, आहो बाबा ऐलन मरीसवा। सब दादा पापा चाचा चाची सब ऐलन जा,
1: तभी तो सब
2: लोग भी आइल हवन जा।
1: और
2: लहंगा ओढ़नी पहन के मोटरी मोटरी गठी लेके सब ले आइल हवन जा।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: दादी लोग संगे आइल हवन जा।
1: जी जी जी।
2: तो आइलन जा तो का देखत हवन जा, बहुत दुख,
1: बहुत दुख, बहुत सही कह रही है। नमस्ते नानी जी, बहुत धन्यवाद।
2: दुख सहते जा तवन जा, तो का मिलल,
1: बहुत दुख मिलल,
2: गोनी के बिछौना मिलल, गोनी के होरना मिलल।
1: जी जी जी।
2: गोनी के
1: हां हां वी
2: औरी धौरा धौरी गोनी के तबेलिया बांध के धौरा धौके जाय के लापेल पर लापेल नहीं मिलल।
1: जी जी।
2: वो छूट गयल। तब दादा घूम के इधर हूँ आपसे।
1: बहुत धन्यवाद नानी जी, आप जुड़ती हैं
2: और आप रहलन जा।
1: हाँ, बहुत सुंदर बातें आप सुनाती हैं और आपके साथ बहुत से अनुभव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, नानी जी उसी एक पीढ़ी की हैं जिनके पास लोक गीतों का भंडार है और हर बार सुनाती हैं। अगर हमने उनसे उनकी कहानी का पिटारा खोला तो वो पिटारा शाम तक भी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हर बार नानी को बहुत सलाम, बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो, मेरे साथ लुडोविक जी जुड़ चुके हैं, आपके फोन कॉल ले रहे हैं।
3: भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी। जी
3: लुडोविक बेटा को भी।
1: हाँ लुडोविक बड़े प्यारे बच्चे हैं जी।
3: हाँ वो यश भी, मुझे उनका, मुझे तो यश का नाम ही बहुत पसंद है।
1: हाँ, और ये लुडोविक तो चाहे हिंदी ना समझे

0: पर मुस्कुराते हुए मेरे साथ सारा हाँ, काम करते हैं, स्माइलिंग फेस है ऑलवेज।
1: काम करते करते शायद उनकी समझ में बहुत कुछ आती होगी।
0: जी जी बिल्कुल, स्माइलिंग फेस बच्चे का है, बहुत प्यारा बच्चा है।
1: हाँ,
0: जी
1: मेरा शुभ शुभ आशीष उनको,
0: बहुत धन्यवाद।
1: और दीदी आप भाषा की बात कर रही हैं, देवनागरी लिपि
0: जी
1: वो तो देव भाषा है। पहले के जमाने में मुझे पता है वो अ कुछ अलग तरह से लिखा जाता था, बहुत छोटे थे तो।
0: ये जानती है क्यों बदला जा रहा है सब कुछ? ये नए बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि उस आ में पहले प बनाना पड़ता था, फिर नीचे एक और मात्रा, तब एक और डंडा, तो अब उसको आसान करने के लिए सब किया है। इसे बोलते हैं हिंदी की मानकता।
1: हाँ, जब हम छोटे थे हम पढ़ने जाते थे, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी के जो अभिभावक हैं वो बोलते थे मुझको कि बहन जी पहले बैठकाओं में जब हम जाते थे या पाठशाला में ना, मैं स्कूल में जाते थे ना, तो पहले हमें सिखाया जाता था अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, फिर क ख ग ग, व्यंजन स्वर अक्षर
0: जी
1: कैसे लिखा छोटा उ मा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक पुस्तक थी हमारे बचपन में प्रकाश प्रकाशन शायद, उसमें माँ म आ चंद्र बिंदु, बच्चों को बताया जा रहा है ये चंद्र बिंदु है। बहुत सुंदर पुस्तक थी, बहुत
0: जी,
1: दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा है।
0: अच्छा।
1: लेकिन क्या क्या बहन जी, अभी जब हम बच्चे स्कूल भेजे ना, तो ये सब उनको सिखाया नहीं जाता।
0: ये ना एक सिस्टम बदल गया है, अब वाक्य से शुरू करते हैं। पहले
1: डायरेक्ट
0: वर्णमाला सिखाते थे, अब डायरेक्ट वाक्य से करा के फिर बीच बीच में वर्णमाला समझाते हैं। ये नया एजुकेशन सिस्टम है।
1: छोटा उ बड़ा उ छोटी ई बड़ी ई ये सब सिखाया जाता था। तो मतलब कि कुछ बच्चे जो है जो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे ना, तो वो पकड़ लगे थे। और इसे रंगों के द्वारा फल को रंग करके, ये आम है, ये सेब है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: या घर है,
0: हाँ,
1: नल है, तो बच्चे बहुत खुश होते थे।
0: जैसे मान लो नल बोलता तो उसे पता चलता ये न है ये ल है,
1: ये ल है, इसे करना। किसे हम अंग्रेजी ही पढ़ते हैं
0: जी,
1: तो ए अब बी में एक बार लगाना, उसमें दो गोल लगाना, तो वो बी हो जाएगा। तो ऐसे होता था, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब सब कुछ बदलने लगा
0: नहीं,
1: है।
0: तो चीजें बदलती है ना, जिंदगी परिवर्तन का नाम है। तो भाषा वैज्ञानिक,
1: हाँ, जो पुरानी भाषा है और किसे अभी आपने कहा
0: जी,
1: तो वो जिन लोगों को याद है, जो मतलब कि हमारी उम्र के हैं या हमसे भी बड़े हैं,
0: वो पीढ़ी जो है,
1: स्मरण होगा कि कैसे हम देवनागरी भाषा को हम अपनाते थे और आज भी हम समझते हैं।
0: जी, जी,
1: और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है।
0: ये गौरव होना चाहिए।
1: बोल पाती हूँ, गाती हूँ, सबको सुनाती हूँ। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और अपनी भाषा को जानती हूँ।
0: बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत
0: आपके इन गौरवपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, सचमुच देखिए, माँ जब खाना बनाती है, माँ होटल की तरह खाना नहीं बनाती, लेकिन माँ का खाना बनाया हुआ आपको स्वास्थ्य देता है। और होटल का खाना जरा 4 दिन बाहर खा के देखिए, आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होने जा रहा है, लेकिन माँ रोज बनाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। जबकि वो हमारे लिए मिठाई भी बनाती है, कोफ्ते भी बनाती है, लेकिन फिर भी वो प्यार और स्वच्छता वो हमको ठीक ठाक रखते हैं। ऐसे ही अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उस पर गर्व, उसको अपनाए रखना अपनी माँ को अपनाए रखने जैसे है। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, जय माता दी।
0: जय माता की, क्या हाल है बहन जी?
2: ठीक है, आप कैसी है?
0: फर्स्ट क्लास, सुनाइए कुछ आप।
2: मैं दादा दादी को प्रणाम करती हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल,
2: सभी से और सभी से आशीर्वाद लेती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद की बड़ी कीमत है।
2: और एक छोटी सी भजन बोलूंगी।
0: जरूर रोमिला जी, बोलिए।
2: हे दीन बंधु स्वामी, सुन लो पुकार मेरी, जी

0: आपको
1: बहुत मीठी आवाज है, नमस्कार, बहुत अच्छा। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो बहन जी,
1: नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं यूकुले से बोल रही हूँ, अमृता।
1: हाँ, बहुत दूर से बात कर रही हैं, बोलिए।
2: अच्छा, एक बार ठहरिए थोड़ा सा।
1: अच्छा, अभी और ठहरूँ मैं आपके लिए? कहाँ से विदेश से विमान लेकर आ रही हैं? आप यही हो, विदेश में नहीं हो?
2: मैं भी अपनी जो मेरे गांव की दादी थी,
1: हाँ हाँ,
2: हम छोटे में बैठा जाते थे।
1: अच्छा,
2: तो वो अपने भाई के यहाँ आते थे तो हम लोगों को, हमने के पाठशाला में,
1: हाँ हाँ,
2: समय निकाल कर एक प्रार्थना करती थी, वो मेरे दिमाग में अब तक है, लेकिन मुझे याद नहीं थी थोड़ा बहुत। अभी मुझे एक पुस्तक में मिला है, मॉरिशस की खड़ी बोली में।
1: सुनाइए,
2: आपको सुना दूँ?
1: जल्दी से सुना दीजिए
2: जी। आइयो पोता भी बताइए साथ, तो सुनिए बहन जी।
1: हाँ सुनाइए।
2: मेरी बचपन की जो मेरी याद थी सर,
1: बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम, सुनाइए।
2: हाँ, तो ये है, सर सर सर सर समझा।
1: हाँ, बहुत सुंदर।
2: गिरवर धारे जो जाने गिरवर के भवे, नित उठे पूजन गणपति देवे, गणपति पूजे का कीजे, पहले फूल विनायक दीजे, दोसर का सरस्वती दीजे, तीसर का महादेव, चौथी गुरु पाव परी है, गुरु पाव पवे आशीष, गुरु सत्य जिए लाख बरिस, लाख बरिस के संदे कुंजे, गुरु द्वार बसे चांदनी, अकलम दिया विद्या के फल बैठे खा, यही तो जो विद्या दिया है।
1: वाह अमृता जी, हाँ ये बड़ा बड़ा पुराना गीत है।
2: हाँ,
1: बड़े दिनों बाद मुझे पूरा सुनने को मिला, किताबों में आधा आधा मिलता है, लेकिन आपने पूरा सुनाया, बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको बहन जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया।
1: अमृता जी,
2: वो पुस्तक ले लीजिए,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद।
2: चलिए
1: हम एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ बहन जी।
1: हाँ, कहाँ चली गई आप? नमस्ते जी।
3: कहीं नहीं गई बहन जी, दुख की बात है कि मेरा रेडियो ये तो घर घर की कहानी हो गई है बहन।
1: हाँ,
3: जी आपको
1: घर,
3: पता
1: घर
3: है भाई, एक से दो, दो से तीन रेडियो मेरे लिए खरीद कर ला दिए, उसे पता है। हाँ
1: अरे,
3: बहन जी
1: ऐसे भाइयों को बहुत प्यार।
3: हाँ बहन जी, आज सवेरे फिर से एक नया रेडियो मेरे लिए लाया है।
1: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं आपके भाई आपको।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत ध्यान देता है।
1: तो
3: मैं ये कहूँगी बहन जी, मैंने ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि वो जो रेडियो है ना, खर खर कर रहा है।
1: मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपके पुराने दिनों का कोई गीत या हिंदी को लेके कोई याद, क्योंकि आज हम सर सुरीनाम की जब चर्चा करें तो लोगों को अपना अपना याद आ रहा है।
3: हाँ बहन जी, तो यूँ तो अभी तो आपको तो पता है, उम्र काफी ढल चुकी है।
1: वही
3: तो सुरीनामी है।
1: आपके उम्र वालों से ही तो मिलेगा कुछ।
3: हाँ बहन जी, मुझे पता था कि वो जो सुरीनाम के गीत होते थे ना बहन,
1: हाँ,
3: जी बहुत सुंदर गाना गाते थे, वो तो खुल कर गाते थे, भोजपुरी में जो गाना गाते थे बहन जी, यहाँ के लोग उस प्रकार के गाने नहीं गाते।
1: मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ। कलकत्ता से भर्ती होकर सुरीनाम में पहुंचे आए, उतर गए तब यही देसवा में, डिप्पू में दिए भात खवाए।
3: अच्छा, तो बहुत सुंदर है बहन जी। हाँ, क्यों मुझे पता है कि वे लोग, उन लोगों की भाषा बहुत क्लिष्ट है,
1: हाँ,
3: परिष्कृत है,
1: हाँ,
3: क्योंकि जब मैं होलान गई थी घूमने ना बहन,
1: अच्छा,
3: जी, तो वहाँ पर वो रास्ते के नुकर पर बैठकर,
1: अच्छा,
3: वो हाँ झाल ढोलक लेकर वो अपनी भाषा में कुछ मैंने लिख कर रखा है बहन जी, लेकिन आयन वक्त पर नहीं पता चलता।
1: चलो ऐसे है, आप ढूंढ के रखना, अगली बार सुना देना।
3: हाँ बहन जी,
1: ठीक है।
3: तो इस प्रकार कहते हैं ना बहन जी, की हमारी जो भाषा या जो बोली जीवित है आज, तो अगर हमारे पूर्वज न आए होते तो हम कहाँ से इसको, हमें कहाँ पता चलता बहन जी।
1: सही बात है।
3: हाँ,
1: उनकी मेहनत से हमारे पास सब कुछ है।
3: हाँ, सब कुछ है बहन जी, उन्हीं की बदौलत। और कैसे कहते हैं, जब हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी दुख भरी गाथाएं ना बहन जी, हमारी हमारे जो रोंगटे हैं ना खड़े हो जाते हैं बहन जी। हाँ, हम वो कैसे आए थे, क्यों आए थे, उन्हें तो ठग कर लाया गया था।
1: बड़ी कठिन परिस्थितियां था जिस समय वो लोग यहाँ आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उन लोगों पर टैक्स लगा रखे थे, उनको बीज नहीं मिलते थे, खाद नहीं, पैसा नहीं था, चीजें कुर्क हो जाती थी, कर्जे चढ़ गए थे, क्या करते वो लोग, मरता क्या ना करता। अब किसी ने कहा कि चलो वहाँ काम मिलेगा, सोना मिलेगा, बेचारे आ गए, ठगे तो गए, लेकिन वहाँ
3: भी आए बहन जी,
1: बहुत कठिन।

0: जीवन था।
1: हाँ, यहाँ पर भी आए और इसी वादे के साथ उन्हें सुरीनाम लेकर गए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, वो टोबैगो या पता नहीं ये त्रिनिदाद आदि में इसी लालच को देकर गए थे वहाँ पर।
0: सही कह रहे हैं आप। वहाँ पर भी कॉफी की खेती होती थी, कपास की, ककाओ की, तो उनको खेतीहर चाहिए थे ना। तो भारत जैसे मजदूर कहाँ से
1: मिलेगा? वो तो काम करने गए थे ना बहन जी, वो तो कैसे कहते हैं, वो तो आलसी नहीं थे, वो तो पैसे के लिए पता नहीं क्या करेंगे ना।
0: चलिए,
1: तो मैं ये कहूँगी बहन जी कि जैसे कि भोजपुरी है ना, तो आज अगर मेरे हमारे भोजपुरी जीवित है तो उसमें मुहावरा है, लोकोक्ति है, सोहर है, झूमर है, तो ये सब कहाँ अब मिलेगा बहन जी, उन्हीं की देन है ना। अब मान लीजिए सेगा, जैसे कि सेगा है, तो सेगा वो मैम वो एक क्रियोल थे, फिर भी उनके बदौलत अब सेगा जीवित है,
0: जीवित है, उन लोगों ने परंपरा को रखा, जीवित
1: अपने रखा, अपने परंपराओं को रखा है अब तक। तो इसी प्रकार हमारी जो भोजपुरी है, हमारी जो जड़ है, वो इंडिया से जुड़ी हुई है ना बहन जी। हमारे तीज त्योहार जो है, पूजा पाठ जो है, देवता देवी के जो गीत है, बिरहा है, जैसा है,
0: यहाँ तक ये देखिए जो हर परौरी है भारत में भी गाते हैं, इंद्र देवता की पूजा करते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ पर भी वो परंपरा है। बहुत
1: धन्यवाद
0: बहन जी।
1: तो आज ये सब लुप्त नहीं हुए बहन जी,
0: नहीं होंगे,
1: हमने बटोर
0: तो
1: कर रखा है,
0: बटोर लिया, छपने लगा, बच्चे गाने लगे, सीडीज बन गई है, अब रहेगा, एमबीसी के भी प्लेलिस्ट में आ गया है, अब रहेगा, चिंता ना करें।
1: हाँ बहन जी,
0: ठीक,
1: तो वो हो गया ना, हम तो सोनवा के पिंजरा में बंद हो गए हैं, हम पानी के पिंजरा में बंद हो गए बहन जी।
0: पानी
1: वो
0: का कहते हैं
1: ना, सोनवा के पिंजरा में बंद भल चिड़ैया, चिड़ै के जियावा उदास, आपको तो पता है ना।
0: बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद आपको।
0: चलिए हम एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो,
2: हेलो जी। हाँ
0: हाँ, क्या बोलेंगी आप?
2: हाँ, मैं रोशनवा से गमंती झिंगरी बोल रही हूँ।
0: हाँ गमंती जी, क्या सुनाएंगी
2: आप सबको? शक शक मेरा प्रणाम और नमन।
0: हमारी ओर से भी प्रणाम स्वीकार कीजिए
2: जी। बहन जी देखिए, अभी वो बहन जी ने कहा था ना,
0: जी,
2: तो मैंने मेरा बचपन की बैठका की बात याद कर ली।
0: सुनाइए।
2: मेरे पिताजी अध्यापक थे, 4 बजे से 6 बजे तक।
0: अच्छा।
2: हम विद्यार्थी थे और उस समय हम ऐसे पढ़ा करते थे, सिर्फ अब दो लाइन जोड़ देती हूँ।
0: जोड़िए।
2: हाँ, क क में कानून का, क क में हरसिंह की, क क में दुर्गिन की, क क में एकले के, क क में डुबस्कन्ना कौ, क क में मस्ते कंग, क में दुर्वासी कह।
0: वाह जी वाह,
2: ये 55 साल की है।
0: अभी तक आपको याद है?
2: हाँ जी,
0: बधाई हो, बधाई हो, आपकी स्मरण शक्ति
2: बहुत फर्स्ट क्लास है बहन जी।
0: बहुत धन्यवाद,
2: खुश हो गई आप, बहुत खुशी से मेरा लाइन मिल गया, मेरी बचपन का दो शब्द मैंने फिर से अपने हृदय में उतार ली।
0: बहुत धन्यवाद गमंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो,
3: हेलो,
0: नमस्ते,
3: नमस्ते जी, मेरी प्यारी जी,
0: क्या बात है
3: जी,
0: क्या बात है, बोलिए
3: प्यारी डॉक्टर जी, मैं बहुत खुश, आपकी हंसी में इतना मिठास है, बहुत
0: क्या
3: अच्छा
0: बात है, आपकी बात में मिठास है।
3: मैं हंस देती हूँ जब आप हंसती तो मैं भी हंस देती हूँ।
0: अरे और क्या चाहिए, आप भी हंस दे, मैं भी हंस दूँ, जिंदगी हंसते हंसते कट जाए।
3: हम लोग को यही चाहिए खुशी।
0: हाँ खुशी, बिल्कुल, हर काम के बाद खुशी होनी चाहिए।
3: हाँ, मैं मॉडलवे से बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी, संगीता जी, क्या संगीत मैं सुनाएंगी।
3: हमेशा अच्छा लगती है बात करने को, बात कर कर तब जाकर चाय पियेंगे।
0: चलिए सुनाइए कुछ।
3: लेकिन हम ही लोग नहीं भाग लेंगे तो कौन लेंगे।
0: अरे मैं तो आपका इंतजार करती हूँ संगीता जी।
3: हाँ, हिंदी में इतनी अच्छी, कितना सरल है हिंदी भाषा,
0: भोजपुरी भाषा,
3: यही सब ज्यादा हम लोग बात करती है
0: जी।
3: अच्छा है, हिंदी रामायण में है सब। हाँ, जितने गाना है सब, कितने फिल्म के गाना है।
0: हाँ,
3: सब तब तो हिंदी में है, अच्छा लगता है गाने को। गाती हूँ,
0: कभी गा के रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते भी हैं,
3: कभी नाचते, सब कुछ चाहिए हम लोग को भाई।
0: जी जी बिल्कुल।
3: एक गाना गाते हो राम का?
0: अरे संगीता नहीं गाएगी तो और कौन गाएगा,
3: कौन गाएगी।
0: चलो गाइए।
3: तेरा तेरा राम जी करेगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे,
0: काहे को डरे, काहे को डरे।

0: अरे डरे।
1: काहे को डरे काहे को डरे, तेरा राम जी करेगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे,
0: काहे को
1: नैया
0: डरे।
1: तेरे राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले, हरी आप ही उतारे तेरा बार, उदासी मन काहे को करे काहे को डरे, तेरा राम जी करेगी बेरा पार, उदासी मन काहे को, मेरा मेरा राम जी करेगी मेरा बेरा पार।
0: बेड़ा पार हो जाएगा यदि
1: हाँ
0: राम नाम को पकड़ लिया।
1: हाँ
0: बस
1: बहुत जल्दी से हम
0: बहुत धन्यवाद
1: गिर
0: संगीता जी इस
1: आपको
0: संगीतमय
1: भी
0: प्रस्तुति के लिए।
1: आप एकदम रानी मुखर्जी की तरह आवाज है,
0: क्या
1: इतनी
0: बात
1: अच्छा
0: है। चलिए अब एक और श्रोता को हम लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो अलका भवन,
0: नमस्ते जी
2: नमस्कार
0: नमस्ते।
2: जी। मैं कब से सुन रही हूँ आप, जो हमारे मित्र देश हैं हिंदी भाषी वाले,
0: जी
2: जो
0: जी सुरीनाम
2: सुरीनाम
0: वाले
2: गयाना
0: उसी
2: और
0: तरह
2: भी
0: से
2: जो है।
0: तकलीफें झेली हैं उन्होंने।
2: जी, एकदम मुर्शिदी की तरह,
0: हाँ
2: तो सुनकर
0: बिल्कुल।
2: रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे भी गिर मिटिया की तरह
0: हाँ,
2: उन्हीं की
0: जैसे ही
2: तरह ही
0: दास
2: है ना।
0: प्रथा खत्म हुई
2: जी
0: 1833 में, बस
2: हाँ,
0: इन लोगों का
2: तो
0: ध्यान तो
2: मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, मैंने कहीं एक पत्रिका में, मतलब
0: अच्छा
2: जो पढ़ी पढ़ी थी कभी, तो
0: सुनाइए
2: अभी मैं देख रही हूँ कि
0: सुनाइए।
2: सूरीनाम में जो, मैं थोड़ा रंगमंच पर बात करना
0: जरूर
2: चाहूंगी।
0: जरूर, अच्छा है, नई चीज
2: सूरीनाम
0: सुनेंगे।
2: में हिंदुस्तानी रंगमंच की जो उद्भव और विकास हुआ था, उस पर थोड़ी जल्दी जल्दी संक्षेप में मैं कुछ
0: सुनाइए सुनाइए,
2: सुनाना
0: स्वागत
2: चाहूंगी।
0: है आपका, सुनाइए।
2: हाँ, नाटक की उत्पत्ति तो मूलतः उसी दिन से हुई होगी जब किसी बालक ने खेल खेल में अपने में किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना की होगी। उसी दिन से यह कला निरंतर विकसित होती रही। पूर्व और पश्चिम के विद्वान वर्षों से इस विषय पर गवेषणा करते आ रहे हैं कि नाटक की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश और किस काल में हुई होगी। यद्यपि ये अलग चिंतन का विषय है, तथापि यह समझना आवश्यक है कि किसी देश के नाट्य इतिहास को इस देश के विकास, वास्तविक इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़कर ही समझा जा सकता है।
0: जी
2: तो मेरा कहना यह है कि सूरीनाम में जो हिंदुस्तानियों की नाट्य संस्कृति को समझने के लिए उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखना ही आवश्यक है।
0: हाँ
2: प्राचीन भारत में 1876 में जब सूरीनाम के लिए पहला जहाज लाला रुख चला, तो उस समय भारत में नाट्य कला, स्वांग व नौटंकी का विकास का हुआ था, काफी हो
0: जी
2: चुका था।
0: जी
2: भारत में अभिनय व रंगमंच का विकास वैदिक काल से ही माना जाता है, जिसका प्रमाण भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है।
0: जी
2: प्राचीन समय में भारत में धार्मिक अवसरों पर, सांस्कृतिक पर्वों और सामाजिक समारोहों में संस्कृत नाटक खेले जाते थे। जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो संस्कृत नाटकों का प्रथम मंचन प्रायः समाप्त हो गया। आधुनिक भारत में सन 1800 में इसका बहुत महत्व हुआ,
0: हाँ,
2: रंगमंच
0: तब
2: का,
0: भारतेंदु जी
2: नाट्य
0: आए।
2: सृजन हुआ
0: बिल्कुल,
2: ना।
0: भारतेंदु उतरे, उनकी नाट्य मंडलियां, इंदर
2: ये
0: सभा, बंदर
2: भारतेंदु
0: सभा।
2: हरिश्चंद्र का समय
0: जी
2: था, जिन्होंने सन 1868 से सन 1885 तक अपने जीवन में अनेक नाट्यों का सृजन किया,
0: जी जी
2: अनेक नाटकों को स्वयं अभिनय किया और अनेक रंगशालाएं निर्मित कराई और हिंदी रंगमंच की स्थापना का स्तुत्य प्रयास किया। तो जिस समय गिरमिटिया मजदूरों का पहला जहाज रवाना हुआ उत्तर भारत से, रामलीलाओं के अतिरिक्त भारत का आधारित महाभारत पर आधारित अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, सत हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र आदि नाटक तथा रूप, बसंत, अहीर रांझा आदि, बिलवा मंगल, नौटंकी खेली जाती थी।
0: जी
2: तो अंतिम जहाज में सूरीनाम पहुंचने पर भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले ठाकुर, भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ। उनके द्वारा किशोर अवस्था में ही भोजपुरी क्षेत्र में नाटक की परंपरा स्थापित की गई।
0: बहुत सुंदर।
2: हाँ,
0: तो बीना
2: यही
0: जी,
2: मैं बोला, इसमें तो
0: हाँ
2: बहुत सारी
0: बहुत
2: जानकारियां
0: चीजें हैं,
2: बहेंगी, मैं
0: लेकिन
2: सोचती हूँ मैं क्या बोलूँ और
0: हाँ
2: क्या
0: नहीं
2: न
0: बोल
2: बोलूँ
0: पाएंगे,
2: इतनी।
0: उतना
2: हाँ
0: समय कम है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं।
2: जी, तो
0: ठीक,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
0: हाँ
2: मुझे बहुत धैर्य
0: लेकिन
2: से
0: बहुत
2: सुना।
0: धन्यवाद।
2: तो
0: हाँ,

0: के लिए बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम करती रहे, हिंदी के विषय में जब होता है तो मन गदगद हो जाता
1: बहुत
0: है।
1: बहुत धन्यवाद
0: और
1: जी।
0: जैसे कि हम अपने को बहुत गर्व महसूस
1: हाँ,
0: होता है।
1: क्यों नहीं, आज आपने रंगमंच की तरफ दिशा ली, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। एक दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: तो मैं शुरू करें?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वागत है आपका।
2: अ आ इ ई उ सब ऋषियों की भाषा है, क ख ग घ अंग देवताओं की भाषा है। हिंदी की साहित्य धारा में सबसे संपन्न कहलाइए, धर्म समाज को छाया अपने दर्पण में यह दिखलाइए। वेद पुराण रामायण और उपनिषद में ज्ञान भरे, नर वो ही उत्तम ज्ञानी जो हिंदी का स्वाध्याय करें। काव्य कला संगीत इसमें जाने सफल संसार, कंप्यूटर में हिंदी भाषा सबसे बेहतर सजती है, शब्द अर्थ और ध्वनि इसके सबसे उत्तम जनी, गद गद पद और नाद कला भी इसके यश फैलाते हैं, उपनिषद कहानी कविता जन जन को हर्षाए हैं, हिंदी की महिमा हम गए करके यह जयकार।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई, बहुत धन्यवाद, आपको शुभ संध्या। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4028085 पर। चलिए एक गीत सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लुडोविक जी आपके लिए एक गीत डालेंगे।

सचमुच श्रोताओं, कितना दुख था, लेकिन धरती और अंबर तो अपने थे ना। चाहे वो मॉरिशस था या सूरीनाम, जमीन और आसमान तो अपने थे। जमीन पर सो सकते थे और आसमान में रात को तारे गिन सकते थे। चाहे झोपड़ी थी, लेकिन फिर भी झोपड़ी की जगह तो थी। तो श्रोताओं, बड़े कष्ट के समय काटे उन्होंने। सचमुच 1833 में, जब पूरी दुनिया में दास लोग बड़े खुश थे कि दास प्रथा खत्म, लेकिन मालिकों का संघर्ष अब बढ़ने लगा था। उनके लिए बड़ा ही संकट का दौर था। सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद, मॉरिशस, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश शासक थे, अब समस्या थी काम कौन करेगा। और श्रमिकों का अभाव होने लगा, काम ठप होने लगा, क्योंकि अब दासों की खरीदना बेचना, ये जो खरीद फरोख थी, ये बंद हो चुकी थी। इस समय इन लोगों का ध्यान एशिया की तरफ गया, और उसमें भी भारतीय किसान और मजदूर, जिसने

दर पीढ़ी खेती का ही काम किया था, तो ये स्किल्ड लेबर थी, उसको खेती की छोटी छोटी चीज़ें पता थी। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ से उनको लाया जाए। तो 1870 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया और हॉलैंड के सम्राट विलियम तृतीय के बीच एक समझौता हो गया। मॉरिशस में तो 1834 में एटलस जहाज से पहले लोग आए थे और पहली 16 सीढ़ियां उन लोगों ने चढ़ी थी। 36 लोग उसमें भारत से थे, लेकिन अब भारत से सूरीनाम के लिए भी बिल्कुल वही पुरानी दास प्रथा को एग्रीमेंट का नया कपड़ा पहनाया गया और कहा गया कि भाई चलो वहाँ पर, हमने तुम्हारे लिए एक डिपो खोला है, काम मिलेगा। कहा ये कि डच एजेंट जो थे वे कलकत्ता में उन्होंने अपने डिपो खोले और फिर अपने लोगों को अलग अलग गांवों में भेजा, जैसे गोरखपुर, इलाहाबाद के गांव, बनारस के आसपास, मथुरा के आसपास सब डिपो खोले और अपने एजेंट वहाँ बिठाए, क्योंकि इनके एजेंट को पर गिरमिटिया के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब वहाँ पर ये कहा गया कि देखो समुद्र के बीचों बीच एक श्री राम द्वीप है। मॉरिशस के लिए तो मारिच द्वीप था, उनसे कहा गया श्री राम द्वीप है, सब कुछ होगा, चलो वहाँ धन कमाने के लिए। बस श्री राम का नाम, धर्म की प्राप्ति और फिर पैसे मिलेंगे। यह सोचकर बेचारे गरीब, अनपढ़, लुटे पिटे, जिन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने अत्याचार थे, 410 लोग जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से थे, कलकत्ता डिपो लाए गए और 26 फरवरी, 26 फरवरी और 1873 को लाला रुख पहला जहाज रवाना हुआ। फिर वही कहानी, मौसम खराब, अनेक कठिनाइयाँ, 3 महीने की समुद्री यात्रा। श्रोताओं, जिन लोगों ने कभी जीवन में समुद्र देखा ही नहीं और वे 3 महीने रात दिन समुद्र यात्रा करें, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत हुई होगी। और तब ये लोग 26 फरवरी के निकले हुए 5 जून को पारामारिबो पहुँचे और सूरीनाम पर पहला कदम रखा गया। और इसके बाद 64 जहाज और 34,304 भारतीय मजदूर, गिरमिटिया मजदूर यहाँ पर पहुँचाए गए। वही कहानी थी जो यहाँ मॉरिशस की कहानी थी, वहाँ पर भी उसी तरह के दुख दिए गए। कहने को वे गिरमिटिया थे, लेकिन दासों से बदतर उनकी जिंदगी थी। पर हिम्मत होती है ना, वह जो हिम्मत होती है वह आदमी को आगे बढ़ाती है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र, इनका ध्यान उनको था, बस इसको वे बचा रहे थे। रात की बैठकाएं शुरू हो गई थी। इन बैठकाओं में वे जहाँ रोते थे, हंसते थे, गाते थे, नाचते थे, वहीं पर कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ रामायण के, कुछ गीता के, कुछ राम के, कुछ कृष्ण के आपस में सुनाते थे। और बस धीरे धीरे हिंदी इन्हीं लोगों के सहारे आगे बढ़ने लगी। कभी कभी तो वे तोता मैना की कहानियाँ या अपने गाँव के किस्से, यह भी आपस में बांटते थे। अब वहाँ पर भाषाएँ भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली, तो सब अलग अलग तरह की बोलियाँ थी। तो धीरे धीरे एक भाषा में वे लोग बात करने लगे और वह भाषा थी हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी में वहाँ का काम आगे चलता गया। उन दिनों की याद करके अमर सिंह रमण, वहाँ के जो एक कवि हैं, वे कहते हैं कि जब याद करता हूँ तो आँखों में पानी आ जाता है। अरकाटी चाल, अरकाटी मतलब जो एजेंट था उसको ये लोग अराकाटी कहते थे। वही दिनवा जब याद आवेला, अखियां में भरेला पानी रे, हिंदुस्तान से भागकर आईली, यही है अपनी कहानी रे, भाई छूटा, बाप छूटा और छूटी महतारी रे, अरकटिया खूब भरमावली से कहिए, पैसे कमाएब भर भर थारी ले। तो देखिए वही धोखा, वही उसी तरह से उनको भी बहलाया गया और उनको ये सारे दुख मिले। तो चलिए गीत सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

और श्रोताओं, जिंदगी वहाँ आगे बढ़ती रही। संध्या के समय जब वे इकट्ठे बैठते, 1918 तक बहुत ही दुख दर्द था वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ भी समझिए, जब तक मनीलाल डॉक्टर आए थे 1901 तक तो होश ही नहीं थी कि हम भी इस देश के अंग हैं। जब गांधी जी ने कहा कि भाई आपने इस देश के लिए इतना किया, इस टापू के लिए, यह टापू तो किसी का था ही नहीं, तो आपका ही है, जागो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, राजनीति में सक्रिय भाग लो, तो 1907 में जब मनीलाल आए, परिवर्तन देखिए शुरू हुआ। तो वहाँ पर भी 1918 तक महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, बस यही कहानियाँ सुनाते, कभी कभी गांधी जी की बात करते, विवेकानंद के बारे में, दयानंद जी के बारे में, मतलब सूरीनाम में मौखिक साहित्य 1918 तक रहा। गीत वहाँ लिखे जाने लगे और गीतों में जिंदगी की, और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको वे कहते थे कंत्राकी, तो कॉन्ट्रैक्ट से जो लोग लाते थे उनके बारे में कि कैसे हमको बहला फुसला के लाए, कभी भारत के बारे में, कभी अपनी रोजी रोटी, कभी बच्चों के दुख सुख, ये सब कुछ वो आपस में बैठ के मौखिक रूप से बात करते रहे। लेकिन उस समय लिखने का कुछ नहीं था, कभी दोहा, कभी चौपाई, ये सब गाते, लेकिन उस समय का गिरमिटिया गीत जो है वो श्रुति परंपरा से जीवित रहा, तो बाद में उसको छापा गया। आज मैं कुछ उस गीत की पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूँगी। सुमिरन करके नारायण के, ले बजरंग बलि के नाम, कथा बखानु सूर्य नाम को, जिन पर हमको है अभिमान। कलकत्ता से भर्ती होकर सूर्य नाम में पहुँचे आए, उतर गए तब यही देसवा में, डिप्पू में दिए भात

0: खवाए। रोज सवेरे मंझा साहब सबको हुक्म दिया फरमाए, हाथ में दे के कटली सब्बल पर नासी में पहुंचा जाए। जंगल काट के साफ किए, कॉफी ककाऊ दिए तुड़ाए, चूटी चूटा काटन लागे, देखो माई बाप चिल्लाए। 5 बरस के गिरमिट काटे, फिर ले बहुत मुसीबत आए, 5 बरस के अंत में भैया रूज फेल्ट कहे दांत ठियाए। अपने दिसवा लौट न जई हो, मानो बतिया आज हमार, बीघा काट खेत कई दिन ही 100-100 रुपया दिए पकड़ाए। लौटने वाले लौट गए और रहने वाले यहाँ रह जाए, जंगल काट के कॉफी लगाई, गट्टा बाना दिए लगाए। धान की खेती कर दिखलाई, लड़की लड़का दिए पढ़ाए, कोई मांझा कोई कमिश्नरिस कोई इंस्पेक्टर हो जाए, कोई वकील कोई जज और कोई पार्लियामेंट में बैठा जाए, भारत माता की औलाद सूरीनाम में सुखी बनाए। बार बार शिव बालक चेतावे, धर्म न छोड़ियो अपना भाई, धर्म न छोड़ियो अपना भाई। बस श्रोताओं, धर्म न छोड़ियो अपना भाई, यही गिरमिटिया पूर्वजों का संदेश इन सभी देशों में रहा, और हम सब जितना अपने धर्म को पकड़ेंगे उतना ही अपनी पहचान को जिंदा रखेंगे। तो बस इसी के साथ मुझे और लुडोविक को अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ संध्या।
1: अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए।

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है। अरे लो ना कंबल, सभी कोई जिद है।
1: और तुम?
0: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
1: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
0: कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है, कोई शक?

0: एबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: प्रोग्राम साहित्य दर्पण डॉक्टर अर्का धनपत जी द्वारा आप सुन रहे थे।

0: अत्य दर्पण जो करे जीवन से कराए जीवन से दर्शन, 5:01।
1: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी।
0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपसे एक और मुलाकात के लिए तो हम कब से थे बेताब। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं M2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और शनिवार की है ये मनभावन शाम, ऊपर से खेल खिलाड़ी प्रोग्राम, बस करना है आप ही लोगों के नाम। और आज का जो विषय है वो क्या होने वाला है, भले मानस जुलाई महीने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जुलाई महीने में ऐसे बहुत अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, यूनाइटेड नेशंस की ओर से घोषित किए गए हैं, जो मनुष्य को किसी मुद्दे को लेकर सचेत करते हैं। उदाहरण के तौर पर आज विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वैसे ही जुलाई महीने में ऐसे ही और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, बारी बारी करके हम आपको बताएंगे गानों के साथ और बेशक प्रश्नों के साथ। तो चलिए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। जी हाँ, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस। आपको बताना पड़ेगा कि जुलाई महीने की किस तिथि को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, तो आप जरा 4028085 पर सोच के हमें बताइए कि जो युवा कौशल दिवस है वो हम किस तिथि को मनाते हैं। 4028085, तब तक आप इस गाने को सुने, बहुत ही सुंदर सा जागृति फिल्म से लिया गया।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

नौजवान तू आगे बढ़, तू आगे चल, इरादा न बदल, मन तेरा रख अटल। जागृति फिल्म का गाना अमित कुमार साहब की आवाज में सलमान पर फिल्माया गया। बड़ा ही प्रेरणादायक गाना है और नौजवानों को ये गाना सुनकर आगे बढ़ना है। और हमने सवाल किया था कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस तारीख को मनाया जाता है जुलाई महीने में। किसी ने कहा 12 अगस्त, वो तो वर्ल्ड यूथ डे है, विश्व युवा दिवस। लेकिन हमने कहा विश्व युवा कौशल दिवस यानी यूथ स्किल्स। जी हाँ, युवा हमारे देश का भविष्य है, पर युवा की प्रगति में युवा के रोजगार के लिए कौशल होना अनिवार्य है, स्किल्स। उनके पास जो स्किल्स हैं, जो अनुभव है, जो क्षमता है, वो होनी चाहिए। और सही जवाब है 15th of July, यानी 15 जुलाई इज द राइट आंसर। और सही जवाब दिया ट्रियोले के धीरज भाई ने और अनीता जी फ्रॉम मोदाबेया।

चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला गाना भी आपके लिए हमें तो चलाना है। आपको हमें बताना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ मून है, जो 20 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। जरा आप ठंडे दिमाग से बताइए कि क्यों इसी तिथि को 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है, बताइए हमें। 4028085 पर प्लीज हमें आप लोग बताएं कि केवल 20 जुलाई को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मून।

0: डे केवल इसी तारीख को क्यों मनाया जाता है? 4028085 4028085.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.

मिलके बातें करेंगे, दिल से आहें भरेंगे, चंदा रे चंदा रे कभी तो जमी पर आ। साधना सरगम जी और हरिहरन जी की आवाजों में सपने फिल्म का गाना, 1997 में रिलीज हुई फिल्म काजोल और प्रभुदेवा पर फिल्माया गया ये गाना। और हमने आपसे ये सवाल किया था कि 20 जुलाई को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि उसी दिन को पहली बार के लिए नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन ने कदम रखा था पहली बार के लिए चंद्र पर, यानी चांद पर। इसीलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, और 20 जुलाई 1959 को, यानी 69 को, यानी 1969 20 जुलाई को नासा के जो अपोलो 11 है उनका जो मिशन है वो इतिहास रच दिया। और नील आर्मस्ट्रांग ने खुद कहा था कि ये केवल एक छोटा सा कदम है मनुष्य का, परंतु एक बड़ा सा कदम है मानवता के लिए। और 2021 में, यानी 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये पारित किया था कि 20 जुलाई को घोषित किया जाए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल। और सही जवाब दिया देवी जी फ्रॉम हाईलैंड्स, संध्या जी फ्रॉम पोयटोपीमो, स्वस्ति बहन फ्रॉम कटरबोन और लीला जी फ्रॉम वाशिगी।

चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ओर और 29th of July यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। जी हाँ, 2010 में यानी 29 जुलाई 2010 को एक टाइगर समिट हुआ था। हाँ जी, उसी दिन से यह दिवस शुरू हुआ यानी टाइगर, इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उसी तारीख से, उसी साल से शुरू हुआ। और ये क्यों हुआ? बाघों के संरक्षण के लिए और सभी को जागरूकता, सभी में जागरूकता फैलाने के लिए बाघों के जो घट्टे आवास को देखते हुए और शिकार को रोकने के लिए ये टाइगर समिट लगा था। आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये किस देश में लगा था 2010 में। 4028085 पर 4

0: 02805 पर प्लीज हमें बताइए कि ये जो टाइगर समिट लगा था 2010 में वो किस देश में लगा था, और आप को बताना पड़ेगा 4028085 पर।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
0: और ऐसे में तो बनता है कि टाइगर जिंदा है फिल्म का गाना आपके लिए हम चलाएं।

दिल दिया गल्ला। आतिफ असलम की मधुर आवाज में टाइगर जिंदा है फिल्म का गाना सलमान पर पिक्चराइज और कतरीना कैफ पर भी। 2010 में एक टाइगर समिट लगा था लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो बाघों की संख्या है दुनिया भर में

0: घटती जा रही है, घटती जा रही है। और ये समिट किस देश में लगा था? 29 जुलाई को इसी तारीख को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और सही जवाब है रूस यानी रशिया। और सही जवाब दिया इंद्राणी जी फ्रॉम निस्कालिये, स्वस्ति बहन गेन फ्रॉम कटरबोन और बुबासे से हरीश भैया। चलिए थोड़ी देर में इस सेगमेंट से हम निकलकर दूसरे सेगमेंट तक जाएंगे जहां पर आपके लिए स्पेशल वर्ल्ड कप पर आधारित प्रश्न होंगे। जाते जाते आपको बता दें कि जुलाई महीने में और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जैसे 2 जुलाई को, 2 जुलाई को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस है, 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस भी है, 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस, मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इसी पर आधारित ये मुझसे दोस्ती करोगे वाला गाना सुनिए, तो थोड़ी देर में फिर से आप हमसे मिलेंगे।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxis.
1: इतने हम चाव से यहाँ पर आते हैं, इतने प्यार से आते हैं, आप लोग सोच के बताएंगे आप लोग मुझसे दोस्ती करेंगे? नहीं नहीं, झट से आप लोगों को दोस्ती करनी पड़ेगी हमसे। और 5:29 हो गए।
2: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी।
1: प्यारे देवी और सज्जनों, खेलकूद प्रेमियों, म्यूजिक लवर्स, एक बार फिर आप लोगों का हम यहां पर शानदार स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और इस दूसरे सेगमेंट को हमने नाम दिया है मेरा सवाल तेरा कमाल। और इस सेगमेंट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे केवल और केवल वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। अभी तो वर्ल्ड कप का समा छाया हुआ है विश्व भर में, तो क्यों ना हम इसी बहती गंगा में डुबकी लगाएं? स्पेशल वर्ल्ड कप 2026 परिश्रम और पराक्रम का मिक्स, फुटबॉल का अनोखा गेम, वर्ल्ड कप का नेम और फेम। और जब हम फुटबॉल की बातें करते हैं तो ये तो बनता है ये शोर, सुनिए। मैदान में स्पेक्टेटर्स का जो

शोर है, बहुत ही बढ़िया है। पहली बार के लिए एक वर्ल्ड कप में 48 देश, यही तो है सबसे विशेष। 48 टीमों में से 48 देशों से शुरुआत हुई, अब बचे हैं केवल 6 टीम्स, यानी 6 टीम्स। सेमीफाइनल के लिए फ्रांस और स्पेन तो क्वालिफाई हो गए हैं और एक दूसरे से वो टक्कर लेंगे फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। माउथ वाटरिंग मैच होगा, क्या जबरदस्त धमाकेदार मैच होने वाला है। एक तरफ एम्बापे और डेम्बेले, तो दूसरी तरफ है वहां पर यमाल और ओयो जबाल।

0: ये दो टीम्स सेमीफाइनल में आ गए हैं और चार टीम्स हैं अभी। नॉर्वे इंग्लैंड जो आज खेलेंगे, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड यानी हालैंड वर्सेस हैरी केन। एक तरफ है अर्लिंग हालैंड और ओडेगार्ड जो इंग्लैंड में ही खेलते हैं। हालैंड मैनचेस्टर सिटी में खेलता है और ओडेगार्ड आर्सेनल का खिलाड़ी है और दोनों को बखूबी पता है इंग्लिश फुटबॉल। ये इंग्लैंड का कोई सीधा साधा मैच नहीं होने वाला है। कहीं अर्लिंग हालैंड ब्राजील की तरह इंग्लैंड को भी दिन में तारे न दिखा दे। और जो और दो टीम्स हैं जो कल खेलेंगे, स्विट्जरलैंड वर्सेस वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना। ये भी एक बड़ा ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। तो केवल छह टीम्स हैं, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड। नॉर्वे और इंग्लैंड में से आज कौन बाहर हो जाएगा और कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा, ये देखना पड़ेगा। आज अपने टीवी सेट पर आप देखिए या एमबीसी प्ले डाउनलोड तो आपने कर लिया होगा, एमबीसी प्ले पर भी आप देख सकते हैं सुबह के 1 बजे। और कल का जो मुकाबला है अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, दुर्भाग्यवश किसी एक को जाना पड़ेगा और किसी एक को क्वालिफाई भी होना पड़ेगा। और आपने तो देखा अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट वाला मैच कितना विवादास्पद मैच था, कंट्रोवर्शियल मैच, कितना क्रिटिसिज्म हुआ फ्रेंच रेफरी के लिए। हमने स्विट्जरलैंड का नाम लिया, आपको हमें बताना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड जो है एक बार वर्ल्ड कप का आयोजन स्विट्जरलैंड ने किया था, वो किस साल में। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, किस साल में स्विट्जरलैंड ने एक ही बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, वो किस साल में था। 4028085 पर आप लोग जवाब दें प्लीज।
1: 819 kHz. This is Radio Mauritius.

जी, हमने सवाल किया था कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक बार वर्ल्ड कप का आयोजन उन्होंने किया था और वो किस साल में था। और सही जवाब है 1954। जी हाँ, 1954 में। और उस साल में हंगरी खूब तहलका मचा रहा था। पुस्कास नाम का एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी था, लेकिन किसकी जीत हुई अंत में? जर्मनी। तब वो वेस्ट जर्मनी था। 1954 में स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। और सही जवाब दिया धीरज भाई ट्रियोले से, लिस्कालिए से इंद्राणी जी, इंदिरा जी मेबर्ग से, वंदना जी रॉसबेल से और इंग्लैंड से वंशिनी जी। क्या बात है, इंग्लैंड से भी आप फोन कर रही हैं, बहुत धन्यवाद आपको। लगता है कि आप लोग इंग्लैंड के जबरदस्त फैन हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगी कि वो इंग्लैंड को जिता दें। लेकिन वर्ल्ड कप मेहनत से जीता जाता है और प्रार्थना से भी। जीत शब्द पर मुझे याद आया कि अगले सप्ताह जो है लाइव एंड डायरेक्ट वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन होगा एमबीसी स्टूडियो में। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्विज कंपटीशन, केवल वर्ल्ड कप के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे और पुरस्कृत भी होंगे। दिलचस्प इनाम रखे गए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज भेजिए 5886-4294, 5886-4294। इस नंबर पर आप लोग अपना मैसेज भेजिए, अपना नाम और पता, और आप वर्ल्ड कप लिखिए, हम आपसे संपर्क रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न वर्ल्ड कप के बारे में ही। आपने वो बड़ा ही जबरदस्त मैच देखा होगा इस वर्ल्ड कप के दौरान, 8 फाइनल में इंग्लैंड वर्सेस मेजबान टीम मेक्सिको। ये एस्टाडियो अज़्टेका में खेला गया, बड़ा ही लाजवाब स्टेडियम है वहां पर। आपको हमें बताना पड़ेगा कि इस मैच में स्कोर क्या रहा।

0: मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच में स्कोर क्या रहा आपको हमें बताना पड़ेगा 402-808-5-80-85
1: पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ साथियों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और वर्ल्ड कप स्पेशल चल रहा है। सवाल किया था हमने कि वहां पर स्टेडियो अज़्टेका में मेक्सिको में इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको स्कोर क्या रहा। इंग्लैंड 3 मेक्सिको 2। इंग्लैंड को रेड कार्ड भी दिया गया और उसके उपरांत हैरी केन ने तीसरा गोल दागा, लेकिन इससे पूर्व जूड बेलिंगहम ने 2 गोल्स स्कोर किए। क्विनोनेस और पेनाल्टी पर राउल जिमेनेज ने भी मेक्सिको के लिए स्कोर किया। बहुत ही सुंदर सा मैच रहा और इंग्लैंड जीत कर क्वार्टर फाइनल में, और आज इंग्लैंड की टक्कर हो रही है नॉर्वे के खिलाफ। आपको याद है वही वही वही स्टेडियम है एस्टेडियो अज़्टेका। 40 साल पहले इसी स्टेडियम में 2 घटनाएं घटी थी और सभी लोग याद करते हैं उस दिन 22 जून 1986 को। 40 साल हो गए। 22 जून 1986 को सभी लोग याद करते हैं क्योंकि उसी स्टेडियम में इंग्लैंड ने खेला था, लेकिन मेक्सिको के खिलाफ नहीं बल्कि अर्जेंटीना के खिलाफ, और वो भी डिएगो आर्मांडो माराडोना का अर्जेंटीना था जो बाद में चलकर चैंपियन

फ्रांस बनती है 1986 के वर्ल्ड कप के चैंपियंस, और उस मैच के दौरान होता है क्या, हैंड ऑफ गॉड, बिल्कुल माराडोना हाथ से गोल डालता है लेकिन रेफरी नहीं देख पाता है और ये गोल काउंट हो जाता है, और उसके बाद गोल ऑफ द सेंचुरी यानी माराडोना 5-5 इंग्लैंड खिलाड़ियों को ड्रिबल करके गोल डालता है और स्कोर हो जाता है 2-1, और अर्जेंटीना की जीत, सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ जीत और फाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-2 के स्कोर से जीत, और चैंपियंस बनती है अर्जेंटीना।

और 40 साल बाद इंग्लैंड मेक्सिको के साथ इसी स्टेडियम में खेलता है और जीतता भी है। और अभी इस वर्ल्ड कप 2026 में जो टॉप स्कोरर है वो दो है, यानी किलियान एम्बापे फ्रांस का खिलाड़ी है और अर्जेंटीना का खिलाड़ी लियोनेल मेसी, दोनों ने 8-8 गोल स्कोर किए हैं और गोल्डन बूट अवार्ड के लिए एकदम तत्पर हैं दोनों। और पीछे आता है 7 गोल लिए अर्लिंग हालैंड। क्या अर्लिंग हालैंड आज इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर कर पाएगा या नहीं, देखने वाली बात है। और 6 गोल के साथ हैरी केन आता है, क्या वो आज स्कोर कर पाएगा या नहीं, लेकिन एक को तो आज एलिमिनेट होना पड़ेगा और एक को क्वालिफाई होना पड़ेगा। और ऑल टाइम टॉप स्कोरर मिरोस्लाव क्लोजे का जो रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी ने तोड़ डाला है और किलियान एम्बापे ने भी तोड़ डाला है। अभी तक कुल मिलाकर मेसी के पास सब वर्ल्ड कप में 21 गोल्स हैं और एम्बापे के पास 20 गोल्स, और मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है और एम्बापे तो जवान है, वो और खेलेगा अभी। तो चलिए आप हमें बताइए, प्रश्न आपके लिए है कि कौन सा वो देश, कौन सा नहीं बल्कि जो खिलाड़ी है, फ्रांस का खिलाड़ी है जो 1958 में स्वीडन में जब ये वर्ल्ड कप लगा था तो एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने कितने गोल स्कोर किए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अभी लियोनेल मेसी और एम्बापे ने 8 गोल स्कोर किए हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी तोड़ा नहीं है, वो है फ्रेंचमैन जुस्ट फोंटेन। उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में, एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल अब तक स्कोर किया है और इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। बताइए हमें कितना गोल्स उन्होंने स्कोर किया था 1958 में स्वीडन में ये वर्ल्ड कप लगा था। जल्दी जल्दी 402-808-5

0: परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको अपना यार मिल जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों को जवाब मिल गया। हमने सवाल किया था कि एक ऐसा खिलाड़ी है, फ्रेंचमैन खिलाड़ी जुस्ट फोंटेन, जो 1958 में जब वर्ल्ड कप स्वीडन में लगा हुआ था, ये आयोजित हुआ था वहां पर, तो उन्होंने बहुत गोल स्कोर किए थे और उसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं, चाहे वो ब्राज़ील का रोनाल्डो हो, जर्मनी का मिरोस्लाव क्लोजे हो, या फिर लियोनेल मेसी हो, या किलियान एम्बापे, किसी ने अब तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। कितना गोल्स उन्होंने स्कोर किया था? सही जवाब है 13 गोल्स। और सही जवाब दिया इंदिरा जी फ्रॉम मदालबे, और साथ ही साथ दिला जी फ्रॉम मौलाशो। एक अंतिम सवाल वर्ल्ड कप के बारे में, जो अफ्रीकन टीम्स जिन्होंने भाग लिया था यहां पर, उनका निकनेम्स क्या है, इसके बारे में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि हम ले लें साउथ अफ्रीका, तो उसका निकनेम जो लोग बुलाते हैं उसे, वो कहते हैं ले बफाना बफाना। जब हम ले बफाना बफाना सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये साउथ अफ्रीकन नेशनल फुटबॉल टीम है। जब हम सुनते हैं ले जिलेफों तो हमें पता चल जाता है कि ये कोट डिवोर का टीम है, और जब हम सुनते हैं द अटलास लायंस तो हमें पता चल जाता है कि ये मोरक्कन टीम है। आप हमें बताइए कि जब हम ब्लू शार्क्स कहते हैं, हाँ जी ले रिकन ब्लू, तो किस टीम, किस अफ्रीकन टीम के बारे में हम सोचते हैं? तब जब हम कहते हैं द ब्लू शार्क्स तो किस टीम की याद हमें आती है? 402-8085-402-8085।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

तेरे नाल मैं विसल बजाऊंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों ने दे दिया। हमने सवाल किया कि किस अफ्रीकी टीम को हम उनके जो खिलाड़ी हैं उनको कहते हैं द ब्लू शार्क्स। सही जवाब है पहली बार के लिए जो टीम ने सेंसेशन पैदा किया था, कब वर्डे, जिसमें वो गोलकीपर बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, बोजिनिया। और पिको लोपेस जो डिफेंडर था बहुत ही प्रभावशाली। सही जवाब दिया मौलाशो से दीना जी, धीरज भाई फ्रॉम ट्रियोले और वाकवा से शोभा जी। और इसी के साथ खेल खिलाड़ी प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। जिन लोगों ने भाग लिया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों की लाइन नहीं लगी हम क्षमा प्रार्थी हैं, अगले बार आप फोन करें और भाग भी लें।

और याद रहे कि अगले सप्ताह हम डायरेक्ट एंड लाइव क्विज कंपटीशन करेंगे स्पेशल एक्सक्लूसिव वर्ल्ड कप पर। और अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो 5886-4294 पर अपना मैसेज भेजिए, हम लोग की ड्रो करेंगे और आपको बुलाएंगे यहाँ पर। और अच्छे अच्छे इनाम रखे गए आप लोगों को के लिए, और इस वर्ल्ड कप का मजा और लीजिए आप, भूलिएगा नहीं। आज है नो वे वर्सेस इंग्लैंड और कल है अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। आप व्यायाम कीजिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए और कीजिएगा शाइन, तब तक हमें आप अनुमति दें। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे है। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू होने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज पौड़ी में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मिशनों ने भाग लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। मॉरिशन लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट घट रहा है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है, और विशेषज्ञों का

0: मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं और इसलिए सभी का सतर्क रहना आवश्यक है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी की कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है और 9 लाख से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज मारियन दे ला पे सामाजिक केंद्र से कंपनी गार्डन यानी जार्डिन दे ला कंपनी तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुरशनों ने भाग लिया। लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और उन सुधारों का विरोध दोहराया जिन्हें वे मौजूदा सामाजिक सुविधाओं के लिए नुकसानदेह मानते हैं। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: आवाजें ऊंची हुई, राजधानी की सड़कों पर नारे गूंजे, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग, किसी भी रूप में पेंशन सुधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई श्रमिक संघों द्वारा इस शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया गया।
2: Le démantèlement de pension de la vieillesse définitivement amène une mobilisation en général dans le pays.
3: Toujours une amende floue, une amende question qui peut poser. Beaucoup de gens ont un petit peu de confusion entre pension et PPF. Ils demandent que la pension reste universelle, que l'État, pas tous l'État-providence, et que tout le monde bien qui nous finit acquis, n'est pas rassé depuis nous l'armée.
1: रैली में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए अपना समर्थन देने के लिए।
4: Moi, un sentiment obligé venir aujourd'hui. Je peux pas reconnaître valeur le peuple mauricien. Et Nadimoun actuellement, pas peur ici joindre les deux bouts. Nous, le peuple mauricien, nous pas mérite ça.
5: Actuellement, il a annoncé que justement, je retourne pension à 60 ans et que je peux faire un réajustement. Qui vous sentiment?
6: Sa politique pension, la partie de la budget, si vous avez fait ça, elle le débat national élargi. Et là, dis-moi, tu vous comprends. Et vous pensez que le gouvernement, vous allez revoir tout ce système, vous mettez sa pension là, dans le débat consensuel pour la population.
1: वहीं कई ऐसे लोग सवालों के साथ आए जो बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं।
7: Moi, pour gagner 56 ans, là. Mon fini mettement doute mon pas connait qui peut réserve moi qu'il a venu pour une an nous cause zenes nous cause l'autre oui et n'a pas parents là tout peut travailler peut faire sacrifice pour nos enfants puis c'est pas le moment quand il gagne 60 ans là qui parle rassa au lit vous êtes retourne nous pas au normal.
1: ये विरोध मात्र एक दिन का नहीं बल्कि भविष्य का भी है। प्रदर्शन में शामिल कई युवाओं का मानना है कि ये सुधार आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगी।
8: Je suis ici pour combattre pour notre propre droit et ainsi pour les droits des vieilles personnes aussi.
9: God, le système de pension comme il était même à plus loin des man 55 ans et au maré content une tâche bonne comme ça.
1: ये नागरिक अपनी असहमति जताने और अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। उनका संदेश साफ है, एक सामाजिक अधिकार की रक्षा करना, उन फैसलों के प्रति अपनी चिंताओं को सामने लाना जो उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब बैनर समेट दिए जाएंगे, नारे शांत हो जाएंगे, तब भी एक तस्वीर बनी रहेगी, एक साथ खड़े उन मॉरिशनों की तस्वीर जिन्होंने ये याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि नागरिकों की आवाज से भी बुलंद होता है।
0: समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान नई पेंशन प्रणाली पर स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने खासतौर पर दोहराया कि मिशनों के पास 60 साल की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प बना रहेगा, हालांकि मिलने वाली रकम कम होगी और

0: उसका हिसाब एक एक्चुअरियल मेकानिज्म के आधार पर किया जाएगा।
1: समाज सुरक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु से मिलने वाली संशोधित पेंशन सभी मर्शनों के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मंत्रियों और जूनियर मिनिस्टर कुगन पगापेन तथा धनेश्वर दामरी की मौजूदगी में अशोक सुभो ने नई पेंशन व्यवस्था की रूपरेखा पर जानकारियां दी। कुगन पगापेन ने विस्तार से बताया कि ये सुधार कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 60 वर्ष की आयु से अपना पेंशन लेना चाहेंगे।
2: Ce principe de transition là, il y a encore là. Mais qui ajouté maintenant dans le SAP, c'est que cette personne qui sur l'anniversaire à 60 ans le 1er janvier 2027, il pas nécessairement besoin attendre le 1er janvier 2029 pour être capable d'être éligible au SAP. Le premier jour à l'âge de 60 ans, il a le droit de décider s'il a envie qu'il touche ce SAP. Bien sûr, vu qu'il décide pour prendre lui 2 ans en avance, ce qui était prévu, et aujourd'hui de 15 555, il peut gagner un SAP de 13 688 roupies. On assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuelle chaque année. Nous trouvons que cette personne-là, à janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il y peut gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passer à 14 663. Quand il peut avoir 62 ans, c'est 15 176. Quand il peut avoir 63 ans, c'est 15 707. Quand il peut avoir 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il peut gagner à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui déjà prévoit dans la loi par rapport à CSG, 1 000 roupies additionnelles. Et là, il peut gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence le 14 167, il termine le 17 826. Donc, cette personne-là, quand il peut gagner sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il peut rester sur ce chiffre-là. Et aussi, chaque année, quand il a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela.
1: साथ ही समाज सुरक्षा मंत्रालय जल्द ही आम जनता के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी भरकर अपनी अनुमानित पेंशन की राशि आसानी से जान सकेंगी।
0: मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़े बदलाव हो रही है। मॉरिशन लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट यानी जन्म दर घट रही है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ज़रा जानकारी आस्था गोविंद चिदामन के साथ।
1: मॉरिशस की जनसंख्या धीरे धीरे बदल रही है। जन्म दर में लगातार गिरावट, लोगों की बढ़ती आयु और बदलती जीवन शैली के कारण देश की आबादी की संरचना बदल रही है। डॉक्टर क्रिस वालाइडो ने बताया, आमतौर पर किसी देश की आबादी को संतुलित बनाए रखने और उसके लगातार बने रहने के लिए हर 100 महिलाओं पर लगभग 210 बच्चों का जन्म होना चाहिए, लेकिन मॉरिशस में ये संख्या केवल करीब 140 है। हर साल हमारी आबादी लगभग 1000 से 3000 तक कम हो रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहने की संभावना है। मेरा मानना है कि अगले 30 से 40 वर्षों में मॉरिशस की आबादी करीब 2 लाख तक कम हो सकती है। इस बदलाव का पहला असर रोजगार के सेक्टर पर पड़ेगा। कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या लगातार घटने की आशंका है। इसका मतलब ये भी है कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम होगी, जबकि पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टरों पर खर्च बढ़ता रहेगा। 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले कामकाजी लोगों की संख्या 2022 से लगातार घट रही है और अगर इसकी भरपाई के लिए

0: कदम नहीं उठाए गए तो ये रुझान आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे काम करने वाली मर्शनों की संख्या कम होगी और पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कामकाजी लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा।
1: Le nombre de personnes qui obtiennent la pension augmente, mais évidemment, vous allez avoir la charge qui va peser sur cette personne qui doit payer la taxe va augmenter.
0: विशेषज्ञों का कहना है कि अब विकास से जुड़े हर फैसले में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखना होगा, चाहे बात आवास की हो, बुनियादी ढांचे की हो या कुशल प्रशिक्षण की, हर योजना को बदलती आबादी के अनुसार तैयार करना होगा।
1: Un plan de développement doit intégrer la variable démographique. Si on l'avait fait depuis l'indépendance,
0: जनसंख्या के रुझानों को विकास योजनाओं का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। अगर आजादी के समय से ही ऐसा किया गया होता तो आज की कई चुनौतियों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। तभी हम ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि पेंशन की उम्र को हमेशा पहले जैसा रखना क्यों संभव नहीं है और क्यों 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े रहने की जरूरत होगी। इसे ही हम सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। जनसंख्या से जुड़े बदलावों को सिर्फ समाज सुरक्षा या पेंशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर सेक्टर और हर सरकारी नीति में इसे ध्यान में रखना होगा। आने वाले वर्षों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी मॉरिशस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। यदि आज से ही जनसंख्या के बदलते रुझानों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए तो भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
2: विश्व आबादी दिवस के संदर्भ में ही मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस हफ्ते पोर्टली मिमोजन नामक प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। यह सुविधा किशोरों और युवाओं के लिए स्थापित की गई है, जिसके जरिए उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां और ज़रूरी समर्थन प्रदान किया जाएगा। और मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे की मुख्य रूप से इसका शिकार होती है और इसलिए सभी को सतर्क रहना ज़रूरी है। 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपये प्रति टन तय की गई है। मर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज़्यादा उत्पादन माना जा रहा है। याचना मिश्रा को सुनते हैं।
3: मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने शुक्रवार को 2025 के लिए चीनी के दाम पर जानकारी दी। एमएसएस प्रति टन शक्कर के लिए खेतीहरों को 24,000 रुपये प्रदान करेगा। 2023 में रिकॉर्ड 30,954 रुपये की तुलना में ये भारी गिरावट दर्शाती है।
4: Les deux, trois dernières années, malheureusement, on a eu un surplus de production qui a mis la pression sur les prix.
3: दुर्भाग्य से पिछले 2-3 साल पैदावार ज्यादा थी, दामों को लेकर दबाव रहा। 2025 में 60% स्पेशल शुगर की पैदावार हुई जिनका दाम ज्यादा है, इससे दामों में गिरावट का असर थोड़ा कम हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद सरकार प्रति टन चीनी पर 35,000 रुपये की आय की गारंटी दे रही है उनके लिए जो 60 टन तक की चीनी का उत्पादन करते हैं। इस राशि में बैगस और मोलास का दाम भी शामिल है। 2025 की फसल के लिए इन दोनों को जोड़ा जाए तो दाम 29,600 रुपए तक पहुंचता है। सरकार ने 60,000 टन से कम शक्कर की पैदावार करने वाले खेतीहरों के लिए 35,000 रुपए की गारंटी दी, यानी टॉपअप सरकार की ओर से होगा। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन का कहना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है। 6,500 किसान इस संगठन से जुड़े हैं जो देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देते हैं।
5: Si nous fions seulement le 24 000 aussi, nous ne sommes pas capables de couvrir le frais qui le business est à loss, hein?
3: 24,000 रुपए के साथ नुकसान ही होगा। बगास मुल्ला।

0: और सरकार की मदद से खेतिहर अपनी खेती बरकरार रख पाएंगे और अच्छी कटनी भी कर पाएंगे। शुगर सिंडिकेट के अनुसार यूरोप में कुछ चीनी कारखानों के बंद होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अगले एक वर्ष के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: डिप्रेशन यानी तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉरीशस में भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों ने एक साझा पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय रहते सहायता उपलब्ध कराना और इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी के कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है। 9 लाख से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों में पहुंचाया गया है। और 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब पहले सेमीफाइनल का मुकाबला तय हो गया है। मंगलवार रात फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। कल रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने कड़ी टक्कर के बाद बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। मिकेल मेरिनो ने निर्णायक गोल करके लारोजा को प्रतियोगिता के अंतिम 4 में पहुँचने में अहम भूमिका निभाई। ज़्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर के साथ।
2: लगातार दूसरी बार के लिए मिकेल मेरिनो अपनी टीम को आकर जितवाता है और स्पेन पहुंचती है वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में। देखा जाए तो मैच में लाहोरा का पल्ला भारी था, लेकिन सही तालमेल नहीं बैठ रहा था। फिर फर्स्ट हाफ में ही स्पेन का खाता खोलता है फाबियन रुइस। पर फर्स्ट हाफ समाप्त होने से कुछ ही मिनट पहले स्पेन इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल कंसीड करता है। रिकॉर्ड 649 मिनट तक रह जाता है गोलकीपर उनई साइमन के लिए, मतलब स्पेन पर गोल स्कोर करने वाली पहली टीम बनी। सेकंड हाफ में स्पेन अपना दबदबा मजबूत करता है और बेल्जियम का गोलकीपर चिबो कुतुआ हर प्रकार का सामना करता रहता है। इस बीच चिबो कुतुआ को चोट लगती है, आगे नहीं खेल पाता। उसके स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर सेन लामेंस को भेजा जाता है। आते ही गड़बड़ इस शॉट को नहीं रोक पाता मिकेल मेरिनो। पोर्टुगल की तरह यहां पर भी मौके को हाथ से नहीं जाने देता। कठिन रही ये जीत, पर क्वालिफिकेशन जेब में स्पेन का सामना अब फ्रांस से होगा। मंगलवार 14 जुलाई को दो चट्टान आमने सामने। MBC टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण होगा।
1: और वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दौर धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए 2 और टिकटों का फैसला आज शनिवार और रविवार को की रात होगा। इस दौरान 2 बहुत ही रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आमने सामने होंगे। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर आज रात से। और पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। कल दिन के दौरान भी कुछ वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। इसलिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: अवेन्यू बेल बॉम्बूमी, अवेन्यू बेल बॉम्बूमी 74 साल के 74 years old के श्री बासुदेव नीला, श्री बासुदेव नीला जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर अवेन्यू बेल बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। मिजुनेट रोड रिविया दिस अंगीमी, मिजुनेट रोड रिविया दिस अंगीमी 73 साल की 73 years old की श्रीमती मारी क्लारिस जीनेट बेल, श्रीमती मारी क्लारिस जीनेट बेल पैदाशी नाम अमाजिस, पैदाशी नाम अमाजिस और जो मारी क्लारिस नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके घर मिजुनेट रोड रिविया दिस अंगीमी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। Railroad circonstance Saint-Pierre-Mi, railroad circonstance Saint-Pierre-Mi, इक्यासी साल के 81 years old के श्री देविंदास वेंकामा, श्री देविंदास वेंकामा जो दास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनकी बेटी श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सर्कमस्टांस, श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सर्कमस्टांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पीमा में, स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पीमा में 68 साल की 68 years old की श्रीमती रितुमाला गोरीबा, श्रीमती रितुमाला गोरीबा जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी पैदाशी नाम सुकुना और जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके घर स्कूल लेन पर तपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालीन पौतवी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में, सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 years old के श्री धीरज बागीरथी जो विकास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री विवेक बागीरथी के घर सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। स्कूल लेन मोंसेलमेंट सेंट एंड्रे में, स्कूल लेन मोंसेलमेंट सेंट एंड्रे में 93 साल की 93 years old की श्रीमती नोमाउटी बीना जो नानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके बेटे श्री हमीद चंद लक्ष्मण के घर स्कूल लेन मोंसेलमेंट सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंसेलमेंट सेंट एंड्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। अवेन्यू स्टैनली कैथोबोन में 82 साल की 82 years old की श्रीमती कौसिलिया मंदिल रामबरत, श्रीमती कौसिलिया मंदिर रामबरत जो अनसुया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी सोमवार 13 जुलाई को शाम के चार बजे उनकी बेटी श्रीमती शानीस मंदिर के घर अवेन्यू स्थानीय कैथोबोन से उठाकर

अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स दफनाने के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल ऑन मंडे 13 जुलाई एट 4 पीएम। मोंसेनियर लीन ओकुले क्योपिप में मोंसेनियर लीन ओकुले क्योपिप में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री डॉक्टर हेमलाल बंजन श्री डॉक्टर हेमलाल बंजन जो डॉक्टर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर मोंसेनियर लीन ओकुले क्योपिप से उठाकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्योपिप के सेंट क्लेमेंट गिरजाघर ले जाई जाएगी और बाद में अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। सीजियम मिल फोरेसा क्योपिप में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड के श्री मनीला जीवता जो तोमान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर सीजियम मिल फोरेसा क्योपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सीजियम मिल फोरेसा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। रिशमा रोड सेंट द फ्लैग में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती बेंगी रोटी पैदाइशी नाम जाओरी और जो फोनो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मनीषा बिजमोहन के घर रिशमा रोड सेंट द फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। गनू रोड रिविया जुपर्समी 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा गनू पैदाइशी नाम भोजावन और जो मामा विनय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय गनु के घर गनु रोड रिविया जुपर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिविया जुपर्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। एवेन्यू सिटन बासन रोड कैटरबोन में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वसंती कुमारी अनंत पैदाइशी नाम बुधन की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन उनकी अर्थी वैसे आज उठा ली गई है आज दिन के 2:30 PM। पोथीराम लेन विच्यामिल ट्रियोले में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नुरतन की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर पोथीराम लेन विच्या मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。听众朋友，

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandariki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: श्रोताओं, कहा गया है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता है, कुछ समय ये सिखाता है जिन्हें हम अनुभव कहते हैं। जी श्रोताओं, अभी आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस से, जहां आप सुन पा रहे हैं भजले प्रभु

भूखा नाम अनीता के साथ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और सप्रेम नमन आप सबको। तो चलिए इस विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

कहा गया है कि जिसे आप खोना समझ रहे हैं, कभी कभी वही आपके जीवन का सबसे बड़ी सीख होती है। प्रत्येक परीक्षा का एक कारण होता है और प्रत्येक पीड़ा के पीछे कोई नई सीख छुपी होती है। समय किसी के लिए नहीं रोकता है, इसलिए अपने कर्म इतने अच्छे कीजिए कि समय आपको स्मरण रखे। जो मन से शांत है वही जीवन के सबसे बड़े आंधियों को पार कर सकता है। फल आपके हाथ में नहीं है, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय पर सब कुछ मिलता है।

प्रियजन, जीवन में हो रहा है वह आपके समझ से परे हो सकता है, किंतु प्रभु का न्याय आपकी सोच से सदैव परा होता है। बीता हुआ कल आपको सिखाने आए हैं और आने वाला कल आपको निखारने आएगा। मात्र आज को सही कर्मों में लगा दीजिए। कठिन रास्ते प्रायः उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके इरादे सशक्त होते हैं। व्यक्ति की पहचान उनके सुख में नहीं, उनके धैर्य में होती है।

भक्तों, मन को समझाना सीख लीजिए, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र तथा शत्रु होता है। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, यहाँ कार्यक्रम समाप्त होने चला। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और श

रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा जब तक वो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनता या जब तक बेवुजू नहीं हो जाता। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ।

फ़र्ज़ नमाज के बाद उसी जगह बैठे रहना। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक उस जगह रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हैं, वो कहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर

रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ये चाहता है कि उसे जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो उसकी मौत उस हालत में आए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और वो लोगों से इस तरह पेश आए जिस तरह वो कुछ चाहता है कि उसके साथ पेश आया जाए। बहावाला मुस्लिम शरीफ। ए पाक परवरदिगार, हमारा खात्मा ईमान पर करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा।

0: delicious.
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।

सब संगत चालों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9 बजे तक और अभी से लेकर रात के 11 बजे रहे प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का अभी से लेकर रात के 11 बजे रहे। आज है सामदी की रात, सामदी 11 जुलाई साल 2026। आज के रात प्रताप सिंह संगे गमत ही गमत हुई। नंबर वा याद बना का जगह देव जगह सैंक पर सक बजा टेलीफोन करके अपन पसंदीदा भोजपुर गीत मांगे। ठंडा ठंडा करता और ठंडा के मौसम में हमने के तलों के साथ देवत है जा, तू भी हमने के साथ दिया जा। आज अब सा गाँव अब सा झूम अब सा कमरवा डुलाओ अब सा। और जो वीकेंड रहे रहा वो स्पेशल रहे रहा कहे कि लास्ट समय में ढेर कोई के लिए तो नहीं मिला राजू सुने के तभी सामदी दिमास बात आ सामदी के रात तो चला सामदी के रात के गमर कर हमने के संगे MBC रेडियो मॉरिशस MBC रेडियो मनोरंजन के साथ पहल का गाना सब MBC रेडियो के सुनने वाले श्रोतालों के नाम मांग के सिंदूरवा बीज माओ से संबंध का बोला था चले एक साथ सुने।

0: आज 11 जुलाई के हमने दुनिया भर में मनावत है जा विश्व, जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये जुन है 11 जुलाई के हर वर्ष मनाएला सा, कहे के ये हमने की बतावेला कि पॉपुलेशन कितना बा और परिवार में कैसे परिवार नियोजन के बारे में और लैंगिक समानता शिक्षा के बारे में बतावेलन सा। और इकर शुरुआत हो रहल 1989 में कर शुरुआत हो रहा राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के पहल पर और पहली बार एक 11 जुलाई 1990 में मनावल गल रहा। और आज के हमने की थीम है डेमिलवेंसिस के हमने के जन टेम है विश्व संख्या दिवस के रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल पीपल ऑफ टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, यानी कि युवाओं के आशा और आकांक्षा को साकार करने और आज और भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। और जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौती के प्रति जागरूकता बढ़ावेला, परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य के भी बढ़ावेला, शिक्षा और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करेला और प्राकृतिक संसाधन के संतुलन उपयोग पर बल देवेला। और बढ़ती जनसंख्या के प्रमुख प्रभाव है भोजन पानी और आवास पर दबाव, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा और अधिक भार, जलवायु परिवर्तन की चुनौती में वृद्धि। और समाधान है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। आजकल देखी जा सकी ढेर मना देश में ढेर कोई शादी नहीं करता या लड़का नहीं करता। तो विश्व जनसंख्या दिवस बतावेला कि जो देश में से होला तो फिर इसमें जिला पॉपुलेशन खातिर बोल जाएगा कि आदमी लोग के चेहला शादी करे के लड़का करे के ताकि हमने के देश में आने वाला पीढ़ी आए। और जब आदमी लोग शादी नहीं करे लड़का नहीं करे रहा तब पॉपुलेशन बिजी होला। इससे क्या होला कि एगो देश में जब आदमी नहीं रही तब बड़ी दूसरा देश आदमी लोग के बुलाए के काम करे के। ये खातिर हर एगो देश में सरकार बोलेला कि चेहला शादी करे के और लड़का करे के ताकि आने वाले भविष्य में कोई ना कोई सकी है देशवा के जो आगे बढ़ावे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बाज विश्व जैसे बोली विश्व जनसंख्या दिवस तो ये हमने के चिंतन मनन के हमने के करेला हमने के बतावेला चिंतन मनन करे के मौका देवेला कि पॉपुलेशन कोनो कोनो पेई में ढेर बा कोनो कोनो पेई ओवर पॉपुलेटेड बा पर कोनो कोनो देश में शादी नहीं करते उनसा लड़का नहीं कर सकते एगो समस्या बन जाला। काहे कि जब देश में जब कोई शादी नहीं करी लड़का नहीं करी तो देशवा कैसी चली हों कि नहीं। तो ऐसे में चला सुनब जाए गो पहल बहुत ही जोली गीत अविनाश गैले हवन। अविनाश जी गैले वन गीतवा खूब जोली बा बरिए जोली बा और है गीतवा जुन है चलावत अविनाश रामदाहिन अमृता बिस्सी सर भी गीतवा गैले वन और गीतवा हमने चलावत ऐसा सब रेडियो मंचर्स और रेडियो मनोरंजन के श्रोता के नाम खासकर सेंट ओबेस एस कॉलेज के इस सब संगतियालों के नाम सजू वीरापेन अपाया रोसाय प्रतिमा केत दीना युश्री अनुव एडू और धर्म गंगू जी के नाम है गीत चाहते साइलेंट की ओर से उकर मारिता और सब सीतालू परिवार के नाम। तो चले एक साथ सुने बाबू कैसे खूबे जोरीबा बाबू बढ़िए जोरीबा।
1: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा

हमने के बाबू था खूबे जोरीबा और बेशक ये बखत सुनते हुआ तो लोग मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन जी हाँ ये जो कार्यक्रम तो लोग खाती तैयार करके अनले हिस्सा और

प्रोग्राम चल रहा है रोज रात के रेंजी से लेके दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और संगतिया लोग, हर बरिस हमनी मनाएला सा एगो पर्व जुलाई में जाने ला कौन पर्व है तो वो पर्व है मुंशी प्रेमचंद जयंती। हर बरिस 31 जुलाई के मनाएला सा दुनिया भर में तो मुंशी प्रेमचंद एगो लेखक रहलन। जन्म हो रहा 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में, और उकर वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, और वो हिंदी और उर्दू साहित्य में सम्राट रलंजा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार और कहानीकार रलंजा, और उकर रचना में गरीबी, किसान की समस्या, जातिगत भेदभाव, महिला की स्थिति और सामाजिक न्याय जैसे विषय प्रमुख बा। और उधे मना कृति लिखलक बा जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा। और प्रेमचंद जयंती के महत्व ई दिन विद्यालय, महाविद्यालय और साहित्यिक संस्था में साहित्य पर व्याख्यान होला, निबंध प्रतियोगिता होला, कहानी पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करल जला। और इस दिन भारतीय साहित्य में उकर अमूल्य योगदान के बारे में याद करल जला, नई पीढ़ी के उकर रचना के से परिचित करावल जला। त बेशक मुंशी प्रेमचंद जनन है वो अपन छाप छोड़ गल साहित्य की दुनिया में, और जोन भी पीढ़ी आए वो एक न एक दिन ओके चहला मुंशी प्रेमचंद के जन है उकर रह सब पुस्तक पढ़े की कहे कि इस सब पुस्तक में ढेर माना ज्ञान बात। याद रखिए हई बरिस 31 जुलाई के मनावब से मुंशी प्रेमचंद जयंती। लेखक लोग आवेला, लिखेलन सा और चल जालन सा दुनिया से, पर वो लोग की कृति रह जाला, हाँ कि नहीं। तो जितना कोई खुशी रहा हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य पढ़े के तो यूट्यूब पर जाइए, टाइप करिए मुंशी प्रेमचंद, तो कर बारे में थोड़ा ढेर माना जानकारी मिली। और अभी रात के समय बा तो चलो अगला गीत सुनम जा, जिले जिले जिले, जी हाँ बहुत ही प्यार सन गाना है। गीतवा गैले हवन उमेश डोहू, और है गीत हमने चलावत ऐसा खासम खास ई सब लोगन के नाम। आप हवन उदय या धनी राम पोस से उकर सब परिवार के नाम, अश्विन बच्चन उकर भाई बच्चन और सब बच्चन परिवार के नाम, किशन गुड़िया है गीत तोहर खातिर, प्रीतम राज जिमिला है गीत खासकर तोहर खातिर भी, प्रीतम राज जिमिला के भोजपुरी गीत बड़ी पसंद कर ओके अच्छा लगेला तो गीत तोहर नाम। और आज टीना भैरव के जन्मदिन बात बधाई देवतन उकर पति कवि, उकर सासू माँ माला, बेटा माधव, ननद रीना और सब भैरव परिवार के नाम। तो टीना भैरव जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: Continuous music.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: तो हाँ, तो तू खुशी रहे भजियाई के प्रोग्राम पे सौंते करे के एनिमेशन करे के तो वन डे आरजे में जरूर भाग लिया जा के जाना था तोरा मौका मिली आके

लंबे समय एक दिन खातिर औजे बने के हमने लिखा। औजे के मतलब है रेडियो जॉके, ये कोई राज्यों में बचाला अंग्रेजी में वैसा ओके औजे रेडियो जॉके और फ्रांसे में आदमी आते हैं बोला सा हिंदी में वक्ता है जो आदमी बचाला राज्यों में जिसे हमने ऐसा हमने के तीन बार रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती रेडियो मॉरिशस रेडियो स्पीकर ढे कोई बोलेगा तो कैसे बोली हमारा नाम है औजे प्रताप सिंह यानी कि हमें को रेडियो जोके है सोके ना जोके जन घोड़ा में ढोगेला घोड़ा घोड़ा जन जोके घोड़ा लेके ढोगेला वो जोके नहीं हाई जोके है राज्य के जोके रेडियो जोके औजे प्रताप सिंह। और हमने जो लोग साथ देवा थे अभी रात के समय रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और संग जा लोग ढेर कोई खाली घर में रहे सर भाई घर में काहे खाली रहेला जइया थोड़ा सुन घूमे उमे शादी में जइया पूजा पाठ उठ में जइया कोई के लानी वैसे रही तो जइया लोगन से मिलिया एक ही बोला सोशलाइजेशन। और एगो अंग्रेजी कहावत है बेटर टू बी इन ए गुड बेटर टू बी इन ए गुड कंपनी दैन बींग अलोन ओकर कॉन्ट्रा है बा बेटर बींग अलोन दैन बींग इन ए बैड कंपनी। तो जनिया कौन संगतिया कि तू भेंट कराते हुआ कि कैसे काम आगात कराते हुआ अच्छा संगति कर बत अच्छा बुद्धि मिली बुरा संगति कर बत जाने ला का होला हम तो रहा नहीं बोला। और चला भी गीत सुनब जा पैसा बात करेला पैसा बात करेला सच्चे कि पैसा जो है बड़ी बात बात करेला। और है गीत तो आज जन चली हमने चलावत है सब शास्त्री बनुमानी के नाम और पत्नी और बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बनुमानी परिवार के नाम हरीश नारायण रहेरन मिडलैंड है गीत तो हर बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से आहा प्रताप और हरीश की दोस्ती जो है राम भरत की दोस्ती लिखा है राम हनुमान की दोस्ती कृष्ण सुदामा की दोस्ती जैसन है लोग की दोस्ती लोग की दोस्ती जो है बहुत प्यारा दोस्ती है आहा हरीश और प्रताप दो लोग बेस्ट फ्रेंड हवा जा और है गीत सब बेस्ट फ्रेंड्सों के नाम जे हमने की सुनता भी रात के आशा जानू को तेज से हवन अगर मामा कुमारी निधि आरती जीजाजी चीजों फो शुभम और सब जानू परिवार के नाम और जितना कोई अभी रात के हमने की सुनता जितना कोई पैसा खुशी रहता तन तना तन तन है गीत हरो नाम।

ऐसे ही नचते गाते रहिए, कमरवा डुलाती रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की लहरों पे। और भूल जाता कि सकेला दिमासा लेंजी ले और ग्वान्टी साइक्लोन आए और ठंडा करी बाप इतना ठंडा कप कपी। और अब हम तोहरा को कहानी सुना। यह राजा और दासी की कहानी। बहुत समय की पहले की बात है, गो राज में गो न्यायप्रिय और दयालु राजा रहल। बहुत अच्छा रहल राजा, बहुत अच्छा दिल के। ओकर महल में कई सेवक रहल, खवाइये लोग और सेविका। और ओकर एगो दासी रहल, दासी के नाम रहल गौरी। गौरी बहुत ईमानदार, मेहनती और विनम्र भाव के रहल। वो हर काम लगन से करत और राजा के बड़ी खुशी रही। एक दिन राजा के बहुमूल्य हीरे के हार जुनह महल में गायब हो गल, भेजी हो गल। महल में हड़कंप मचल गल कि ओकर हार भेजी हो गल। और कुछ लोगन ने बिना कोई प्रमाण के गौरी पर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिलन। सर सबके बोलते मन सर कि राजा के हार के चोरी का लगभग ओकर दासी सब कोई अकीजे करता कि दासी जो है गौरी वो राजा के हार चोरी कर लगबा। और वो कहे कि वो दिन जो है वो दासी जो है रानी के कक्ष में रहल और सब कोई द्वितीय होता कि गौरी चोरी कर लगबा। राजा जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले लग और वो जांच कराए के कोशिश को इन्वेस्टिगेशन कर लग। और कुछ दिन के बाद पता चल कि पुराने संदूक के पीछे हरवा गिरा रहल, कोई चोरी नहीं करे रहल। पुनोइया के आदमी आकीजे कतल की गौरी चोरी कर लगबा। गौरी बेचारी से निर्दोष रहल। गौरी फूट फूट के रोई लगल। वो बोलता महाराज हम उतना दिन तोहर लगे काम कर लें, तोहर नमक खा लें, हम कहे तोहर हार चोरी करब। राजा अपन प्रजा पर बहुत गुस्सा करलक, कहे कि ओकर प्रजा धूते करलक, सौस दलन से आकीजे कलन से गौरी पर। और गौरी के ईमानदारी और धैर्य के प्रशंसा करलक राजा। और राजा के ढेर मना पैसा और सुना दिलक। और राजा ने घोषणा करलक अपन राज दरबार में कि जोन भी व्यक्ति बिना फेव के गौरी पर अब्जस लगेलक बा ओके करी से करी सजा मिली। और जोन है राजा बहुत प्यार से गौरी की ढेरी नाम दिलक। गौरी भी प्रसन्न हो कहे कि राजा को पर विश्वास कर लग। कहानी के जो मुगाल है शिक्षा है कि बिना सबूत के कोई पर आरोप नहीं लगैया। जब गुजाफे नहीं जाना तो आगे आगे नहीं बचिए हैं सौस नहीं डाले की। और ईमानदारी और धैर्य के फल जोन है ईमानदारी और धैर्य के फल हमेशा अच्छा होला। और न्याय हमेशा निष्पक्ष और सत्य पर आधारित होला। यह कहानी के मोहाल। तो तू भी कब को जाफे नहीं जन्म तो आगे आगे नहीं बचे या गुजाफे नहीं दिख लिया हुआ तेने जाके बकबक बकबक करे लग गया। ढेर कोई इसे करेला कुछ जाने लन से नहीं गुजाफे सुने लन सा जाके पकपक पकपक करे लगे लन सा। नाचिया है इंसान के यूमे के नाचिया की जहाँ को बात सुन लग वो बतवा के रिसेस नहीं कर लग। बतवा ले जाके वन भन बतवा में मिर्च मसाला लेके बचा देवेला और लोगन में झगड़ा डाल देवेला। और जब झगड़ा डालने से बैठ के तमाशा देखेलन सर तैसन काम तू नहीं करिया। ठीक बा, कहानी बहुत अच्छा रहल राजा और दासी के कहानी देखला। दासी इनोसों रहल। अब चले अगला गीत सुने। गाँव के लाफों तेनुआ राज कमल चिंतामणि गीतवा गेले वन है। गीतवा हमने चलावते सर खास कर अनिता जुन रहेलन फ्रिकॉन्फ्ला अनिता लाल जी मॉडल बेसे इंदिरा लौते।

माइबूसे शोभा हवन बाकवा के, शोभा पॉम्पलीमुस के और रेहाना हवन फिनिक्स के, नोटरडाम के रेहाना वो भी हमने के साथ देवतन और फिनिक्स के रेहाना गीत मांगने वालों का बहन बेन साइदा जालीला और कोहेसा और सब हासनारी परिवार के नाम। तो चलो एक साथ सुने हैं गीतवा गांव के लाफोंतेनवा। और आगे के ज़माना में गांव के लाफोंतेन रहा एक गो रोबिने रहा सब कोई जाता पानी भरे। आजकल तक घर घर में रोबिने भैया तो आज से हर सुख सुविधा बा फिर भी लोगन प्लेये होते रहेला है नहीं बा हो नहीं बा तो का करते भैया कपार में पर गमे डाल के जाके पानी भरे के आजकल जिमाते तो का करते फिर प्लेये नहीं हो या भगवान जितना दिलक बा जितना फासीते बा आजकल तो का बोलब आ हा हा। चला सुना राजकमल चिंतामणि की कहानी गाँव के लाफोंतेनवा।

आगे के जमाना और आज के जमाना में ढेर अंतर बा। आगे आदमी लोग ढेर मिजे रहल, ढेर गरीब रहन सा। आजकल तो सबके यहाँ गाड़ी बा, बंगला बा, मोटर बा, पैसा बा। संख्या लोग बोलिया सा कि जब गलती करबा तो यह परी पर्दा भरे के है ये धरती पर। यह परी स्वर्ग है, यह परी नर्क है। अब मान ला तू कोई के दिल दुखा दिला,

तब भगवान बड़ी क्रोधित होला। यह परीक्षा भरे के बोले है ना, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि आओ के सामने होल बा कि जो हमें ढेर मूवी करेला ओके पर है ये धरतिया पर भोगे के कोई के शराब नहीं देवत है, पर जो आदमी करेला दूसर के दुख देवेला वो कब खुश नहीं सका। कोनो कोनो आदमी रहेला ऐसे उन्हें सकेला कोई की सुखी देखे तो वो गलती पे गलती कर ले जला और हर बार माफ़ी मांगेला। एक बार गलती करलक माफ़ी कर देला, दो बार गलती करलक माफ़ी कर देला, बार बार व्यक्ति गलती करे और माफ़ी मांगी तो ऐसा व्यक्ति के सकब माफ़ करे थोड़ा जीव सिलवा। तई खातिर बोले ऐसा कोनो भी काम करे से पहले सोच समझ या कहे कि जे गलत काम करत हुआ कोई के दिल दुखावत हुआ कोई के निंदा करत हुआ चुगली करत हुआ तो ये परी भरे के और हमने खासकर मांग करी ऐसा हमने के जो बड़ा जन हमने दे देखे से हमने चाची नानी लोग के कबो कबो एगो दूसर कहते माननी हो गल बा कि इधर के बात उधर करे रहन सा और झगड़ा हो जाला तो मांग करब से तो लोग बड़ा आदमी हो सा काहे इसे करे रहसा कहे एगो पत्तों के बात लेके दूसर पत्तों के बोले रहसा। देख रहे से देर घर में ऐसे झगड़ा हो जाला महाभारत इतना कांड हो जाला कि घर परिवार टूट जाला बिखर जाला। तो ये परी परेरा भरे के ऊ चाहे कई भी रही लड़का रही आदमी रही बड़ा आदमी रही अगर तू बुरा काम करत हो तो माफ़ करिया आई धरती पर परेला भरे के। ऐसे में चला सुन अब जो अगला गाना अतीत भगीरथी के गावल छोर के मोरिसवा और जे कोई मॉरिशस से बाहर बा इस समय या घूमे गलवन सा या पढ़ाई करे गलवन सा या काम करे गलवन सा तो गीत तो लोग के नाम चलावत है सा। आज तीना बुधना के पति के जन्मदिन बा तो तीना बुधना अपन पति की बहुत प्यार करेला और बोला तो अपन पति के आई लव यू बेबी तो तीना बुधना गीत तोहर खातिर और तोहर घरवाला खातिर तोहर दुगो बेटी और सब बुधना परिवार के नाम आप हेलन वेल और है ये गीत तो हमें चलावत है सर खासम खास चित्रा और ज्ञान विश्राम खातिर आप हेलन मौदाल बे कमला जीनू रहेलन मौताबा ओका छोटा लड़का आरोही खातिर और कमला महादेव ये हमने के औसे और जी हम के रेडियो पर काम करतलन तो आप हेलन फिनिक्स तो कमला महादेव गीत खासम खास तोहरो नाम और जितना कोई भी रात के सुनता रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉर्चस पर है गीत तो लोग के नाम भी चोर के मोरिसवा।

और अब हो जाए थोड़ा सुन बॉलीवुड न्यूज। हमने में से ढेर कोई कुछ बॉलीवुड के फिल्म देखे के तो ताज़ा खबर यह है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ओकर तीसरा शादी होल बा। तीसरी बार के शादी के बंधन में बंधल बा। ओकर शादी हो रहा 5 जुलाई के 2026 में और ओकर शादी होल बा गौरी स्प्रेंट के साथ। गौरी बेंगलुरु से है और एगो एंटरप्रेन्योर है। तो आमिर खान के 3 गो शादी होल बा। ओकर पहलका पत्नी के नाम है रीना दत्ता। ओकर से शादी कर रहा है 1988 में और तलाक होल 2002 में। इस शादी से 2 गो लड़का होल जुनेद खान और आयरा खान। दूसरा शादी कर ला किरण राव के साथ। ओकर शादी हो रहा है 2005 में और एरो के तलाक होल 2022 में। इस शादी से 1 गो लड़का पैदा हो जिकर नाम है आज़ाद राव खान। और अब आमिर खान के शादी हो बा गौरी स्प्रेंट के साथ। तो शादी हो बा 5 जुलाई के और जैसे बोली कि गौरी जो है बेंगलुरु से है और एगो एंटरप्रेन्योर है। और शादी के बाद आमिर खान और गौरी स्प्रेंट गैलन जा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाए। ओए होए क्या बात है क्या बात है। सो हमने की ओर से ढेर मना आशीर्वाद आमिर खान के और ओकर नई पत्नी के। और है ओकर तीसर का शादी है। और बॉलीवुड में अक्सर ऐसे होला हाँ तो एक कुछ शादी कर लग तलाक हो गल माने कि कपल अच्छी तरह से नहीं चलता है। दूसर का शादी कर लग वो भी तलाक हो गल। तो अब तीसर का शादी कर लग बाद तो प्रार्थना कैसा कि शादी अच्छी तरह से जाए। हैप्पी मैरिड लाइफ आमिर खान साहब और तोहर पत्नी के। और ऐसे में सुनब जाए अगला गाना।

अगला गाना है चमकेला झुमका। तत्तू को नकादो देव अपन पत्नी के तेगो चमके वाला झुमका दे दिया जरूर। और है गीत हमने चलावब सा खासम खास कुणाल हिरीलाल के नाम और सब परिवार खातिर पूर्णिमा फकीरा गीत और खातिर सुमन जालसा ग्रुप है गीत और नाम संजय हरिचंद है गीत और पत्नी संध्या बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम। और है गीत चली साइलेंट की ओर से कर भतीजा माधव के नाम और माधव जैसे चाचा के दिखेला चाचा जान हल्ला करेरा और अपन चाचा के अपन नगे बुला के खूब दुलाल करेरा चाचा। साइलेंट की ओर से बेटा माधव के नाम है गीत चलाओ से मनीष अचामी सिंह की ओर से ओकर पत्नी ओकर दुगो बेटी ओकर माँ और ओकर सब परिवार के नाम। तनुजा पदारत आप लेक्चर हव MGI में है गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम चमकेला झुमका। और अभी रात के समय बात हो रहा नींद नहीं लगता तो फिक्र नहीं करिए, अभी रात के 12 बजे दे हम तो हर संगे हैं और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात के 11 बजे ले।

बोला तो संगतिया लोग ही प्रोग्राम कैसे लगता अच्छा बुझाता ना। हाँ सब कोई नाचता गावता झुमता बोलते गो संगतिया बता प्रताप अब तो ऐसा गीत चलावा तो ठंडा सब भागल हम तो ऐसा जो नाचता ये हवन केविन केविन नातू हवन रोजबेल से बड़ा जो नाचता बोलते एक दू को मार ले रहे भैया रहता तो हम यो संग एक दू को मरते ना नहीं हो हम नहीं मारते हम तो अभी प्रोग्राम करते हैं अभी रात के 11 बजे ले हाँ हाँ हम पिए भी गर्मा गर्म कॉफ़ी आहा क्या बात है और बोली जा सक कि सब्जी में ढे मना सब्जी बा जिन में पौष्टिक तत्व है एगो सब्जी है जिसके बोल जा सक कुतुमिरी मॉरिशन लैंग्वेज में अंग्रेजी में बोल जा सक कोरिएंडर लीव्स और हिंदी भोजपुर में हरी धनिया के पत्ता और ये जिन हरी धनिया है स्वास्थ्य बढ़ावेला स्वाद बढ़ावेला माफ करिए तकारी में एक में विटामिन आ बा विटामिन सी बा का बा फोलेट बा पोटाशियम बा कैल्शियम बा आयरन बा और एंटीऑक्सीडेंट बा और कोतुमिरी के प्रयोग कर बा खाई में त गैस जो आदमी के गैस खोला वो लोग के चेहला है कोतुमिरी खाई के और एक में पाचन डाइजेशन में मदद करे रखो खाए के खेबा कुतुमिरी खेबा तो खेबा जीजेरे हो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला तो लोग के इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करेला और कुतुमिरी में विटामिन सी बा तो जो विटामिन सी है हमने के इम्यून सिस्टम के और स्ट्रॉन्ग बनावेला और जो कि हृदय स्वास्थ्य प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज सब रहेला हार्ट प्रॉब्लम तो कुतुमिरी खेबा तो ऊ तो हार्ट प्रॉब्लम के सकेला दूर करे रक्त संचार के मदद करेगा हमने के ब्लड प्रेशर के ओके निमन से ओकर प्रवाह करेगा और हड्डी में हड्डी खातिर लाभदायक है कुतुमिरी कुतुमिरी जो है आँख के लिए भी अच्छा बा आँख के ज्योति बढ़ावेला तो अच्छा हमने के जो लापो है कुतुमिरी खेबा तो लापो एकदम जरूरी रही और ये वजन घटावेला जो आदमी लोग ओबेज बा मोटा होवन सा तो मोटापा के कम करेला और शरीर में पानी के पूर्ति करेला तो अब कुतुमिरी के सेवन कैसे होला ये सकब पुल दामुन के सलाद में कुतुमिरी डाल के जोड़ी से पीमामा डाल के सकबा सलाद करे दाल और सब्जी में भी प्रयोग होला हरी धनिया के चटनी बनेला कुतुमिरी के चटनी हाँ जाने जैसे ना मोरिस में जैसा कुतुमिरी के चटनी तो कुतुमिरी ले बा पुल दामुन एगो लहसुन ले ला डाल पीमा डाल दिया पीस दिया सील में नमक डाल के का बुलत हुआ और सैंडविच में भी एक प्रयोग होला कुतुमिरी के और जैसे बोली बहुत ही लाभदायक सब्जी है कुतुमिरी और कुतुमिरी ऐसे ने गोलिगिम है जो 365 दिन मॉरिशस में मिलेला कहूँ भी जेबा बुटीक में सुपर मौसे में जनवरी से लेके देश सामने कुतुमिरी मिलेला आजकल तक कुतुमिरी बड़ी बमौसे हो गल बा इतना जोरी जोरी कुतुमिरी हम खुशी हम जाना कैसे कुतुमिरी खाला कुतुमिरी की चटनी कुतुमिरी पोल दामुन ने बा हरी धनिया के पत्ता गो लहसुन पीमा डाल के खूब सीर में खाजे करा तीता तीता है खूब तीता पीमा डाला तब कुतुमिरी की चटनी रही दाल रही भात रही तो हमर तो भोजन हो गल तो चल ऐसा में सुन जा अगला गाना गमट करे गमट करीला बिस्वानी दीपवा गमट करते हुआ बिस्वानी दीपवा हम तो ऐसा गमत करब हो और है गीत हमने चलावते इस संजय की ओर से सुरेखा के नाम निश्चल शिवरतन विजय राघु विजय सोमरा संदेश रंजीत सिंह मौसी संगीता गोकुल नवीन भैरव और नवीन अजोदा के नाम डॉक्टर राकेश रामचंद्र गीत तोहर पत्नी आशा तोहर दुगो बेटा और सब रामचंद्र परिवार के राम जो रह प्लेन मायों और है ये गीत हमने चलावत है जा खासम खास संगीता मीरन की ओर से आप रहन लाहौजा उकर भाई दान आजी है गीत तोहर खतीर तोहर माँ और आप रहन कास्टेल तोहर बहिन ही माँ शांति वंशिका रक्षिता और सब अमीरन अमीरन और मोहन परिवार के नाम है गीत जाता खासकर एक्स एम जे आई बॉयज के नाम गोविंद किशोर राव रामाराव बुसानुकालू बाला बाला के नाम भी तो चल एक साथ सुने हैं गीत तो आप बहुत प्यारा संगीत है गमत करीला हम तो खुशिया गमत करे कि भैया हम जब आएला रेडियो पर तो गमत ही करीला तो लोग भी हमें संगे संगे गमत करे और नाच गाव झूम नाचे में कंजूसी नहीं हाई देखा हाई देखा हाई देखा मामा हाई देखा गम्मत करीला गम्मत करीला गम्मत करायला सच के हाई देखा
गमत करावा हो। एहे, आहा, गमत कराइला, गमत कराइला। आई देखा, हाई देखा, सामने की रात के कैसे गमत होता एमबीसी स्टूडियो में। एहे।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो
4: रात के 11 बज गल बा और एक घंटा बाद तो लोग साथ देखा थे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स भोजपुरी तड़का प्रोग्राम। मन करता को भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा जाने रहा का जाओ दे जाओ विद सैंक पर और एक बात बोला था टेलीफोन कर बा तो अपन रेडियो सेट की बोली मकम थी कर दिया। अब आज डाली रहता टेलीफोन और हमने के कान निकलाती वाला और जब गीत बजाता गीतवा के बजे दिया गीतवा बज जाए तब टेलीफोन कर दिया। जब रही समाप्त हो कि तब टेलीफोन करिया कहे कि अब गीतवा काट के तो हर गीत नहीं सबसे चलाए ना बारी बारी से देखा 2 घंटा के प्रोग्राम है मैक्सिमम वैन काट सौते 24 गीत सकब से एक घंटा में 12 गीत सकेला चली 10-12 गीत 2 घंटा यानी कि वैन काट सौते 81 जस्सी नहीं सकब से करी कोशिश करते इसे मैक्सिमम तई खातिर बोला सर कि थोड़ा सुन धीरे छा धरे के सब कोई खातिर है रेडियो MBC रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सब कोई खातिर है तो सब कोई की मौका दे रहा सर ठीक बा। और जब थे बता गीत मांगे के प्रोग्राम है गीत मांगिए नहीं राकोटी करिए कि फलना का कर लग चिलना का कर लग इस सबसे हमने कौनसैनी नहीं है सर ये प्रोग्राम में गीत मांगे के ठीक बा। और हमने प्रोग्राम में ढेर कुछ आने रहा सर मनोरंजन शिक्षा लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी होता दुनिया में ये सब यहाँ जाने के कहे कि खाली मनोरंजन ही तो नहीं छा रही ना चाहे ना कुछ सीखे के भी ऐसे तो दिन भर मनोरंजन होते रहेला। हाँ मनोरंजन ज़रूरी है पर मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद बात भी होला तो ये अच्छा ये मोगाल पर कोई के मोगाल पर लिफी होकर प्रभाव ज़रूर पड़ेला। तो जैसे हम बोली कि भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चला था अगला गीत 4 दिन की जिंदगी है गीत चलाए से पहले बस हमने बात कर अब से आजकल ढेर कोई दिख रहा सा लामेलू यानी कि भारी लोग के हाथ रहेला और लोग थोड़े से पैसा मांगे लन सा तू पैसा और के सागर के पैसा दे दे बस जब पैसा गए तू नहीं करे के रही तब प्रत्येक सिखाए लन सा कि पैसा नहीं बात ही खातिर आज जैसे दुनिया जाता कोई की नहीं चहला दे के पैसा वैसा हाँ सकबर दे जगह पर भरोसा करते हुआ पर कोई के पैसा दे बा तो तुम्हारे पैसा नहीं लौटाए भैया। और जब क्रेजी बेचाता हुआ तो ध्यान दिया कि क्रेजी सब कोई संगीत से नहीं सकबर बेचे आजकल दिखी रहा सर कोई क्रेजी बेचे लन सर जब पैसा लाफ में जिमा होला जान सर पैसा मांगे तब पैसा नहीं देवे लन सर तो तुम लोग को जमीर नहीं बात तो लोग कॉन्शियस नहीं बाकी आदमी से लॉजिक ले लिया हो सर चाहे लाकर पैसा दे के हम तो नहीं जानना भैया फिर कोई जिस मिल कैंस मिल सैकौत मिल लॉजिक ले ले वेलन सर पे करे के बजे जब पैसा मांगे तो पैसा नहीं दे वेलन से ही खाती देर कोई खजी बोलन से खजी नहीं छाना बेचे के या कोई के पैसा उधार नहीं दे के पैसा जहाँ बा भैया कोई के उधार देला तू कौन फोन व्यक्ति के समस्या होल बा को प्रॉब्लम हो बा तू सागर के पैसा दे देला पर वो व्यक्ति तुरा सागर नहीं करी जब पैसा अगर तू नहीं करे के रही तो भारी हाथ भारी हो जाए तुम्हारा चक्रा बोल दे हमार लगे पैसा नहीं बा कितना व्यक्ति ऐसा हो बा जे पैसा दे लग बा और तू व्यक्ति के पैसा नहीं घूमे लग बा तो लामेलू से थोड़ा बच के रहिए खजी जुटना नहीं दिया मन बा कौन चीज़ बेचे के तक काश बेचे जा। चलो अगला गीत सुने 4 दिन की जिंदगी और है गीत हम नहीं चलाओते इस सब संगतियालों के नाम जो हमने की सुना था रविराज बिचुकलाल माची से और सब परिवार के नाम और बेटा खातिर भी अमृता डुंगूर वंश हवन संगीता फ्रांस और राइट है दूसरा संगीता है निशांत सिंह चुबा है गीत तुहर बेटी अश्विना तुहर पत्नी तुहर बेटा सब चुबा परिवार के नाम थोबिक से लिस्कारी से उमा जगनाइकलू और प्यार सन बेटी और बेटा जो इंग्लैंड में बा सब बहादुर परिवार के नाम रानी के ओर से गीत चले कर बेटी परी के ओर से कर मौसी चिकू मुनू करुणा और है गीत ज़्यादा सब मोहित परिवार के नाम जो बहुत प्यार से उनकी सुनता सब मोहित परिवार होवंजा अनमोल और शिव परिवार। तो चलो एक साथ सुनेंगी तो 4 दिन की जिंदगी सच्चे के 4 दिन की जिंदगी।

0: भैया काल ही क्या से काल ही जाप सा काल के रही के नहीं रही जो न अभी हैं सा तो लोग के सामने बचाते ही सा तो लोग हमने से हमने की सुना था वह बहुत बहुत धन्यवाद काल का जिन के रही के नहीं चोला के कोनो ठेका नहीं बा लताब से सब कोना में जाल दा चला हमने के संगे नाचे गिरीश रूपचंद के साथ
1: खुशी के दिन बिता
0: हाँ भाई सच्चे बोला थे वह चला झुमा नाच गावा

0: है। ओहो, आहा, हाय देखा, हाय देखा। नाचो नाचो, नाचो नाचो, गावा गावा।
1: मैं हमेशा तू खुशी से जिया,
0: खुशी से जिया।
1: जाए पाता मुस्कुराते रहिया,
0: मुस्कुराते रहिया।
1: जिंदगी में हमेशा
0: कदे मुंह में दांत में नहीं बा, मुस्कुराते रहिया।
1: जाए पाता मुस्कुराते रहिया।
0: आई ते दांत नहीं ते फुज़ों सकबर डाली ना।
1: जुमा ना जगावा, खुशी के दिन बितावा, हंसी मौज कर ला, फिर अंधेरी रात
0: बा, फिर अंधेरी रात बा। खुशी के दिन मनावा, नाचा गावा झूमा सब कोई। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगे संगे एमबीसी रेडियो, तेलो के रेडियो, हम सब के रेडियो। हमार लिखा
1: दुख दर्द भूला के तू आगे बढ़िया,
0: हमेशा आगे बढ़िया।
1: हमेशा तू हसिया और हंसाते रहिया,
0: हम तो हंसाते रहिला सबके।

हाँ सच्चे के अंधेरी रात बा रात बड़ी अंधार बाज कौन कौन चीप बरता कौन कौन सीमा में चीप नहीं बरता बाप रे बाप चाहे देखे के यहाँ चीप उप नहीं बरता तपन फुल फॉर डाल दिया कौन तू तू मैं दुबले नहीं कर गया है अब नाइट राइडर नहीं बन गया मक गाइवर नहीं बन गया तेरे कोई सीमा में गाड़ी चलावे गाड़ी उड़ावे नहीं सब जैसा उड़त हो नहीं नहीं रात के समय बा अगर गाड़ी में हुआ तो परिवार साथ में बा तो गाड़ी

धीरे धीरे चलाइए और जो पानी बरसा था अपन स्पीड अपन विशेष कमती कर दिए। आगते नहीं बनिए सीमा में रात के आगते नहीं करे के है दिन के आगते करिए रात के नहीं। और बेशक हमी तुल के साथ हैं सर और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर संगचारों को एगो कहावत बा हिंदी में दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाली का नाम। तो मतलब अगर आज तोहर लगे दाल पकल बा भात पकल बा चिंगड़ी की चटनी बनल बा तो ई तोहर भाग है। और दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम ही भगवान जब हमने की विदा करेला तो हमने के भोजन सब साथ में विदा करेला। कैसे के जब एगो लैका दुनिया में आवेला तो एगो माँ अपन लैका के अपन दूध पियावेला तब लैकवा कबो भी दुनिया नहीं देखला बा पर आवेला दुनिया में तो जब अपन एगो माँ अपन लैका के सीने से लगावेला तो अपन लैका के अपन स्तन देवेला अपन दूध देवेला वो जानेला कौन सी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मैजिकल है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब देखेला कि गो माँ अपन लिखा के सीना से लगा अपन दूध पिया हुआ था तो लोग प्यार और आशीर्वाद बरसावेलन से कहे कि माँ और बेटा के रिश्ता। तो जिसमें बोली दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम तो नाक नहीं करिए अगर तुहर पत्नी या पति को खाना बनेलक बा और खासकर लड़का लोग के बोलते हैं सर दूसर पे ही में देखबा कैसे लड़का लोग पुबेल में से खा के निकाल के खाते हैं ढेर पे इतना गरीब बा लड़का लोग के खाए के नहीं मिलेगा वो पुबेल में से जो बचल कुचल बा वो खाना लेके खा लन सा। पर हमने के देश में ऐसा स्थिति नहीं बा भगवान के हमने शुक्रिया का इला सा हमने की सरकार के शुक्रिया का इला सा कि हमने के देश में भरपूर खाना बा हर घर में सबको के तीन बखत के खाना मिलेगा फजीर के 12 बजे सांझ के और आते शाम भी बा ढेर कोई बढ़िया बढ़िया पकवान पकाई रख बा आहा क्या बात है। और ढेर कोई रात के देर से भोजन कर रहा इस समय भोजन कराते हुआ तब बोना पीछी हाँ ढेर कोई रात के 10 बजे या 11 बजे ले वो लोग जो है वो लोग अपन भोजन करे लन सर हाँ कि नहीं। और हमने है सर तो लोग के संगे संगे भी रात के 11 बजे ले हाँ। और अगला गीत है छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा बहुत ही प्यारा सन गाना है और है कि तो हमने चावत ईसा ये सब संगतियालों के नाम आप हवन विकास नारायण ईश्वर सुबन सब सुबन परिवार के नाम और बेटा पत्तु बेटी दामाद दूसर पे में बा जुलीस से उदारी है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम गणेश वरुण कैसे बा गमटवा हुआ था कि नहीं हाँ गणेश वरुण बड़ा जोर नाचा था और ये मुर्गी बिछेरन मुर्गी के स्पाइस में तैयार करन क्या बात है एक दिन नहीं बा मोहताबा या रोजबेल्ट वनु गणेश वरुण के हाथ से बनल चिकन जरूर खाइए जा सुपेया। वरुण की तोहर तीन गो लैका तोहर पत्नी और तोहर सब गणेश परिवार के नाम चल एक साथ सुने है गीतवा छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा

छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा, काहे छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा। आजकल ढेर कोई परेशान होन सर के पर निकाल लो कि खुद शादी करे कि पर निमन छोकरा या निमन छोकरी नहीं मिलता। चला खोजे कि भैया का कर बा, आज के जमाना ही ऐसा बा। शादी जो है गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है, जो है चहला जान समझ अच्छी तरह से देखे के कि हव लड़का जो दिखते हो तोहर बेटी या तोहर बेटा जो संगे जाता शादी करे कर लाइक बा कि नहीं, ये पहला। और साथ में चाहे देखे कि दोनों में आपकी इंची बा कि नहीं, ये नहीं कि जैसे कोई छोकरा छोकरी देखला खुशी और शादी कर दिलन सर। खुशी तो चहला रहे के, पर छोकरा छोकरी के चहला

सेम लेवल पर रह के छोकरा के या छोकरी के कौन पहुँच के छोकरी या छोकरा के कौन पहुँच के शादी से पहले सब कुछ अच्छा रहेगा लिपुक फैगौती टॉप ऑफ द टॉप। शादी के बाद तू जनबा कि और छोकरा के मानिया कैसे बा छोकरी के मानिया कैसे बा कहे कि अगर संगे फजीत के उठत हुआ और अगर संगे रात दिन रहत हुआ तब अगर मानिया जनबा तो शादी को लोतरी है जो कि मिलल तो निमन से शादी हो गए पर जो कि नहीं मिलल तो नहीं मिलल कह के आजकल शादी ढेर जगह में नहीं टिकेला कबू शादी तू चला और तला के नौबत चलावेला अगर देखा तो वह तू नहीं सकबा कोई संगे रहे जीवन भर तो पितो शादी नहीं करिया और अगर देखा तो वह सकत हुआ कोई संगे रहे तुम्हार का आगते मैं बा तो सकबा तो शादी करिया पर सोच समझ के अच्छी तरह से शादी करिया कहे कि शादी जिंदगी भर के साथ निभाए के है और जब शादी कर लेबा तो पति पत्नी के चहला एक दूसरे के मदद करेगी ये नहीं कि खाली पत्नी घर के सब काम करी पति महोदय खाली वो घूमी फिरी है सब ऐसे नहीं होला तो हमेशा याद रखिए कि जोन शादी है एगो लुटो के चार गुलारू है पति पत्नी है दो गुलारू मिशे के दो गुलाहू मैडम के तो संगे संगे चहला चले के ठीक बा। हाँ तो चल अब सुनब जा अगला गाना जिंदगी तू जमाल कुदू है गीत हम नहीं चलावते ऐसा भाई विनोद के नाम हमने के साथ देवत हुआ और कनाडा से वन दीपा तिवारी दुखी तो कर घरोला के बिन और कर बेटा और सब दुखी थे परिवार के नाम ऑस्ट्रेलिया से हवन अजय और पूनम चिंताराम बाल गोपाल के दुगो बेटा और मॉरिशस में कर माँ बाइंदिरा भाई चंदन बहु भाभी प्रिया सैलोनी के बहन हाँ और सब चिंताराम परिवार के नाम अगला गीत और जे कोई के नींद नहीं लगता तो गीत चलो के नाम जमाल कुदू जिंदगी तू जमाल कुदू ढेर कोई भी काम करे जाता बो को आज नाइट शिफ्ट कराता ढेर कोई नाइट शिफ्ट करके घर लौटता था जितना सुफेर लोग बस सीमा में पास आजे लोग हमने की सुना था कहूँ जाता हो या कहूँ आवत हो रेडियो सेट की बोली मुँह थोड़ा जोर डाल दे हो ढेर कोई बनवे में नाचता नाचे गाव जमाल कुदू।

गीता में अच्छा बोला पर्यावरण के साफ रखिया हो, कहा कि पर्यावरण के साफ नहीं रख बत दुष्प्रभाव होएला हमने पर। आजकल दिखते इसे कैसे इन्हों आवता ना, हाँ लीतों सब सौंसे हुआ था। और पर्यावरण के जब प्रदूषित कर पोल्यूट कर एनवायरनमेंट के तो कर असर मौसम पर पड़ेगा। कहूँ कहूँ पर बरका तूफान, कहूँ कहूँ पर भारी सूखा, कहूँ पर थोमलों में देते हैं सुनामी, सब ये सब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज है। जब ढेर पोल्यू कर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा और एक असर पड़ेगा। अरे हमने की जायदा हमने की तो चल गल, हमने की जो लड़का लोग आवा था जो नवा पीढ़ी बा वो लोग कैसे फास्ट करिए। अभी तो एक गो सुना बा एल नीनो ये दुनिया के प्रभावित करता। साइंटिस्ट लोग वॉर्न कर दी लगभग, नासा लोग बोला था वहाँ के साइंटिस्ट लोग कि इका जो प्रभाव है बहुत गहरा और खतरनाक रही। कहूँ कहूँ पर मोटका पानी बरसी 10 महीना ले, कहूँ कहूँ पर मोटा सूखा रही 10 महीना ले, एक गुट पानी नहीं बरसी। हमने इन दिनों में हेल गले से जुएत के महीना से अभी हेल गले से अभी हाउ बरिस जुएत ले जो हमने एनिनो पे रहब सा। अब तो भगवान ही जाने कि एक प्रभाव कैसे है एनिनो हमने के मौसम पर कौन कहती है प्रभाव करी इतना समय ही बताए। पर भगवान से प्रार्थना कर सब अच्छी तरह से भी थी। तो पर्यावरण के गीत अभी चल बहुत ही प्यारा सन गाना और संगत यार बोल रहा सा कि सबसे बड़ा चीज़ है मन के शांति। मतलब तू गेला काम करे काम करके अला तो अपन घर में हवा होम स्वीट होम तो थोड़ा मन के शांति। अब घर में अला पत्नी झगड़ा करता या पति झगड़ा करता लड़का लोग बेजुत करता तो कहाँ है मन के शांति। ये खातिर बोल रहा सर कि घर के चाह स्वर्ग रेखा बनाए के एगो परिवार में सब कोई के चाहला साके नहीं कौन फोसो काम आगा कि नहीं। जब पति थक के आलबा तब पत्नी के चाह कौन चीज दे के खा के या पत्नी जब थक के आलबा तब पति के भी देव है पत्नी के स्वागत करे के। और लड़का लोग जब बिल्कुल से आवेला तब सबसे पहले वो लोग जाके कराही उघार के दिखेला कि माँ का पकई लगबा हाँ कि नहीं एक गुलाब चीज है तो कहाँ लिकुल से अला यूनिवर्सिटी से काम कर जेपो में जाफे लाखुशी में हिल मामा का पकाइए हवा ए मोगी क्यों कोई और जब कराही खोल के देख ला कराही की झपनी कुछ नहीं बात बाप तो पेट में तो चूहा दौगा था अब तो भूख लगल बा। यही कहते बोल रहा सा कि फजीत के काम करे जाए से पहले अगर 1 घंटा 8 उजेब तो कौन चीज पका दिया जमी लड़का लोग सांझ के आए 3 बजे या लीसों के बाद घर ही इनसा तो कुछ न कुछ तो मिली खाए कि ना। तो चल अब सुनब जाए अगला गीत इंद्रासन से ढोलक मंगेली। और ढोलक मंगा के हम तो नाचते इंद्रासन से। और है गीत चली भाई इब्राहिम खातिर पोर्टवी से राफिक मोहित तायाक से भाई आबू कैसे बा समाचार ढेर दिन से बात नहीं होल बा। तो भाई आबू है गीत तोहर खातिर तोहर घरोली और तोहर सब परिवार का भाई आबू हमने की फिर अरे जीते हैं जो MBC रेडियो सुनते रहेला। और राफिक मोहित भी इब्राहिम साबोन पोर्टवी से हता है गीत तो लोग खातिर खास हम खास इंद्रासन से ढोलक मंगेली।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
4: आजकल में दिखा था ऐसा कि परिवार सब टूटल जाता। आगे के ज़माना में परिवार में सब कोई संगी रहता, माँ बाप, बेटा बेटी, बेटा बहू, नाती पोता, दादा दादी, सब कोई। तो वो रहल एक्सटेंडेड फैमिली। आजकल ये सब लुप्त हो जाता और आजकल खाली न्यूक्लियर फैमिली। शादी के बाद छोकरा छोकरी और लड़का लोग ये सब

नया ट्रेंड है आगे सब नहीं रहल और सब कोई अपनी बेटी खोजिला। अब सास बहू के झगड़ा विजय करे खातिर छोकरा जो ना शादी करके वन कुत्ते चल जाला, अपन पत्नी अपन निका लोग संगे रहेला और माँ बाप लोग छूट जाला। तो का कर दुनिया है इसी चलता। पर माँ बाप के नहीं भूलैया है, काहे शादी का टाइम शादी कर ले रहे तोहर पत्नी लड़का बा, अपन माँ बाप के नहीं भूलैया। थोड़ा बहुत जइया लोग के देखे, थोड़ा सेवा वा करे। हमने जानी रह सक कि छोकरा है, थोड़ा सैंडविच दिखा ऊपर जला। अब माँ के बात सुनी तो पत्नी नाराज़ हो जाए, पत्नी की बात सुनी तो माँ नाराज़ हो जाए। अब बेटा सैंडविच दिखा कर में खासे हो जाला। तो हाँ मेरे को बात बोला सुनिया, पत्नी की बात लेके माँ की नहीं बोलिया और माँ की बात लेके पत्नी की नहीं बोलिया, प्रॉब्लम सॉल्व। देख रहा ना, अब पति के सामने माँ की प्रशंसा नहीं करिए, माँ के सामने पत्नी की प्रशंसा नहीं करिए, वरना जालू हो आंसर। तो बोल दे पत्नी के कि हमार माँ जो कहती पकावे लग और हाथ के खाए के खाइब बाप बोल दे रहा था पत्नी बही तो जा अपन माँ लगे वहीं जाके वहीं खाइए, हम नहीं पका कौन चीज आला ला का कर ब। ये सब होला है तो जैसे परिवार की बात बोलते, आज के लड़का लोग नहीं जाने ला कि है चाचा है मामू है दादा है। तो परिवार लोग फौजी परिवार के जेबत अपने लड़का लोग के जान पहचान हुई। अब परिवार के लड़का लोग खाली घर में रखब, शादी दी में नहीं जेब, पूजा पाठ में नहीं जेब, फैमिली के नहीं जेब, तो लड़का लोग नहीं जानी। आले आले से जब इसे चलते जाए तो कोई कोई के नहीं गदानी, कोई कोई के नहीं पहचानी। कब भेटालन से परिवार लोग, एगो शादी में एगो मरनी में तब भेटालन से, हाँ कि नहीं। तो समय में जब अपन लड़का लेके अपन फैमिली के थोड़ा सुन जाइए, घूमे में लड़का लोग के बोलिए कि हाई तोहर चाचा है, तोहर चाची है, तोहर मामू है, मामी है, ऐसे लड़का लोग जानी। रास्ता में कोई बैठा जाए तो बोलिए सर नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। अब लड़का के कब अपन चाचा चाची के नहीं नहीं लिखलक बा तो के जाना था कि चाचा है कि चाची है, बोला था। और चल ऐसा में सुनब जा अगला गाना सुंदर देश और है गीत हमने चाहते खासम खास ये सब संगतिया लोग के नाम चिबुग लोंग राजा स्टीव माना प्रवीण भैरव नानो सावन जिमी दुखिया राजमन्ना सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी और रवि दिनू है गीत तोहर पत्नी तोहर पिताजी माताजी तोहर लड़का लोग के नाम प्रशांत शिवालक की रसोई कर्मा राधा और बहन शिल्पा जीजाजी सब शिवालक परिवार के नाम गिरीश हरलोल है गीत तोहरों नाम। चल एक साथ सुने गीतवा सुंदर देश।

हाथ में हाथ डाल के चला देशवा के आगे बढ़ाप स प्यार से सब कोई रब स मोरिशस एगो बहु जातीय देश हर प्रकार के रिलीजन के लोग यहाँ रहेला और प्यार से सब कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने रहेला सब प्यार से हर फेट में जाएला स चाहे ईद के त्यौहार हो कावेरी हो दिवाली हो क्रिसमस हो या कोनो भी त्यौहार हो तो हमने सब फेट में जाएला स। और अब हम बात करब सब पुरनिया खाना के बारे में। हमने के दादी जब रह नानी लोग ये सब खा के छोटा में हमने खात रही सर दाल भात दूध पीठी मार छोंका छोंकल भात मुरुंग के भुंजरी भाजी के भुंजरी पोमदामू घिये दाल पीठा बुई मकई और खिचड़ी ते सब आगे के भोजन रहल। अब पोमदामू गई हमके याद बा जब हमार नाना लगे जाते रही तो हमार नानी जो है रात के बखत पोमदामू के अंगोरा में घी कराता हल पोमदामू के घी कर दे अंगोरा में तब ओके छिल के लापुआ निकाल के पोमदामू के मिस के पीमा नीमक प्याज डाल के तब चटनी पोमदामू घी जो फोये बोला दादी सा। और दूध पीठी ये एगो मीठा भोजन है

0: से पीती पीती आटा इसे लंबा लंबा करके दूध में जा के खाती सा दाल भात थे सबको जानना था। तुम भात पका दे बा दाल पका दे बा दलवा भात में डाल के खाई बा। और खिचड़ी तो बहुत ही पौष्टिक खाना है। खिचड़ी में आलू रहेला कदुआ रहेला काकोत और खिचड़ी जो है हरदी भात थोड़ा पका दे बा जोरी से तवकर में कुछ चटनी या भाजी भुंजल तो आ हा हा क्या बात बा। बुई मकई तो मकई के बुई करके खा ली बा जोरी से। अब मार छोंका मार में पकल तकारी छोंकल भात तो कब कब आगे के आदमी लोग कारों से काम करके आवे तो खा के नहीं रहे तो पुलामून प्याज को तो नहीं मिला था काट के जोरी से डाल दे बा तेल में तराई के। अब ओकर में भात डाल दिया थोड़ा सुना के जयों कैसों से डाल दिया तो हो गल छोंकल भात। अभी के लड़का लोग ये सब खाए नहीं खाए भैया। चल अभी एक गीत वाला सुनब जा मार तारी मार एक गीत चंपा और देवी काराम गतिया के नाम और संजय हवन रोजबेल से और इंदिरा लावतन हवन मेबर्ग से।
1: मार ताली मार ताली मार ताली मार हमार संगे मार ताली मार ताली
0: हाय गीत के संगे हम इन लोग से इजाजत चाहते हैं जा रात के 11 बजे लबा 11 बजे से मजा सुन रहे पर रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा तो लोग एसएमएस और फोन कॉल्स का थी शुक्रिया। आशा करते हैं तेरे के मनोरंजन जरूर होल होई हमारे मनोरंजन खूब हो तेरे लोग से बात करके और आशा करते हैं प्रोग्राम में मनोरंजन भी हो शिक्षा के भी बातें हो ढेर कुछ सीख ली सा आदान प्रदान हो प्रोग्राम में। हमने के चलो के मुलाकात हुई कल दिमास के दूसरे 12 जुलाई के सांझ के 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही ऐसा भी होता है। तो कल तक हमने की इजाज़त और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक इस समय आप, जी हाँ, रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन, सबका स्वागत है, वो भी रात्रि के 12 बजे तक। तो आइए आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन महान कलाकारों से मुलाकात कराएंगे। सब तो महान ही हैं। हम हमेशा बात करते हैं गायकों की, एक्टर्स की या फिर संगीतकारों की। हम कैसे भूल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मास्टर्स हुआ करते थे, यानी कि कोरियोग्राफर्स, उनकी भी बड़ी अहमियत होती थी। कौन थे वो, चलिए एक साथ जानते हैं।

1960s का दौर बॉलीवुड के लिए संगीत और नृत्य का एक सुनहरा युग माना जाता है। इस दौर में सिर्फ मधुर गीत ही नहीं बने, बल्कि उन गीतों को अपनी कल्पना, रचनात्मकता और बेहतरीन डांस कंपोजिशन से यादगार बनाने का काम किया उस समय के महान कोरियोग्राफर्स। आज जब हम पिया तो से ने ना लागे रे, या फिर आज फिर जीने की तमन्ना है झुमका गिरा रे, ये जो गाने हम देखते हैं ना, तो हमें उनके पीछे छुपे कोरियोग्राफर्स की मेहनत और कला का एहसास भी होता है।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: 1960s में हीरालाल मास्टर, बी सोहनलाल, सुरेश भट्ट, लच्छू महाराज और कृष्ण कुमार जैसे कोरियोग्राफर्स ने बॉलीवुड डांस को एक नई पहचान दी। हीरालाल मास्टर अपनी ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव कोरियोग्राफी के लिए मशहूर थे। उन्होंने क्लासिकल डांस के साथ फिल्मी स्टाइल का एक ऐसा संगम किया कि हर डांस सीक्वेंस आंखों को सुकून देने वाला बन गया। उनकी कोरियोग्राफी में एक्सप्रेशंस, नजाकत और मूवमेंट्स का अद्भुत मेल नजर आता था।

सोहन लाल को एनर्जेटिक और स्टाइलिश डांस कंपोजिशंस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और डांस को सिर्फ स्टेप्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि उससे कहानी का एक हिस्सा भी बना दिया। उनके डांस नंबर्स में रिदम और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता था।

वो दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ,

जब बात क्लासिकल डांस की आती है तो लच्छू महाराज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कथक के महान गुरु होने के नाते उन्होंने बॉलीवुड में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर भी उतारा। उनके कोरियोग्राफ किए गए डांस सीक्वेंसेस आज भी कला के अद्भुत नमूने माने जाते हैं।

वैसे श्रोताओं, 1960s के कोरियोग्राफर्स की एक खास बात ये थी कि उस समय डांस में आज की तरह हैवी एडिटिंग या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे। कलाकारों को हर स्टेप परफेक्शन के साथ खुद परफॉर्म करना था, इसीलिए कोरियोग्राफी में डिसिप्लिन, एक्सप्रेशंस और ताल का बहुत महत्व होता था। विजयंतीमाला, वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन और महमूद जैसे कलाकारों ने भी कोरियोग्राफर्स के साथ मिलकर डांस को एक नए शिखर तक पहुंचाया।

0: ताली तक जमी तक ताली तक जमी तक झाला आमचं ताक जगी ताक ताजी घेणे ताक नाक ताक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे ताली जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे जम तारी जग तारी जग नाक ताक ताज जन ताज जन ताज जन ताज जम तारी जग तारी जाने जाने को ताज जन ताज जम ताज जन ताक ताक दंग कर दम कर दंग कर दम ताक दंग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: काटूंगा वही इलाकों हक डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुत्री को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: उस दौर के कोरियोग्राफर्स सिर्फ डांस डायरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि वो गीतों के विजुअल स्टोरी टेलर्स भी थे। हर मुद्रा, हर अदा और हर मूवमेंट के जरिए वो गीत की भावना को और गहरा बना देते थे। इसी वजह से 60s के डांस नंबर्स आज भी नए लगते हैं और हर जेनरेशन उन्हें बड़े शौक से देखते और पसंद करती है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 60s की बात चल पड़ी है ना श्रोताओं, तो कैसे भूल सकते हैं। वो अपने आप में एक्टर तो जबरदस्त थे ही, लेकिन अपने आप कोरियोग्राफर थे। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, द लेट शम्मी कपूर साहब। उनके लिए कोई कोरियोग्राफी जरूरत ही नहीं थी। उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ के स्वभाव, जैसे वो डांस करना चाहते थे वैसे ही डांस तैयार। वो खुद अपने आप में कोरियोग्राफर थे। तो बॉलीवुड के 60s के कोरियोग्राफर्स ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। आज के कई मशहूर कोरियोग्राफर्स उनके नाम से प्रेरणा लेते हैं। उनकी कला, उनकी सोच और उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी बॉलीवुड के गोल्डन एरा की बात होगी, उस दौर के इन महान कोरियोग्राफर्स का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।
2: चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: MBC Radio, your music companion.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।